एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 मई सन 2026। इस वक्त प्रातः के 5:58 व 36 सेकंड हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहले कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार जन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

इस संसार की आपाधापी और भागदौड़ से भरी जिंदगी में अगर कहीं सुकून है तो वो प्रभु चरणों में है। कहते हैं जीवन के सारे कष्ट, सारी चिंताएं सिर्फ उस एक नाम को लेने से दूर हो जाती हैं जिसे हम राम कहते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा, कलयुग नाम अधारा, अर्थात राम नाम इस कलयुग में भव सागर से पार करने वाली एक नौका है।

इस नश्वर संसार में हम सब कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में इधर उधर दौड़ रहे हैं। कोई धन के पीछे, कोई पद के पीछे, तो कोई मान सम्मान के पीछे। लेकिन संतों ने कहा है कि ये सब तो इसी लोक में छुट जाएगा भाई। अगर कुछ स्थाई है, कुछ शाश्वत है, तो वो है ईश्वर की भक्ति। इसलिए उसी में मन लगाइए।

मानव मन बहुत चंचल है, उन चीज़ों के पीछे भागता है जो आज हैं और कल नहीं होगा। लेकिन इस भागदौड़ के बीच जब कभी हम ठहर कर अपने भीतर झांकते हैं तो समझ में आता है कि असली सुकून और असली अमीरी तो सिर्फ और सिर्फ मन की शांति में है, और मन की शांति ईश्वर में, ईश्वर के जपने से, ईश्वर के विश्वास में मिलती है। ये एक ऐसा धन है जिसे पाकर इंसान पूरी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है और मन गा उठता है कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए।

इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम ने भरत को कर्तव्य तथा धर्म पालन के लिए कई प्रकार से उपदेश देकर आश्वस्त किया। कहा, गुरु की कृपा सूर्य कुल की रक्षा करने में उनकी सहायक होगी। गुरु का अनुग्रह वन में स्वयं उनका भी रक्षक होगा। साधक को आज्ञा पालन रूपी साधना से ही सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है।

श्री राम की स्नेह सिक्त वाणी सुनकर भरत को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनका दुख, दोष बोध, विषाद सभी मिट गए। वचन मात्र से उन्हें श्री राम के साथ वन प्रवास तथा जगत में जन्म लेने का लाभ प्राप्त हो गया। 14 वर्षों की लंबी अवधि बिताने के लिए कोई अवलंब तो चाहिए ही, और फिर श्री राम के राजतिलक के लिए सभी तीर्थों का जल ले आए थे, उसका क्या करना है? इस संबंध में भी स्वामी की आज्ञा अपेक्षित है। मन में ये भी अभिलाषा है कि चित्रकूट के सभी पवित्र स्थल, वन, पशु पक्षी, नदी सरोवर, निर्झर और पर्वत समूह सबका दर्शन कर लें, विशेष रूप से उन स्थलों का जो श्री राम चरणों से अंकित हैं। मंगलमूल भरत तथा श्री राम का संवाद सुनकर देवगण धरती पर कल्पवृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायक स्वर श्रीकांत परगावकर का था, संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। आज विक्रमी संवत 2083 के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और अब बारी है आज के अपडेट्स की।

दुनिया के 50 सबसे गर्म शहरों की अगर बात की जाए तो उसमें जो जारी नवीनतम सूची है, भारत के कई शहरों के नाम शामिल हैं जो कि देश में चल रही गंभीर हीट वेव की स्थिति को दर्शाते हैं। तो भाई, आप सब श्रोताओं से हमारा निवेदन है कि अपना ध्यान रखिए।

सुप्रीम कोर्ट ने NCERT की स्कूली किताबों से जुड़े विवाद में एक फैसला लेते हुए अपना पुराना आदेश वापस ले लिया है।

0: ये आकाशवाणी है,
1: हर पल आपके साथ।
0: समाचार हो या सदाबहार गीत,
1: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
0: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
1: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
0: आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: लत तो लगेगी ही क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है।
2: ऐसा देश है मेरा, हाँ, ऐसा देश है मेरा।
1: ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 MHz अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार को।

रात्रि 8:15 पर सुनिएगा ऐसा देश है मेरा। इसके तहत आज आपको हम सैर करवाएंगे पश्चिम बंगाल की।

स्वर होगा अनुराधा का, तकनीकी सहयोग राजेंद्र कुमार, निर्देशन विनिश्री और प्रस्तुति महेंद्र मोहन शर्मा की। युवा साथी अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे शाम 5 बजकर 30 मिनट पर। शाम 6 बजकर 30 मिनट पर सुनिएगा किसानवाणी और शाम 7 बजे ग्राम संसार। गीता संदेश आप सुनेंगे शाम 6 बजकर 20 मिनट पर। इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 3rd अध्याय के श्लोक 38 से 40 की व्याख्या की जाएगी। व्याख्या करेंगी डॉक्टर विदुषा। प्रातः 7 बजकर 40 मिनट पर आप सुनेंगे बाजियाई नगाड़ा। शाम 5 बजे सुनिएगा गाने नए पुराने।

शाम 7:30 पर आप सुनेंगे जय जवान। गैर फिल्मी नगमों, गीतों, कव्वालियों का कार्यक्रम गुलदस्ता हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 7:45 पर। प्रातः 7:10 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल पुकारे। प्रातः 8:30 पर विविध रंगी कार्यक्रम सुबह सवेरे और सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र का समय रहेगा प्रातः 10:00।

गैर फिल्मी नगमों और गजलों का कार्यक्रम स्वरांजलि हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रातः 9:30 पर। सुनिएगा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत रात्रि 8:15 पर। सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चांदनी रातें आप सुन सकते हैं रात्रि 10:00।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र यानी आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से आज प्रसारित होने वाले बाकी के कार्यक्रमों की जानकारी। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में, तत्पश्चात हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में।

0: आग्रहं कृतवन्तौ।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकाता नगरं आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकाता नगरे प्रवासावधौ श्री रूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धांजलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्री रूबियो राष्ट्रीय राजधान्यां विदेश मंत्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिका देशस्य दूतावासस्य स्वातंत्र्य दिवसोपलक्षे आयोजिते कार्यक्रमेपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्री रूबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेश मंत्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे, पूर्वीय उत्तर प्रदेशे, विदर्भे च तीव्रतर उष्ण तरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। अद्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्ण तरंगस्य स्थित्याम् आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। तटीये आंध्र प्रदेशे, तेलंगानायां, पश्चिम मध्य प्रदेशे, पश्चिम उत्तर प्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्यां अधिकतमं तापमानं 45 डिग्री सेल्सियस यावत्, न्यूनतम तापमानं 27 डिग्री सेल्सियस यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडा वार्तायां आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरुण लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सके। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youths in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis have called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and for the early finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued after talks between the two leaders in New Delhi yesterday, both sides urged strong and coordinated action against all UN and EU-designated terrorists and terrorist organizations, including those listed under the 1267 UN Security Council Sanctions Committee. As maritime nations with deep-rooted naval

0: ये गीत था फिल्म नीला आकाश से, गायक स्वर मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले का, गीतकार राजा मेहंदी अली खान और संगीतकार मदन मोहन थे।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
0: आइए सुनते हैं फिल्म मिली का सदाबहार गीत आए तुम याद मुझे। इसे गाया है किशोर कुमार ने और गीतकार हैं योगेश, संगीतकार एसडी बर्मन। ये फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी।

0: लत तो लगेगी ही, क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है।
1: ऐसा देश है मेरा, हाँ, ऐसा देश है मेरा।
0: ऐसा देश है मेरा हर दूसरी और चौथे शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 MHz अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा हर दूसरी और चौथे शनिवार को।
1: ऐसा देश है मेरा, हाँ, ऐसा देश है मेरा।
0: आइए सुनते हैं फिल्म ठोकर का एक गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने, गीतकार साजन धलवी और संगीतकार श्यामजी घनश्याम जी।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आप सुन रहे हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर को फिल्म बॉबी में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसे संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

0: इस गीत के साथ ही दिल पुकारी कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बाजिए नगाड़ा।
1: बात किस समय की है कि जिस वक्त किस्सा फूल सिंह नोटिंग की चलते तो कौन के कुंदन मलोर फूल

0: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
1: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
0: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
1: हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
0: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
1: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें,
0: आकाशवाणी
1: विश्वास की आवाज।
2: कार्यक्रम का नाम है बाजे नगाड़ा। हमारे कलाकार हैं पालेराम दहिया।

0: लत तो लगेगी ही, क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है।
1: ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा,
0: ऐसा देश है मेरा, हर दूसरे और चौथे शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 MHz अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा, हर दूसरे और चौथे शनिवार को।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से आप सुन रहे हैं बाजे नगाड़ा।

कार्यक्रम बाजे नगाड़ा में आप सुन रहे थे पाली राम दैया को। ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में तत्पश्चात अंग्रेजी में।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
4: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
5: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
6: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानसीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
3: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHYRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे

0: इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोड ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
1: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
2: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है,

यूं तो आज भी बहुत सुहावना है। हर इंसान का जो आज है वो भी बहुत सुहावना है, पर फिर भी रह रहकर जाने क्यों कल की बातें याद आती।

पारी है आज के प्रश्न की। तो हमारा आज का प्रश्न है, भारत ने कल यानी कि 22 मई 2026 की शाम को अपनी सामरिक क्षमता को और मजबूत करते हुए कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का एक और सफल परीक्षण किया है। आपको बताना ये है कि ये परीक्षण किस राज्य में किया गया। प्रश्न एक बार फिर से हम दोहराई देते हैं, कल यानी 22 मई 2026 की शाम को अपनी सामरिक क्षमता को और मजबूत करते हुए कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का एक और सफल परीक्षण किया गया है। ये परीक्षण किस राज्य में किया गया है? आपको अपना उत्तर टेक्स्ट मैसेज के जरिए 9466021336 पर देना है। तो जल्दी से दीजिए इस प्रश्न का उत्तर और बन जाइए हमारे इस प्यारे से कार्यक्रम का प्यारा सा हिस्सा।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
2: श्रोताओ, आज 23 मई है और आज का दिन मनाया जाता है प्रसूति फिस्टुला को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2013 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसव संबंधी इस गंभीर चोट के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे जड़ से खत्म करने के लिए वैश्विक कदम उठाना है। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कारण का। बिना आपातकालीन चिकित्सा सुविधा जैसे कि सिजेरियन, इसके लंबे समय तक प्रसव पीड़ा में रहने के कारण ये समस्या होती है। इससे प्रसव की नलिका और मूत्राशय या मलाशय के बीच एक छेद सा बन जाता है। इसके कारण महिलाओं को निरंतर मूत्र या मल का रिसाव होने लगता है। ये शारीरिक और मानसिक पीड़ा के साथ साथ, जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा सामाजिक रूप से भी अनुभव अच्छा अनुभव नहीं होता। इसकी रोकथाम संभव है कि उच्च गुणवत्ता वाली जो प्रसव देखभाल है वो होनी चाहिए। प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। बाल विवाह पर रोक लगनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होगी तो फिस्टुला आ सकता है, अदरवाइज ये कोई एक बीमारी नहीं, ये एक परिणाम है जब शरीर का सही से ध्यान नहीं रखा जाता। ये जो दिन हम मनाते हैं, ये स्वास्थ्य एजेंसियों और सरकारों को इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है ताकि फिस्टुला से पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास और इलाज को सुनिश्चित किया जा सके।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: अब बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य महत्व जो है वो इंसानी क्षमता और मशीनी समझ को जोड़कर कठिन से कठिन समस्या का हल करना है। इसका मेन मकसद है समय बचाना और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सटीक बना देना। ये उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाकर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर हमारे दैनिक जीवन को आसान और क्रांतिकारी बनाता चला जा रहा है। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से गंभीर बीमारियों का शुरुआती दौर में पता लगाना और सर्जिकल रोबोट के जरिए सटीक इलाज करना आसान और संभव हो गया है। स्मार्टफोन्स में मौजूद जो वॉइस असिस्टेंट हैं जैसे सीरी गूगल असिस्टेंट से यहाँ गूगल मैप्स तक भी हम इसमें देखते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे रोजमर्रा के कामों और यात्रा को और सुविधाजनक बना दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति हमसे छुपी नहीं है। अगर व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अच्छा रोल निभा सकता है। कृषि के क्षेत्र की बात करें तो कृषि में क्रांति लाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा हाथ है। ड्रोन और स्मार्ट सेंसर की मदद से मिट्टी की नमी और मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त करके किसान अब बहुत अच्छी फसल उगा रहे हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत ने कल शाम यानी 22 मई 2026 की शाम को अपनी सामरिक क्षमता को और मजबूत करते हुए कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, ये किस राज्य में हुआ? ये जो बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम अग्निवन है, इसका सफल परीक्षण किस राज्य में हुआ, ये हमारा प्रश्न था। तो इसका सही उत्तर है ओडिशा। तो सही उत्तर देने वाले जो हमारे श्रोता हैं उनके नाम हैं नाहन हिमाचल प्रदेश से योगी ठाकुर और रीमा ठाकुर, गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना, अनाया अवाना और ओजस अवाना,

ललिता सिंह भगवान सिंह शिलाई हिमाचल प्रदेश से। अगला सही जवाब हमें भेजा है योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर और गुरशबद सिंह। राहुल नागल से इंदरराज और जीगुड़ी से रणधीर सिंह बांगड़ और युगम। साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति, प्रतीक कुमार खमारिया छत्तीसगढ़ से। धूलिया महाराष्ट्र से अशोक कवाड़े, आदित्य और दीपमाला कवाड़े। उच्च भट्टी बिलासपुर से मुकेश गोस्वामी और मधु गोस्वामी। तन्मय सिंह और सिद्धांत सिंह शिलाई हिमाचल प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम। मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला। दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन जेले, नवदीप जेले और विश्वदीप जेले। भिलाई से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। गांव सांतड़ी से मदन काम्बोज, प्रियांशु और समृद्ध काम्बोज। जिला खंडवा गांव लोहारी से राजेश कुमार, राहुल, शीला, धनजे। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी। गांव पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा और पूनम वर्मा। कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता और प्रतीक हिवराले। दीपक और मनयंक मूणत के साथ नेहा जैन है बोरखेड़ा पित्रा मल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। शेरवानी स्कूल गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज और अनवर मास्टर। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता और सुभाष योगी। सुनील कमल गव्या मल्होत्रा नारकली बाजार जगराव से। गांव फालसडा जाटान कुरुक्षेत्र से विक्रम योग भारती, संध्या सैनी, हरमन योग भारती, खुशप्रीत अंबली। सेक्टर दो कुरुक्षेत्र से जगपाल हुड्डा, सानिध्य हुड्डा, सुनैना हुड्डा और समीक्षा हुड्डा। ओडिशा ये सही जवाब है और सही जवाब देने वाले श्रोताओं में बेंगलोर से सुधा नारायण के हाली, अरविंद गुड़िया, भाव्या बेनीपट्टी, मधुबनी बिहार से। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम। अकरम इशरत, वसीम अकरम, रुबीना, आरिज वसीम, नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से। किशनगंज बिहार से रविंदर मोहन, आशा देवी और देवाश्री। बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा और यश मंसूरी। गांव कलाना तहसील भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम, सचिन, योगेश और युधव कड़वासरा। तराई माल रायगढ़ से अंशु साहू और निशु साहू। राजेश कुमार मेहरा बकानी खुर्द झालावाड़ राजस्थान से। जमशेदपुर से हरजिंदर।

गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र, शमशेर भ्याण और मनोज भ्याण। सेक्टर 5 जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र मोहिनी और कल्पित चौहान। रघुनाथपुरा गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी और हेमलता। डेर पाटन गुजरात से धीरज वी राबड़ी। धर्मेंद्र, कपिल और पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान से। वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार और प्रमिला भावसार। रश्मि झरना भरत कुमार राजकोट गुजरात से। सुरेश राठौड़ मंजुला गांधीनगर गुजरात से। धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी और निषाद सलमानी। छत्तीसगढ़ बोरसरा से वैभवी साहू और विभूति साहू। नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव, अनीता और सोनल प्रसाद जाधव। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, चैतन्य और मेघा मस्कीन। गाड़गे नगर यवतलाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई और शैलेश लोखंडे। कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से सुरेंद्र दत्ता, बंटी, शंटी और लाडी। मोहम्मद सईद अब्बासी, निघट प्रवीण अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य ऊपर कोट बुलंदशहर से। एसएम जावेद गुमला झारखंड से। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा। रवि और इंदर रानीगंज से। हनुमंत शिंदे, ऋषिकेश शिंदे सांगली से। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा और सोनिया विशाल सपकाल। गांव हांडीखेड़ा से राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा। मऊ नाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजकेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक और आर्यन वर्मा। उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसुतासु अर्नब और सत्यम पाकुड़ झारखंड से। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े और करुणा कामड़े। बिहार से डब्ल्यू उल्ला, वली उल्ला और सोनम उल्ला बेलदार। पंजाब से मिंटू, टॉमस, पिंकी और लवली। गांव नागर कोहरा से बबलू साहू, जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू। कनेर मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और बत्ता परिवार के सभी सदस्य। प्रमोद कुमार साहू गांव कदुआपड़ा, जगत सिंहपुर से। छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया, गोरैया जलंधर से अशोक जाटव। बिहारी कॉलोनी दिल्ली से वसीम वली, असलम वली, सरफुद्दीन वली, जामुरिया। बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग और अंजना रानी गर्ग। डॉक्टर दबीरुल हसन, शबनम अनवार, शेख मोहम्मद कलीम, अमीर खुसरो रोड गंज डुंडुवारा से। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से सरोज, राकेश और यादविंदर सैनी। नबी हसन अब्बासी, शहनाज और नवेद सुहेल अब्बासी, मारहरा दरवाजा, एटा से। पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा और अंजनी ज्योति वर्मा। शनि चौक खंडवा से अनीता और दुर्गा कुमारी। डोंडी लोहारा से प्रभा राधिका जाटव। अगला सही जवाब हम देखते हैं कि किस श्रोता ने हमें भेजा है। ये है बन बघेरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा। जगाधरी से विनय मोहन खारवन। संतोष नामदेव बघेरा दुर्ग से। नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण और राहुल शर्मा। सौराष्ट्र राजकोट से प्रवीण भाई, जगदीश और हिरेन भाई। किसी किसी ने उत्तर थोड़ा गलत भी लिखा है। गांव बांडीवाली फाजिलका पंजाब से ओम, क्रियांश और बेबी गरिमा बागड़िया और इनके साथ हैं रजत। बल्लारपुर जिला चंद्रपुर से हेमंत कुमार भारशंकर, प्रिया और समीक्षा भारशंकर। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद और नदीम पटेल। सरिता मौर्य, गौतम,

बीपी प्रकाश, कुश गौतम, साईं विहार रामपुर से। गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी और राघव। रादौर से राजकुमार पुजारा, अनीता पुजारा और साहिल पुजारा। अंबाला से बंसीलाल संधू और इनके साथी। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना, एसके पपी, एमएलबी रोड ग्वालियर से। जसप्रीत बुमरा और इनके साथ हैं नरेश, भावना, अनिल, खैल बाजार पानीपत से। जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला, योगेश, दीपक और कुमारी पूजा। अगला सही जवाब हम देखते हैं, ये हैं रोशन लाल देवांगन, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू और करण राहुल साहू। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला और सबाहत हुजरे। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी। बक्सर बिहार से राज एस टी अंसारी। बोरसरा छत्तीसगढ़ से प्रमोद साहू और बीमा साहू। पोठिया कला दुर्ग से संजय साहू और सुजाता साहू। राजनांदगांव से प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा और मायरा सुरोशे। बन्नई बुजुर्ग तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ, अर्चना तय, हीरामन शेंदे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंदाने। आप सब ने हमारा कार्यक्रम सुना और हमें सही जवाब लिखकर भेजा, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।

0: लत तो लगेगी ही, क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है।
1: ऐसा देश है मेरा, हाँ, ऐसा देश है मेरा।
0: ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 MHz अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार को।

सर्दियों पूरे उत्तर भारत में गर्मी और हीट वेव का प्रकोप जारी है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें तो इस जानलेवा गर्मी को भी मात दे सकते हैं। जब आपको प्यास लगे या ना लगे, आपने पानी ज़रूर पीना है। सफ़र में हमेशा पानी की बोतल साथ रखें। घर में बने हुए तरल पदार्थ जैसे कि नींबू पानी, छाछ, आम पन्ना, लस्सी, नारियल पानी का सेवन और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। बाहर निकलते समय एक तो हल्के रंग के कपड़े पहनने हैं, ढीले ढाले और सूती कपड़े ही पहनने हैं। धूप में निकलने पर अपना सिर ज़रूर ढकें और धूप के चश्मे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, घर से बाहर ना निकलें। बुज़ुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं को इस दौरान अपना खास ख्याल रखना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, ज़्यादा चीनी वाले कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, क्योंकि ये शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं। बासी खाना और ज़्यादा तेल मसालेदार भोजन से बिल्कुल बच कर रहें। ध्यान रहे, अगर अचानक से तेज बुखार आए, सिर दर्द हो, चक्कर आए या उल्टी जैसा महसूस हो तो इसे हल्के में न लीजिएगा। ये हीट स्ट्रोक हो सकता है। तुरंत नजदीकी डॉक्टर या अस्पताल से संपर्क करें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वरांजलि, पहली प्रस्तुति गुलाम अली की आवाज में।

0: ये आकाशवाणी है,
1: हर पल आपके साथ।
0: समाचार हो या सदाबहार गीत,
1: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
0: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
1: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
0: आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: लत तो लगेगी ही क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है।
4: ऐसा देश है मेरा, हाँ, ऐसा देश है मेरा।
3: ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 MHz अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार को।
4: ऐसा

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वरांजलि, ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम, जिसे हम विविध भारती से रिले करेंगे।

2007 में ही फिल्म द लास्ट लियर में शेफाली ने अमिताभ बच्चन के साथ परेशान और चिड़चिड़ी स्वभाव वाली और लिव इन पार्टनर की भूमिका निभाई है। ये एक ऐसी भूमिका थी जिसे वे अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिका मानती हैं। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। फिल्म को सराहना के साथ ही 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नाम दिया गया और शेफाली शाह ने सहायक अभिनेत्री का खिताब भी जीता। इस फिल्म के निर्देशक थे ऋतुपर्णो घोष।

सुभाष घई की क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शेफाली ने रीमा माथुर की भूमिका निभाई। 2008 में आई इस फिल्म में शेफाली एक बंगाली कार्यकर्ता और एक उर्दू प्रोफेसर अनिल कपूर की पत्नी के अहम रोल में नजर आई।

2011 में उन्होंने विपुल शाह के प्रोडक्शन में कुछ लव जैसा फिल्म में एक युवा गृहिणी की भूमिका निभाई, जो जेल से भाग रहे एक अपराधी राहुल बोस के साथ एक रोमांटिक दिन बिताती है। कहते हैं अपने इस रोल को समझने के लिए शेफाली ने ठाणे जेल का दौरा भी किया और अपने चरित्र को समझने के लिए कैदियों से बात भी की।

साल की अनुपस्थिति के बाद शेफाली शाह ने मोनाली ठाकुर के साथ नागेश कुकनूर की सामाजिक समस्या पर बनी फिल्म लक्ष्मी में काम किया। इस फिल्म में शेफाली शाह ने एक वैश्याले की मालकिन ज्योति की भूमिका अदा की है। 2014 में आई ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म थी। दिल धड़कने दो, जी हाँ, 2015 में निर्देशिका जोया अख्तर की ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई। इस फिल्म में शेफाली अनिल कपूर की पत्नी के रोल में नजर आईं। फिल्म के अन्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह हैं। इस फिल्म में उनके प्रभावी अभिनय के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर नामांकन उन्हें मिला।

करण मल्होत्रा की अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा वॉरियर के रीमेक में उन्हें एक छोटी सी सहायक भूमिका मिली। इस फिल्म में उनके चरित्र मारिया फर्नांडिस को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने व्याभिचारी पति के विवाह के बाद हुए अवैध बच्चे को स्वीकार करती है। शेफाली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने किरदार में एक ऐसी सादगी लाती हैं जो मुख्य धारा के सिनेमा में शायद ही कभी देखी जाती है। फिल्म जूस नीरज घायवान द्वारा 2017 में आई एक ऐसी ही फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली की निगाहें शब्दों से कहीं अधिक बयां करती है और उनका अभिनय लाजवाब नजर

वंस अगेन रोमांटिक फिल्म का जिक्र भी यहाँ करना बहुत जरूरी है। 2018 में आई इस फिल्म को कमल सेठी ने लिखा और निर्देशित किया। शेफाली शाह और नीरज का भी अभिनीत ये फिल्म दो मध्यम वर्गीय आयु वर्ग के लोगों की कहानी है। इस फिल्म में काम करने के बाद शेफाली ने कहा कि वो लंबे समय से इस तरह की फिल्म का इंतजार कर रही थी। शेफाली इन सभी फिल्मों के अलावा ब्रदर्स, द जंगल बुक, कमांडो 2 और डॉक्टर जी जैसी फिल्मों के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं।

शेफाली शाह ने इन सभी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया हो, लेकिन ये स्टारडम तब और बढ़ा जब उन्होंने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा। जी हाँ, शेफाली शाह ने साल 2019 में आई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम से अपनी प्रतिभा की एक अलग ही मिसाल पेश की। 2023 में उन्हें दिल्ली क्राइम में उनके अभिनय के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस सीरीज में उनकी प्रतिभा जो दर्शकों के सामने आई, उसे देखकर हर कोई अवाक रह गया। इस वेब शो में शेफाली ने डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी का किरदार निभाया, जिन्हें दिल्ली में एक क्रूर सामूहिक बलात्कार की जांच करने का काम सौंपा जाता है।

ब्लैक कॉमेडी डार्लिंग्स में शेफाली और आलिया भट्ट माँ और बेटी के रूप में अभिनय करती हैं। इस फिल्म को जसमीत के रीम द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है। ये उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है जिसकी पटकथा परवेज शेख ने लिखी। फिल्म में विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। इस फिल्म को कई अवार्ड्स मिले। शेफाली ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब जीता।

2022 में आई ह्यूमन में शेफाली ने डॉक्टर गौरीनाथ की भूमिका निभाई। विपुल शाह द्वारा निर्देशित ये शो दवा कंपनियों और बड़े निजी अस्पतालों के बीच सांठगांठ की पड़ताल करता है। वहीं सोशल थ्रिलर फिल्म जलसा में उन्होंने विद्या बालन के साथ अभिनय किया। वे इसमें रुखसाना नाम की महिला का किरदार निभाती नजर आती हैं, जिसकी बेटी एक हिट एंड रन दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इस फिल्म के लिए उन्हें मेलबर्न के वार्षिक भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला।

अविनाश अरुण द्वारा सहलिखित और निर्देशित थ्री ऑफ अस 2023 की फिल्म है। इसमें शेफाली ने शैलजा देसाई की भूमिका निभाई है, जिसे डिमेंशिया है और वो अपने बचपन को याद करने के लिए यात्रा पर निकलती हैं और अपने दर्दनाक अतीत का सामना करती हैं। स्वानंद किरकिरे इस फिल्म में उनके पति और जयदीप अहलावत बचपन के दोस्त की भूमिका में हैं। इससे पहले 2020 में शेफाली शाह ने दो स्व अभिनीत कोविड-19 आधारित लघु फिल्मों समडे और हैप्पी बर्थडे मम्मी जी में लेखन और निर्देशन भी किया। 2025 में निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म हिसाब, इस फिल्म में शेफाली शाह, जयदीप अहलावत और अभिषेक सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

0: शेफाली शाह को अपने बेजोड़ अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार शामिल हैं। सेट पर सबसे ज्यादा खुश रहने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री शेफाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जो भूमिकाएं निभाती है वे उस फिल्म का मुख्य किरदार होती हैं और वो अपनी भूमिकाओं में खामोशी को ढूंढती हैं। शेफाली अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वास्तव में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगी और फिल्मों में यूं काम करूंगी। लंबे वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं पूरी तरह से अभिनय करूंगी, ये बस होता गया और जो भी किरदार मैंने निभाए वो बहुत मजबूत किरदार बनकर उभरे हैं। तो ये था अभिनेत्री शेफाली शाह पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। आलेख, शोध और स्वर मंदाकिनी जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

नमस्ते कुरुक्षेत्र सुनने वाले सभी श्रोताओं को शशि बाला की प्यार भरी नमस्ते। दोस्तों नमस्ते कुरुक्षेत्र हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है। इसमें आप हमें फोन कर सकते हैं हमसे बातचीत। तो फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप हमें फोन मिला सकते हैं। लेकिन एक प्यार भरा अनुरोध, 15 दिन से पहले आप फोन दोबारा मत कीजिए। अगर आपने 15 दिन पहले हमें फोन किया था तो आज आपका टर्न नहीं है, आपकी बारी नहीं है। और श्रोताओं को भी आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से जुड़ने का एक मौका दीजिए। तो कृपया करके ध्यान रखिए कि आपने 15 दिन से पहले फोन नहीं करना है। और फोन करने के लिए हमारा जो नंबर है वो है 221-322। जब तक आप हमें फोन मिलाते हैं तब तक सुनिए हमारी पसंद का ये गीत।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं?
1: रमेश काम्बोज, गांव चमरोड़ी, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। ठीक
0: जी, रमेश काम्बोज जी, कैसे हैं आप?
1: है जी, आप कैसे हो? आकाशवाणी परिवार कैसा है जी?
0: आकाशवाणी परिवार एकदम चुस्त, स्वस्थ और दुरुस्त है।
1: मेरा भी
0: आपके
1: चाहिए।
0: यमुनानगर का मौसम कैसा है?
1: मौसम तो ठीक है जी, हवा चल रही है। आज जो है ना, पछुआ हवा इतनी तेज चल रही, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही।
0: अच्छा,
1: हाँ जी, हाँ जी भाई।
0: अरे वाह,
1: अभी खेत में हूँ, खेत में ज्यादा पता लगता है नहीं, गाँव में तो अटकाव सा रहता है।
0: जी। और वैसे यूं चलो, आज तो हवा चल रही है हल्की फुल्की, लेकिन गर्मी का क्या हालत है वहां पर? गर्मी के क्या हालात है?
1: फिलहाल तो जी जैसी हवा चल जाए तो सुबह चलो हवा ठंड थोड़ा मान है, नमी में आ क्योंकि बादल फजे रहा माड़ा माड़ा।
0: अच्छा, तो चलिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि गर्मी बहुत तीव्र, अपने जिसको कहते हैं
1: हाँ जी,
0: ना,
1: हाँ जी,
0: बहुत तीव्रता पर थी गर्मी,
1: हाँ जी,
0: तो
1: हाँ जी,
0: हीट वेव का, हीट स्ट्रोक का डर हो जाता है। और
1: बहुत ज्यादा जी।
0: जी,
1: अरे
0: तो
1: अब खेतों में तो मारता जी, विक्स कट दिया, बैठे हैं, कुर्सी भी है, मकान भी है, सारा कुछ है।
0: खेतों में तो तापमान थोड़ा सा कम ही रहता है, अगर
1: हाँ
0: बाहर
1: जी, हाँ
0: को
1: जी,
0: ज्यादा तापमान है, क्योंकि खेतों में पेड़ हैं,
1: हाँ
0: घास
1: जी,
0: घास है, फसलें हैं, तो वो
1: हाँ
0: हरियाली की
1: जी,
0: वजह से तापमान हल्का फुल्का कम तो रहता ही
1: हाँ
0: होगा।
1: जी, हाँ जी। तेजी तो ही ना, टेम्परेचर तेज वहां होता है जहाँ यहाँ फसल भी नहीं है, तो वहां जो है ना रेत है या इतनी गर्म हो जाती है जी, उससे 2-3 पॉइंट का टेम्परेचर वैसे ही बढ़ जाता है जी। तीन चार
0: जी, गीत कौन सा सुनोगे रमेश जी?
1: फिल्म का नाम उपहार है जी।
0: जी, गीत
1: हाँ जी,
0: गीत बताइए कौन सा।
1: माँ जी नैया ढूंढेगी ना,
0: आपको ये गीत शायद बहुत पसंद है।
1: मुझे बहुत पसंद आया जी, मुझे ऐसे ऐसे गीत बड़े पसंद आए जी। हालांकि
0: हाँ, तो
1: गीत
0: इस गाने के
1: तो हाँ
0: इतना
1: जी,
0: पसंद होने के पीछे क्या कारण है?
1: कारण तो मुझे ऐसे ही बहुत पसंद आई। अपने जीवन में पूरा सुखी हूँ, मेरा परिवार सुखी है जी, सारा आर्थिक स्थिति, शारीरिक, मानसिक, वो भी जिससे आप करते रहते होंगे, टेंशन से नीति किया है
0: चलिए,
1: क्योंकि
0: आप तक पहुंचाते
1: टेंशन
0: हैं, आप
1: टेंशन जो
0: तक।
1: है ना जी,
0: जी
1: या
0: जी
1: तो जी
0: जी
1: आर्थिक स्थिति या मानसिक या शारीरिक या वो भी इनकी वजह से होती है।
0: जी तो बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से ऐसे गीत आपको पसंद हैं। तो
1: हाँ जी,
0: आप तक पहुंचाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: श्रीनिवास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
2: अभी नमस्कार जी।
1: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं राकेश कुमार, बलेर टोला, पंजाब से बात कर रहा हूँ।
1: हाँ जी, कैसे हैं राकेश जी?
2: बहुत बढ़िया है जी, आप सुनिए
1: जी। हम भी अच्छे हैं। और गीत
2: बारिश हो रही है बलेर टोला में?
1: हाँ जी,
2: बारिश हो रही है। बारिश?
1: अरे वाह, पंजाब में बारिश हो रही है?
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
1: अरे मौसम सुहावना हो गया फिर तो। हाँ
2: जी हाँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
1: क्या बात है, आपसे पहले भी जिन श्रोताओं से बात हुई थी वो यमुनानगर से थे, वो भी कह रहे थे कि ठंडी हवा चल रही है, तो आप ही ने पंजाब से भेजी होगी ठंडी हवा।
2: हाँ जी हाँ जी।
1: ठीक है, अच्छा गीत कौन सा सुनेंगे?
2: फिर भाई महुआ का सुना रहा, टाइटल सॉन्ग।
1: महुआ का टाइटल सॉन्ग।
2: धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत
1: आपका भी धन्यवाद फोन करने के लिए। आप आपकी पसंद का ये गीत।

0: लत तो लगेगी ही, क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है।
1: ऐसा जैसे है मेरा, ऐसा जैसे है मेरा,
0: ऐसा देश है मेरा, हर दूसरे और चौथे शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 MHz अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा, हर दूसरे और चौथे शनिवार को।

हेलो हेलो, हमारे साथ करमजीत कौर जुड़ी थी ठौल कुरुड़ी से, लेकिन शायद किसी कारणवश उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। उन्होंने जिस गीत की फरमाइश की थी वो गीत हम आपको सुनवाई देते हैं।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, सचिव बालाजी नमस्ते। गांव
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मुरादगढ़ जिला करनाल से रमेश कुमार काम्बोज।
0: जी, आपके ही भाई बंधु रमेश काम्बोज का भी पहले फोन आया था, चमरोड़ी यमुनानगर से जो संबंध रखते हैं। और
1: हाँ जी, हाँ
0: आप तो दोनों रमेश ने सलाह करके फोन किया है या अचानक से हो गया?
1: नहीं जी मैडम, ये तो अलग से मिलता है।
0: अचानक से हो गया, चलिए होता है जिंदगी में, कभी कभी इत्तेफाक भी होते हैं। गीत
1: हाँ
0: बताइए कौन से सुनेंगे?
1: ब्रह्मवीर का सुना जी मैडम,
0: जी आप तक
1: पापा
0: पहुंचाते
1: जो इस दुनिया में।
0: जी आप तक पहुंचाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: अब एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर लेते हैं कि गर्मियों में आग लगने की घटनाओं से कैसे बचाव किया जाए। तो भाई, अपने घर, दुकान या कार्यस्थल पर इलेक्ट्रिकल जो लोड है उसे संतुलित रखिए। ज्वलनशील पदार्थों को धूप से दूर सुरक्षित स्थानों पर ही स्टोर करें और हमेशा एक सर्टिफाइड फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक यंत्र, जिसे कहते हैं, वो तैयार रखें। आप ओवरलोडिंग से बच सकते हैं। वायरिंग की जांच जो है वो करवाते रहिए समय समय पर। वोल्टेज में उतार चढ़ाव होने पर भारी उपकरणों को हमेशा बंद कर दें। गैस पाइप की जांच भी करवाते रहिए, हर एक दो साल में बदल लेनी चाहिए गैस पाइप। ज्वलनशील सामग्री जैसे कि माचिस, लाइटर, केरोसिन, पेट्रोल, इनको गैस चूल्हे या धूप से दूर रखें। घर के अंदर धूम्रपान ना करें, कचरा ना जलाएं, कूलर में पानी खत्म होने पर उसे सूखा ना चलने दें, इससे मोटर गर्म होकर आग पकड़ सकती है। आपातकालीन नंबर जो है वो आपके पास हमेशा होना चाहिए। फायर ब्रिगेड जो 101 है और एम्बुलेंस 108, ये दो नंबर हमेशा याद रखें। घर में रेत, पानी से भरी बाल्टी और एक अग्निशामक यंत्र हमेशा तैयार रखें। तो इनसे इन बातों पर अमल करके हम अग्नि से जो अचानक आग लग जाती है उसकी घटनाओं से बच सकते हैं। अब देखते हैं कौन से श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ओम प्रकाश के बिना कुछ क्षेत्र से बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी ओम प्रकाश जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया जी, बढ़िया।
0: हाँ जी, गीत कौन सा सुनेंगे?
1: जब प्यार किसी से होता है, सुना दीजिए, 100 साल पहले
0: जी। क्यों पसंद है आपको ये गीत?
1: बहुत अच्छा लगता है, पुराना गीत है।
0: नहीं, क्यों पसंद है? कोई कारण होगा इस गीत को पसंद होने का, या वैसे ही पुराने गीत?
1: नहीं, नहीं, वैसे अच्छा लगता।
0: अच्छा, चलिए ठीक है।
1: आजकल कुल्लू में पानी बदलते रहना चाहिए हमारे को 2-3-4 दिन बाद।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और कहीं पे कोई पैर टूर पड़े हैं, या कोई कई बार पूजिया रखते हैं, दिवाली को उसके और पानी वाला रखता है, मच्छर पैदा होता है।
0: बिल्कुल सही पकड़े आप। चलिए अब आपको आपकी पसंद का गीत भी सुनवाते हैं।
1: थैंक यू
0: फोन करने के लिए, धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: दीदी मैं, हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं दीदी, मैं बोल रहा हूँ सचिन, मैं रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश यूपी जिला उन्नाव से और बोलपुर के सेक्टर 7 से रहा हूँ।
0: सेक्टर 7 कुरुक्षेत्र से
1: जी।
0: सतीश पेंटर, हाँ
1: जी
0: जी। गीत कौन सा सुनोगे
1: दीदी? आप फिल्म फिल्म से सुना दे दीदी, क्या था जिसके लिए, उसके लिए मरता था एक तो लड़की जिसे मैं प्यार करता।
0: आप तक पहुंचाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने

श्रोताओं, गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले छोटी सी ये जानकारी आपको दे दें कि भारत में कुल 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जो 100 से अधिक सक्रिय घरेलू हवाई अड्डे और सिविल एनक्लेव हैं। ये हवाई अड्डे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा संचालित होते हैं।

0: हेलो।
1: हेलो, राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गांव मानपुर के दिन से राम फल बोल रहा जी।
0: राम फल जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: अजी ठीक है जी, टाइम तो राजस्थान में आया है जी, गुरु गोरखनाथ के किले पर है जी।
0: अच्छा, चलिए गीत कौन सा सुनेंगे?
1: गीत लाला मजनू का जी, जो तेरे दर पे आए हैं झोली भर के प्यारे
0: जी। आप तक पहुंचाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: अच्छा जी, राम राम जी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र, ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम, जिसे हम विविध भारती से रिले करेंगे।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन।

0: चश्म नम मुस्कुराती रहे रात भर।
1: कार्यक्रम का आगाज हमने किया फिल्म गमन की इस गजल के साथ। गायिका थी छाया गांगुली। इसे लिखा था मखदूम मोहिउद्दीन साहब ने और धुन बनाई थी जयदेव ने। जगजीत कौर की आवाज में हम आपको फिल्म बाजार की ये रचना सुनवा रहे हैं। मिर्जा शौक की रचना है और खयाम साहब की धुन।

जगजीत कौर को अभी आपने सुना फिल्म बाजार में। और लीजिए अब सुनिए कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर की रचना, आवाज चित्रा सिंह की है और फिल्म का नाम है साथ साथ।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म गजल का ये गीत सुनवा रहे हैं। गीतकार है साहिर लुधियानवी और धुन बनाई है

ग्यावस थी आशा भोसले की और फिल्म का नाम था उमराव जान। इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आवाज लता मंगेशकर की फिल्म का नाम है लेकिन। गीत को गुलजार साहब ने लिखा है और धुन बनाई है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो।

मैटिनी शो के इस ताजा तरीन अंक में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आज के इस अंक को लेकर दोस्तों, फिल्मी दुनिया में फिल्मी पर्दे पर फिल्मी गीतकारों ने हमारे आभूषणों पर बहुत सारे गीत लिखे और नायिकाओं को वो आभूषण पहनाकर हमें बहुत ही आनंदित किया है ना। तो ऐसा ही एक आभूषण है झुमका। जी हाँ, झुमका, जिस पर हमारे फिल्मी यानी यूं कहीं फिल्मकारों ने और फिल्मी गीतकारों ने बहुत सारे गीत लिखे और पर्दे पर फिल्माए। तो आज उन्हीं गीतों को लेकर हमने इस मैटिनी शो को आपके लिए चुना है। जी हाँ, झुमका। झुमका शब्द आते ही कितने सारे गीत आपके कानों में गूंज गए होंगे ना। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, और न जाने ऐसे कितने सारे गीत। जी हाँ, तो झुमका एक आभूषण नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सौंदर्य का प्रतीक भी है। कानों में झूमते हुए और छन छन की आवाज करते हुए ये सुंदर झुमके हर पहनावे की शोभा बढ़ा देते हैं। तो आज मैटिनी शो में ये झुमके कहर ढाने वाले हैं।

ना मिला है किसी का झुमका, तो ये झुमका मिला था फिल्म परख में और आवाज लता मंगेशकर ने दी थी, गीतकार थे शैलेंद्र और संगीत दिया था सलील चौधरी ने। अब जब बात झुमकों की चली है तो ये तय है कि आपने एक झुमके के बारे में जरूर सोचा है, वही गाना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो जाहिर है जब झुमका बरेली के बाजार में गिरा होगा तो फिर उस बाजार में जाकर हम झुमका जरूर खरीदेंगे। तो आप भी बरेली के बाजारों से झुमका खरीदने की अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि वहां कई खास डिजाइन के झुमके हमें मिल जाते हैं। अगर हम फिल्मी इतिहास की बात करें तो झुमका गिरा रे गाने ने बरेली के झुमकों को दुनिया भर में मशहूर कर दिया था, है ना। और ये गाना 1966 की फिल्म थी मेरा साया, अभिनेत्री साधना पर फिल्माया गया ये गीत था। और सच पूछा जाए तो ये झुमके आमतौर पर जो बरेली के झुमके हैं काफी बारीक नक्काशी और रंग बिरंगी मीनाकारी मोती और कुंदन के काम के साथ पेश किए जाते हैं। और यहाँ के झुमके देखने में जितने बड़े भारी और आकर्षक होते हैं ना, असल में उनका वजन

जी तो मदन मोहन के संगीत निर्देशन में ये था राजा मेहदी अली खान का लिखा गीत। आशा भोसले की आवाज थी और ये फिल्म थी मेरा साया। बहुत सारी फिल्मों में झुमकों पर काफी कुछ लिखा गया है, फिल्माया गया है। और झुमकों की जो दुनिया है ना दोस्तों, भारत की तरह ही विविधतापूर्ण है। हाँ, जहाँ हर क्षेत्र अपनी अनूठी शैली और शिल्प कौशल से इन सदाबहार झुमकों को एक नया आयाम देता है। चाहे आपको बड़े सुनहरे झुमकों की भव्यता पसंद हो या स्टड झुमकों की सादगी भरी खूबसूरती, हर पसंद और अवसर के लिए एक न एक डिजाइन मौजूद रहता है। जैसे जैसे फैशन के रुझान बदलते हैं, वैसे वैसे फैशन की प्राथमिकताएं भी विकसित होती रहती हैं और हमारी रुचि भी पनपती रहती है। हाँ, एक बात स्थिर रहती है, वो क्या? वो ये कि नारीत्व, संस्कृति और परंपरा के प्रतीक के रूप में झुमकों का जो आकर्षण है वो हमेशा नारी के मन में बना रहता है। और जब हम झुमका शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्लासिक घंटी के आकार के, आमतौर पे सोने चांदी या बारीक कारीगरी से भरपूर झुमके याद आते हैं। और आजकल तो बहुत सारे जो हैं आर्टिफिशियल झुमके भी हमें मार्केट में मिल जाते हैं। आप चाहें तो कोई भी झुमका अपनी पसंद का ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। हाँ, ये याद रखिएगा, पारंपरिक झुमके कभी पुराने नहीं होते।

निगाहों ने मार डाला, होए होए होए धूप है चंदा, जुल्फ है फंदा, बंदा बेहाल है, हाथ में छल्ला।

जी हाँ, ये गीत फिल्म पायलट ऑफिसर से हमने लिया था और सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी ने इसे गाया था। आनंद बख्शी के बोल थे, रोशन की धुन थी। तो बात चल रही है आज झुमकों पर, और झुमके तो कई तरह के डिजाइन और स्टाइल में आते हैं और हर मौके और आउटफिट के अनुसार चुने भी जाते हैं। जब बात स्त्री की आती है, औरत की पसंद की आती है, तो नारी इन झुमकों को हमेशा प्राथमिकता देती है। और ट्रेंडी झुमके बहुत तरह के बाजार में हमें मिलते हैं, जिसे आप खरीद सकते हैं और अपने कहना चाहिए आउटफिट में धारण कर सकते हैं। जैसे चांद वाली झुमका, ये चांद के आकार का होता है और इसके नीचे सुंदर घुंघरू या मोतियां लटकी होती हैं। साड़ी या लहंगे के साथ ये बहुत अच्छा लग सकता है। टेम्पल झुमका, ये साउथ इंडियन स्टाइल के झुमके होते हैं जिन पर देवी देवताओं या पारंपरिक आकृतियों की नक्काशी

में मिलते हैं। ये आपको सोचना है कि आपको किस तरह की डिजाइन इन झुमकों में पसंद है। पर हाँ, देखिए ना, आपको चाहे कोई भी झुमका पसंद हो, लिखने वाले ने यानी फिल्मी गीतकार ने झुमकों के बारे में बहुत खूब लिख दिया है।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: दोस्तों, हमारी फिल्मों में, हमारे फिल्मी गानों में हमारी संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। हमें हर गहने पर कई फिल्मी गीत सुनने को मिलते हैं, पैरों से लेकर सिर तक न जाने कितने महत्वपूर्ण अलंकारों पर हमारे गीतकारों ने गीत लिखे हैं। अब देखिए ना, हम बात कर रहे हैं झुमके की, साथ ही अगर हम बात करें पैरों में पहने जाने वाली चांदी की पायल की, तो ये भी एक लोकप्रिय आभूषण है जिस पर काफी गीत लिखे गए हैं। नहीं नहीं, हम आपको पायल से संबंधित कोई भी गीत नहीं सुनवा रहे, फिलहाल तो हम आपके लिए आज झुमका ही लेकर आए हैं। लेकिन हम बता रहे हैं कि कितने सारे अलंकारों पर हमारे फिल्मी गीतकारों ने इन गीतों को लिखा और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को यूं आगे बढ़ाया।

0: वाली उम्र है।
1: छोड़ो बहाना।
0: ना ना ना।
2: कहते हैं झुमका गिरना आसान है, लेकिन झुमके को ढूंढना बहुत गंभीर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम आपको बता दें, एसडी बर्मन का संगीत था, आनंद बख्शी के बोल थे, युगल स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी फिल्म जुगनू के लिए। तो बात चल रही है झुमकों की। अगर आज के इस माहौल में हम बात करें तो बहुत तरह के झुमके हमें फैशन के तौर पर मिल सकते हैं। ऑफिस के लिए अगर हम चाहें तो हल्के झुमके जो रोजाना हम पहन सकते हैं, छोटे छोटे झुमके लाइट वेट गोल्ड के या जो है आर्टिफिशियल झुमके भी आप पहन सकते हैं, पसंद किए भी जा रहे हैं। कुंदन के, पर्ल के, शादी लहंगे, शादी में खास तौर पर लहंगे और खास जो कपड़े आप पहनते हैं उसमें आप कुंदन का वर्क किए छोटे छोटे मोती जड़े जो है झुमके भी पहन सकते हैं। इसके अलावा सुई धागा इयररिंग्स भी मिल रही हैं, और ये जो डिज़ाइन है लंबी पतली चेन और नीचे छोटी डिज़ाइन के साथ साथ आती है, जो इंडियन और इंडो वेस्टर्न दोनों तरह का लुक देती है और हमें अच्छी भी लगती है। खासतौर से यंगस्टर्स के कानों में तो ये बहुत अच्छी लगती है, और कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं और कैजुअल जो आउटिंग्स के लिए अगर आप चाहते हैं तो काले और सिल्वर मेटल के बड़े झुमके मिरर वर्क वाले भी पहन सकते हैं और अपनी सुंदरता में चार चांद लगा सकते हैं।

0: ये था आज का मैटिनी शो। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए ये नए उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के सचिव अजय सहगल को फर्जी सहमति पत्र जमा करके धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन प्राप्त करने से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। ये जांच पंजाब पुलिस ने किसानों की शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की थी। विभाग की जांच में पता चला कि आरोपियों ने 15 भूस्वामियों की 30.5 एकड़ भूमि के संबंध में फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपये तक की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए गीतकार कैफी आजमी के कुछ गीत चुने हैं।

ये आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था हंसते जख्म। गीतकार कैफी आजमी थे और संगीतकार थे मदन मोहन।

ये स्वर लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है आखिरी खत। कैफी आजमी के बोलों को संगीत से सजाया है खयाम साहब ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नौनिहाल से लिया है। गीतकार कैफी आजमी के बोलों को संगीत में ढाला है मदन मोहन ने।

0: ग्यावस थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था नौनिहाल।
1: अरे सुनो।
2: हाँ?
1: सावधान रहना।
2: क्यों, क्या हुआ? कोई चोर डाकू आगे हैं क्या?
1: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
2: अच्छा।
1: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
2: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ! आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
1: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
2: तो?
1: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
2: अच्छा,
1: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
2: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
1: क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतकार कैफी आजमी की गीत रचनाएं। आइए सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म गोरा का ये गीत।

हेमंत कुमार को अभी आपने सुना फिल्म कोहरा में। कार्यक्रम का अगला गीत कमल मित्रा के संगीत निर्देशन में आशा भोंसले और हेमंत कुमार का गाया हुआ है। फिल्म का नाम यहूदी की बेटी।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म क्षमा से आवाज सुमन कल्याणपुर की। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और धुन बनाई है गुलाम मोहम्मद ने।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज जगजीत सिंह की, फिल्म का नाम है

फिल्म अर्थ की गजल अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में। हेमंत कुमार का संगीत, कैफी आजमी की बोल, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम अनुपमा।

लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। ये फिल्म है शोला और शबनम।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था शोला और शबनम। लीजिए अब सुनिए मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है हकीकत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। सुरीला सफर बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। जी हाँ, हम आ गए हैं आपका अपना कार्यक्रम लेकर सुरीला सफर। मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सुरीला सफर में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जिंदगी का ये सफर उतार चढ़ाव भरे एक खूबसूरत सुरीले गीत जैसा ही तो है, जो अपने अनोखे तजुर्बों और अनुभवों से भरा हुआ है। यानी हर लम्हा एक नई धुन की तरह आता है, जिसमें सुख दुख के सुर मिलकर इस यात्रा को यादगार बना देते हैं, है ना? तो आज का ये सुरीला सफर कितना यादगार बन जाएगा, क्योंकि आज हमारे श्रोताओं ने उस सफर में घुसकर उन गीतों को ढूंढ लिया है जो गीत आज हमने आपके लिए चुने हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमने आपको थोड़ा सा क्लू दे दिया था ताकि सरल हो जाए वो बात जो आप चाहते थे, और आपने वो कर भी दिखाया, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम दो महिला गायिकों द्वारा गाए गए गीत पर आधारित है। यानी इनमें दो महिला गायिकाओं ने अपनी आवाज दी है, और आप सभी जानते हैं कि हमारी फिल्मों में एक खास जगह रखते हैं वो गीत जहां दो अलग अलग महिला आवाजें आपस में मिलती हैं और वे गानों में एक अलग ही ऊर्जा और मस्ती और भावुकता भर देती हैं। तो ऐसे कई शानदार गीत हैं महिला जुगलबंदी से में, जो गायिकाओं में अनोखा तालमेल हमें देखने और सुनने को मिलता है। लता जी की बात करें, आशा जी की बात करें, उषा जी की, गीता दत्त की, सुमन कल्याणपुर की, कमल बारोट की, न जाने कितनी ऐसी आवाजें हैं आज इस सुरीले सफर में हमारे साथ। और ये सभी गीत, जैसा कि हमने आपको बताया, एक ही संगीतकार चित्रगुप्त साहब, यानी महान संगीतकार चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में गाए गए गीत हैं। तो हमने आपको थोड़ा सा जब ये बता दिया था तो आपने उन गीतों को ढूंढ भी लिया है। हाँ, कुछ श्रोताओं ने कहा है कि भाई अभी भी हम इन गीतों को नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई बात नहीं, आज इस सुरीले सफर में आप शामिल हुई ना हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। चित्रगुप्त साहब का संगीत, प्रेम धवन के बोल, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजें। फिल्म का नाम है तूफान में प्यार कहां।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। श्री मोदी ने विभिन्न विभागों में नौकरी पाने वाले युवाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी युवा कठिन परिश्रम के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। श्री मोदी ने कहा,
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: ये रोजगार मेला हरियाणा में अंबाला, फरीदाबाद सहित देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य को इलेक्ट्रिक वाहन और ऑटोमोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में देश का अग्रणी केंद्र बनाएगी। इस उद्देश्य से कल मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में उद्योग प्रतिनिधियों, निवेशकों और संबंधित अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में हरियाणा के औद्योगिक विकास, निवेश संभावनाओं तथा एकीकृत ईवी एवं ऑटोमोटिव विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की रणनीति पर विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया। इस दौरान वैश्विक ईवी निर्माता कंपनी विनफास्ट से संबंधित केस प्रस्तुतीकरण भी किया गया, जिसमें हरियाणा में संभावित निवेश एवं विनिर्माण अवसरों को रेखांकित किया गया। बैठक में हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विनफास्ट कंपनी की कार को चलाकर भी देखा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि उद्योग जगत और सरकार के बीच मजबूत समन्वय से हरियाणा आने वाले समय में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ऑटोमोटिव विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक पहचान स्थापित करेगा। हरियाणा की सिंचाई एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कल पंचकुला स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों, क्रेच, बाल देखभाल संस्थानों एवं शिशु निकेतन केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान श्रुति चौधरी ने बच्चों से सीधे संवाद कर उन्हें उपलब्धि करवाई जा रही सुविधाओं, खान पान और देखभाल संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कई स्तरों पर लापरवाही सामने आने पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने पाया कि मुख्यालय स्तर की वरिष्ठ महिला अधिकारी भी नियमित निरीक्षण के लिए केंद्रों में नहीं पहुंच रही हैं। इस दौरान श्रुति चौधरी ने लापरवाही बरतने के मामले में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक से स्पष्टीकरण लेने के आदेश जारी किए। चंडीगढ़ प्रशासन के स्कूल शिक्षा निदेशक नीतीश सिंगला ने सभी निजी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा भीषण गर्मी के दौरान भी स्कूल खुले रखने का सख्त नोटिस लिया है। श्री सिंगला ने कहा कि ऐसे सभी स्कूल आज से ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण बंद रहेंगे। आवश्यकतानुसार स्कूल 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की केवल ऑनलाइन कक्षाएं जारी रख सकते हैं। 8वीं तक के बच्चों की किसी भी माध्यम से कक्षाएं नहीं होंगी, उन्हें पूरी तरह छुट्टी रहेगी। उल्लेखनीय है कि आज से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सभी सरकारी स्कूल भी ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए बंद रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर आम जन को लू से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। जींद नागरिक अस्पताल के वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजू सिंगला ने आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में बताया कि अस्पताल में एडवाइजरी के अनुसार सभी प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को गर्मी में बाहर न निकलने की सलाह दी।
2: आजकल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो प्रेग्नेंट लेडीज को मेरी यही सलाह है कि वो बहुत ज्यादा जरूरत हो इन केस ऑफ डायर इमरजेंसी ही हॉस्पिटल में आए, बाहर निकलें, क्योंकि गर्मी लू लगने से उस पेशेंट को उल्टी दस्त लगने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं और जिसकी वजह से उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है।
0: इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
3: चित्रगुप्त साहब,

जी हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने अपने विचार लिखे हैं और खुश भी हैं कि आज थोड़ी सी तब्दीली उन्हें अच्छी लगी है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के संगीतकार चित्रगुप्त हैं, उन्होंने अपनी हर एक फिल्म को अद्वितीय ढंग से मेलोडी प्रदान की थी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज हम आपके साथ रहेंगे, अभी हमारा मन कुछ उदास सा है, क्यों भाई? तो लिखने का मन नहीं है, पर हाँ, आज के पेपर को सरल कहें या कठिन समझ में नहीं आ रहा है। ये जरूर है कि यदि हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो पेपर सरल हो ही जाएगा, और अगर साथ में आप हैं तो इतने काबिल श्रोताओं का तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। वैसे भी हम सब विविध भारती की पाठशाला में रोज इतना कुछ पढ़ते हैं कि सवाल के जवाब न भी दे पाए ऐसा हो नहीं सकता, जरूर देंगे आपके प्रश्नों के उत्तर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये जो रोचक परिवर्तन किया गया है, इससे श्रोताओं को आसानी हुई है और उनकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी। अब किसी को एग्जाम का अनसीन पैसेज हल नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, दो गायिकाएं तो लता मंगेशकर और आशा भोसले ही हैं, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी शंकर जयकिशन में से एक लग रहे हैं, बाकी श्रोता अपना दिमाग लगाएंगे। इस परिवर्तन से मैं आज खुश हुआ हूं और विविध भारती का आभारी हूं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज एकदम अनोखा निराला और अभिनव प्रयास किया है आपने, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। कार्यक्रम में विविधता ही उसकी पहचान बनती है, जो बरबस श्रोताओं को खींच लाती है और श्रोतागण भी आनंद पूर्वक हिस्सा लेते हैं। इस कार्यक्रम में हमेशा विविध भारती अव्वल रही है, याददाश्त और दिमाग की कवायद सभी की शुरू हो चुकी होगी। देखें किन किन सौभाग्यशालियों के हाथ बटेर लगती है। दिलचस्प कार्यक्रम का बेकरारी से इंतजार रहेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के गाने संगीतकार चित्रगुप्त के संगीत से सजे लग रहे हैं। तेरी आंखों में प्यार मैंने देख लिया, गौरी तू लाख छुपा, आपने कई गानों का यहाँ जिक्र किया है, तो सुनिएगा आज की गीतमाला आपकी गीतमाला से मिलती है कि नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर लगता है बहुत आसान है पर बहुत कठिन है। मुझे ज्यादातर गानों के बारे में पता चल गया। एक बात बता दूं, सभी गानों के संगीतकार चित्रगुप्त हैं, अब गानों और फिल्मों के नाम भी इन्होंने बताए हैं, तो आप देखिएगा आपकी जो ये प्लेलिस्ट है उससे हमारी प्लेलिस्ट कितना मिल खाती है, बताइएगा और लिखिएगा, हमें इंतजार है, ठीक है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज थोड़ा अलग सा दिमाग की परीक्षा लेने वाला सुरीला सफर है। ये अंदाज है कि आज चित्रगुप्त जी के संगीत निर्देशन से हमारा सुरीला सफर तय होने वाला है। आपने भी कुछ गीतों के नाम लिखे हैं और उनका जिक्र किया है, तो पता लगाइए आज हमारी पसंद क्या आपकी पसंद से मिलती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर में आपका तहे दिल से स्वागत है। इस भीषण भरी गर्मी में विविध भारती के नीचे मधुर गीतों के जरिए शीतलता मिलेगी और ये सफर सुहाना होगा, बिल्कुल सुहाना होगा ये सफर इस गीत के साथ। और इस गीत के बाद मैं आपसे दो सवाल पूछूंगी जिसका उत्तर भी आपको तैयार रखना है। उषा मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है नई जिंदगी, प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त का संगीत।

तो ये गीत आपको कैसा लगा? सुंदर गीत लगा ना, बहुत ही खूबसूरत गीत था। और हमारे श्रोता अपनी बात लिख रहे हैं, आप लिखते हैं कि संगीत का ये सफर वाकई बहुत सुरीला और दिलचस्प है। आपने जो सुराग दिए हैं, एक ही संगीतकार, दो महिला गायिकाएं और ये 12 विशिष्ट शब्द, ये सीधे तौर पर भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम यानी गोल्डन एरा की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन शब्दों और शर्तों को जोड़ने पर जो नाम सबसे ऊपर उभरता है वो है संगीतकार ओपी नैयर साहब का या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। जी नहीं, आज हम आपको एक ही संगीतकार जो कि चित्रगुप्त साहब हैं, उन्हीं से जुड़े गीत सुनवा रहे हैं। यानी चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में आज जिन दो महिला गायिकाओं ने जुगलबंदी की वो गीत हमने आपके लिए चुने हैं। फिर भी आपने प्रयास किया, सबसे बड़ी बात यह है। आप लिखते हैं कि आशा भोंसले और गीता दत्त की जोड़ियां हैं, इस तरह के बहुत सारे सदाबहार गाने हैं जिनका अंदाजा लगाया जा सकता है। और आपने कुछ गानों का जिक्र किया भी है। देखिए आपके गाने हमारे गानों से कितना मेल खा रहे हैं, गौर कीजिएगा और हमें लिखिएगा जरूर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चित्रगुप्त सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वे उस सुकून, ठहराव और मेलोडी का नाम है जो आज भी रेडियो पर बजने पर हमें एक खुशनुमा जमाने में वापस ले जाते हैं। महान संगीतकार चित्रगुप्त भारतीय सिनेमा के वे अमर गायक शिल्पी थे जिन्होंने बिना किसी भारी भरकम वाद्य यंत्रों के शोर के अपनी सादगी और दिल को छू लेने वाली धुनों से संगीत को नवाजा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार तो चित्रगुप्त हैं और प्रत्येक गाना दो फीमेल सिंगर्स का गाया हुआ है। आपने भी कुछ गाने लिखे हैं, बिल्कुल आपके गाने हमारे कुछ गानों से बिल्कुल मेल खा रहे हैं। देखिए कौन कौन से गाने हैं, बताइएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती के सुरीले सफर में इबारत से कुछ चीजें स्पष्ट करके आसान किया है आपने, जैसे एक ही संगीतकार और दो महिला गायिकाएं, बस अब शब्दों के गानों पर दिमाग लगाते हैं और गानों का निर्णय हो ही गया, समझो। अरे वाह क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, सरल नहीं कठिन है आज की गीतमाला, आपके दो प्रश्नों से ज्यादा भी कठिन है। अरे अभी तो दो सवाल हमारे आए ही नहीं है, कैसे कठिन हो सकती है। आज तो हमने आपको शब्द दे दिए थे और साथ ही बता दिया था कि एक ही संगीतकार पर केंद्रित है ये शब्द और दो गायिकाओं पर, मतलब दो जो जुगलबंदी है महिला गायिकाओं की जुगलबंदी होगी, कितना सारा तो बता दिया था आपको और हमारे कई श्रोताओं ने पकड़ भी लिया है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज का सुरीला सफर ने दिमागी तापमात्रा बढ़ा दी है, संभावित गानों का शब्द अनुरूप कयास लगाना कष्टप्रद है, इन्हें ढूंढने में श्रोता बंधुओं के कमेंट्स कारगर सिद्ध हो रहे हैं। आज श्रोता बंधुओं की लिस्ट के अनुसार ही हम भी चलने वाले हैं। चलिए तो आज के दो सवाल, वैसे दो सवाल नहीं है लेकिन इन्हीं सुरीले सफर से जुड़े ये सवाल हैं। चूंकि आज आप सुन रहे हैं कुछ गीत, तो इनसे इतर आपसे कुछ पूछ लिया जाए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं। जैसे मुझे एक गीत बहुत पसंद है, जब जब तुम्हें भुलाया तुम बहुत याद आए, है ना ये गीत, जहां आरा फिल्म का लता मंगेशकर और आशा भोंसले की जुगलबंदी है। तो इस तरह के और भी गीत जो हैं महिला जुगलबंदी वाले गीत, वो आपको कौन कौन से गीत पसंद हैं या याद हैं उसका जिक्र जरूर करें। और एक सवाल हमारा ये है कि संगीतकारों के बारे में बताइए, ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने महिला युगल गीत गवाए।

वो गीत आपको पसंद हैं, जैसे कि आज हमने चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जुगलबंदी गीत लिए हैं, ऐसे बहुत सारे संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे गीत गवाए हैं, आप बताइए कौन से ऐसे संगीतकार हैं जो आपको पसंद है या उनके गाने आपको याद हैं। आगे बढ़ते हैं सुरीले सफर के इस गीत की ओर। चित्रगुप्त साहब का संगीत पंडित भरत व्यास के बोल हैं, सुमन कल्याणपुर और कमल बारूट की आवाजें हैं। इस बार फिल्म का नाम है महाभारत।

आज की सवाल एक बार फिर से दोहराए देते हैं। पहला सवाल हम आपसे ये कर रहे थे कि आपकी पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं, जैसा कि मैंने अपनी पसंद का गीत आपको बताया। फिल्म जहां आरा का लता मंगेशकर और आशा भोसले का गाया वो गीत जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए, है ना। ठीक उसी प्रकार और भी बहुत सारे गीत हैं, तो आपको कौन सा गीत पसंद है या बताइए कौन कौन से गाने पसंद है। और एक सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं इसका जवाब कि संगीतकारों में बताइए ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने महिला युगल गीत गवाए और वो आपको याद हैं वो गाने, या वो गाने आपको बहुत पसंद हैं। जैसे आज हम चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जो महिला जुगलबंदी वाले गीत लेकर आए हैं, ठीक उसी प्रकार और भी संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे गीतों की रचना की है। बताइए वो कौन कौन से गीत हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि 1 बजे जब सुरीला सफर शुरू होगा तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और श्रोता दिमाग पर कम जोर डाले, सुरीले गीतों का आनंद लें और गीत भी पहले से अधिक बजेंगे। धन्यवाद विविध भारती, धन्यवाद मुझे। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं लगाना है कि हमें बुरा लगे या हमें गुस्सा आ जाए या हम तनावग्रस्त हो जाए। बिल्कुल मनोरंजक कार्यक्रम है ये, आपके मनोरंजन के लिए इसका आनंद उठाइए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये बहुत अच्छा नया प्रयास है, शब्द आपने दे दिया और हिंट भी दे दिया है, तो कोशिश भी हमारी बनी रहेगी। और वहीं आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि लगता है आज आपने यू टर्न मार दिया है, सुरीला सफर का ये पैटर्न भी अच्छा है, अब फिर परीक्षा होगी जानकारी बता पाएंगे, चलो चलें सुरीले सफर पर मंदाकिनी जी के साथ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गेंद आपने डाली है वो गुगली जैसी लग रही है, लेकिन यॉर्कर भी हो सकती है या फिर वाइड हो सकती है, बाहर निकल जाएगी, ज्यादातर बल्लेबाज असमंजस में है। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, आज तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आप लोग, देखिए ना फटाफट हमारे कुछ श्रोताओं ने तो बिल्कुल सही गाने चुने हैं। अब हमारे पास वक्त नहीं होता उन सभी गानों का जिक्र यहाँ करने का, वरना आपको बताते कि आज बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने सही चुने हैं। एक श्रोता ने लिखा है आज शायद यही गाने बज पाने वाले हैं, बेहद अच्छा आज शायद यही गाने बजेंगे, आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, बेहद हिम्मत वाला काम है, अगर ऐसे गाने शामिल होंगे तो कार्यक्रम की रोचकता बनी रहेगी और कुछ हर रोज बजने वाले गानों से अलग सुन सकेंगे, बेहद नायाब चयन है, आपने हमें धन्यवाद दिया है। और बिल्कुल आपके कुछ गीत तो हमारे प्लेलिस्ट से बिल्कुल मेल खा रहे हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको, आप सभी श्रोताओं को जो आज की जो सुरीला सफर की ये प्लेलिस्ट है उसमें आप शामिल हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार चित्रगुप्त मखमली धुनों और सादगी के मसीहा थे, भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में जहां एक तरफ शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, एसडी बर्मन जैसे दिग्गजों का दबदबा था, वहीं एक ऐसा संगीतकार भी था जिसने बिना किसी तामझाम के बेहद सादगी और गहराई से भरपूर संगीत दिया, उनका नाम था चित्रगुप्त। चित्रगुप्त श्रीवास्तव हिंदी सिनेमा के उन अनमोल रत्नों में से एक हैं जिनके गीतों की मिठास आज भी कानों में मिश्री घोल देती है। बिल्कुल सही कहा, और वही मिश्री घोलने वाले गीत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगला गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है, इस बार आवाजें हैं गीता दत्त और उषा मंगेशकर की, और ये फिल्म है माँ बाप।

जी कितना खूबसूरत गीत था, है ना। अच्छा, इस गीत को आपने पहले कभी सुना था बताइएगा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वे आज तो भैया इस भरी गर्मी में थोड़ी सी भी यदि ठंडाई की बात करूं तो वो है विविध भारती, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में अच्छा मैं आई हूं तो गानों की बौछार होगी। गानों की बौछार तो हमेशा ही होती है और मन आनंदित होगा। सचमुच ही कल की गीतों भरी कहानी सुनी जिसमें एक ऐसा प्रसंग आया जहां मुझे रोना ही आ गया था। धन्य विविध भारती जो ऐसे प्रसंग लाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहला गाना एकदम अनसुना सा था, यहाँ तक कि सिनेमा का भी नाम नहीं सुना था। तूफान में प्यार कहां, सिर्फ विविध भारती के पास ही ऐसा कलेक्शन हो सकता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम सबसे अलग होता है, इस महारथी आपको ये महारत आपको हासिल है। अच्छा, मुझे बहुत शानदार सुंदर, क्योंकि सुने कौन सा संगीत, गीतों से हम भीषण गर्मी में ठंडक महसूस कर रहे हैं, मस्ती और आनंद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं आपको मुझे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती परिवार और सभी मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज परीक्षा में पेपर अनुमान से ज्यादा आसान आ जाता है तो खुशी के मारे जो याद किया था वो भी भूल जाते हैं। दूसरे आसान पेपर की मार्किंग भी हार्ड होती है। श्रोताओं में बहुत से शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, वे सब मेरी बात का समर्थन करेंगे। अब नंबर देना आपके हाथ में है, देखें आप कितना लिबरल रहती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने आज सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सुरीला सफर की पोस्ट का इंतजार किया, फिर मैं अपनी नौकरी के लिए निकल गया। 10:30 बजे नौकरी पर पहुंचकर कुछ घंटे काम किया, उसके बाद 12 बजे मैंने सुरीला सफर की देखी, फिर श्रोता मित्रों की पोस्ट देखी, तब मालूम पड़ा आज सुरीला सफर महान और अमर संगीतकार चित्रगुप्त जी पर केंद्रित है, साथ में 2 गायिकाओं पर भी। दुकान पर पहुंचकर गीतों को शब्दों को पढ़ा, मेरे लिए समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। वहीं एक श्रोता ने हमारे सवाल का जवाब देते हुए बहुत सारे गीत लिखे हैं, गोरे गोरे और बांके छोरे, लता मंगेशकर और समाधि फिल्म का आपने ये गाना लिखा है, बिल्कुल सही कहा आपने, और साथ में प्रेमलता है इनके, जिसका जिक्र आपने नहीं किया है। वहीं एक श्रोता ने दूसरे गाने लिखे हैं, लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज में जो जुगलबंदी वाला गीत है, लिखते हैं ये गाना मेरा फेवरेट है फिल्म उत्सव का, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा और मेरे महबूब में क्या नहीं अपलम चपलम, ये सभी गीत मुझे बेहद अच्छे लगते हैं। बहुत सही आपने गीतों का चयन किया है। जी हाँ, तो हमारे श्रोता बताएं कि कौन से ऐसे गीत हैं जुगलबंदी वाले, महिला जुगलबंदी वाले जो उनको पसंद हैं, उनका जिक्र वो करें, साथ ही उन संगीतकारों के बारे में बताएं जिन्होंने अपने संगीत निर्देशन में ये महिला जुगलबंदी वाले गीत लिए हैं और संगीतबद्ध किए हैं। जैसे आज हमने चित्रगुप्त साहब को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रेम धवन का लिखा ये गीत सुनते हैं। चित्रगुप्त साहब की संगीत रचना है, सुमन कल्याणपुर और उषा मंगेशकर की आवाजें हैं। ये फिल्म है गेस्ट हाउस।

हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी पसंद हम तक पहुंचाई। एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा लता जी और कमल बारोट की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में है। वहीं मन क्यों बहका लता जी और आशा जी की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। और काश किसी दीवाने से हमको भी मोहब्बत हो जाए। अच्छा, काश किसी दीवाने को है हमसे भी मोहब्बत हो जाए। आपने से और को का थोड़ा सा अंतर कर दिया है। और ये गीत भी आपको पसंद है, लता मंगेशकर और आशा भोसले का गाया हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ है। वहीं आप लिखते हैं तुमको पिया दिल दिया और कजरा मोहब्बत वाला और तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। ये सभी गीत आपको बेहद पसंद है, बहुत सुंदर गीतों का चयन आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिन रात जले अखियां परदेसी उषा मंगेशकर और आशा भोसले, ये गीत हमें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बहुत निराला है और बहुत बढ़िया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपने कमाल की गुगली फेंकी है। अच्छा, आपने हम तो क्लीन बोल्ड हो गए, आज हमारी बत्ती गोल डब्बा गोल है। आप तो बस मधुर गीतों का रसा स्वादन कराइए और हम मधुर गीतों का आनंद लेने वाले हैं, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमें सफर में तो सफर सुरीला कैसे नहीं होगा अगर आप हैं हमारे साथ, तो आज आप आई प्रोग्राम में तो गीतों की बाहर आ गई है। आप लिखते हैं कि ओ गोरे बांके छोरे गीत पसंद है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, कजरा मोहब्बत वाला, ये सभी गीत हमें बेहद पसंद है जो दो गायिकाओं द्वारा गाए गए हैं। साथ ही आपने लिखा है एक श्रोता ने कि मनभावन के घर गाए जाए गोरी घूंघट में शर्माए गोरी लता जी और आशा जी की आवाज में, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी गीतों की चॉइस कितनी बड़ी है, मन बहुत खुश हुआ। अच्छा, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही बढ़िया है, दो फीमेल गायिकाओं के गीत कितने बढ़िया और कितने ताल सुर में परदेसी का गाना सुन के बहुत ही बढ़िया लगा। चित्रगुप्त जी का संगीत बोले तो बहुत मधुर संगीत, क्या कहने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी थीम कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ भी हो हम आपको विविध भारती जरूर सुनेंगे, इस तपतपाती गर्मी में गानों के जरिए ठंड का एहसास हमें थोड़ा तो होगा। आप इतनी शिद्दत और प्यार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, सराहते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। चलिए अगला गीत सुनते हैं, चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में, इसे आर कृष्णा ने लिखा है। इस बार स्वर है गीता दत्त और उषा मंगेशकर के और ये फिल्म है कंगन। हमने शब्द दिया था लिख पढ़, वही है ये गीत।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अभी जो गीत हम सुन रहे थे फिल्म गेस्ट हाउस का सबसे शानदार गाना शीला वाज और अन्य अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। कितनी खूबसूरत और गहरी जानकारी आपने हमें दी है, इसके लिए शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप चाहे मना करें, मैं आपकी तारीफ करूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि आज यादों की महफिल में मेरे तीन पसंदीदा गाने एक साथ सुनवाए गए। कुछ दिल ने कहा जीती लेंगे बाजी हम तुम और मैं ये सोचकर जा रहा था। बिल्कुल, ये गाने तो बहुत ही खूबसूरत थे और कैफी आजमी की रचनाएं थी, तो पसंद तो होंगी आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पसंदगी के महिला युगल गीत में एक इन्होंने कुछ गानों का जिक्र किया है, सखी रे सुन मोरी पपीहा उस पार। अच्छा, फिल्म मिस मैरी का ही गाना आपको बहुत पसंद है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिस देश में गंगा बहती है का क्या बात तू मुझे क्या बताई, गाना पसंद है। गर्जत बरसत सावन आयो रे और बरसात की रात फिल्म का जो एक जमाने में उसका अंश संगीत रचना के परिचय धुन में शामिल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मैडम काफी खुश है और काफी हंसमुख लग रही है। अच्छा और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक परिवर्तन से ही कार्यक्रम में श्रोता फ्रेंडली हो गए हैं, आगे गीतों के लिए दिलचस्पी और उत्सुकता बढ़ गई है और आज का ये कार्यक्रम चित्रगुप्त साहब और दो गायिकाओं तक ही सीमित है, इससे हम बड़े खुश हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपलम चपलम और मन भावन के घर जाए गोरी ये गाने बहुत पसंद है हमें। वहीं एक श्रोता ने मन क्यों बहका रे सखी ये गाना पसंद किया है, चुपके कौन आया मेरे अंगना, काश किसी दीवाने को और आएगा हमारे गांव कोई आएगा, इन सभी गीतों को पसंद किया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे ज्यादा पसंद है मन क्यों बहका रे बहका और हुजूर आला जो इजाजत हुई है, युगल महिला गीत वाले जो स्वर गीत हैं ये हमें बेहद पसंद आते हैं। जी, तो आज के सुरीला सफर में हमने आपके सफर को थोड़ा सा आसान कर दिया और आप लगभग हमारे साथ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत, ये है आशा भोंसले और उषा मंगेशकर की आवाजें, अनजान के बोल हैं, चित्रगुप्त साहब का संगीत है और ये फिल्म है ज्वाला दहेज की।

0: जी तो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि मेरे पास करीब 20,000 गानों का संग्रह है और लगातार पुराने गीतों को ढूंढकर संग्रह को मैं और बढ़ा रहा हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तातैया करके आना मेरे जादूगर, ओ सैया, गीता दत्त, लता मंगेशकर, इकबाल कुरैशी, फिल्म पंचायत का गीत और कौन रंग मुंगवा लता मंगेशकर और सुधा मल्होत्रा का, संगीतकार रोशन साहब और रेशमी सलवार कुर्ता जाली का ये गीत इन्हें बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये गीत तो पहली बार सुना है, वैसे मुझे डोला रे डोला फिल्म देवदास का गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वाह वाह, मेरा एक गीत मैच कर गया है, निकला है गोरा गोरा चांदरे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि कचरा मोहब्बत वाला आंखियों में ऐसा डाला शमशाद बेगम और आशा भोंसले की गायकी बहुत पसंद है। युगल गायिकाओं में कुछ लोगों ने अपलम चपलम, हस्तावा नूरानी चेहरा, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर, मन क्यों बहकाई सभी गीतों को पसंद है किया है। और वहीं एक श्रोता ने कहा, आपने पूछा कि कौन से युगल गीत पसंद है, फिल्म शिकारी का युगल गीत तुमको पिया दिल दिया, फिल्म पारसमणि का गीत हंसतावा नूरानी चेहरा, उत्सव का गीत मन क्यों बहकारी का हमें बेहद पसंद आता है। चलिए तो आपकी पसंद को हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी पसंद इतनी लाजवाब है। और अब कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां सुनते हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को फिल्म हम मतवाले नौजवान में। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, चित्रगुप्त का संगीत।
1: अरे

तो दोस्तों आज का सुरीला सफर यहीं तक, और अब इस सफर से मंदाकिनी जोशी को दे दी इजाजत। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
0: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित दो स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
4: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
5: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सदा बहार नगमे कार्यक्रम का ये था पहला गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था जन्म जन्म के फेरे। गीतकार थे पंडित भरत व्यास और धुन बनाई थी SN त्रिपाठी ने।

0: साहिर लुधियानवी की लिखी यह कव्वाली अभी आपने सुनी। मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की आवाजें थी। एन दत्ता का संगीत था और फिल्म का नाम था साधना।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आशा भोंसले, शमशाद बेगम और साथी। फिल्म का नाम हम पंछी एक डाल की। गीतकार है पी एल संतोषी और संगीतकार एन दत्ता।

0: 鬼马的鬼的这个
1: 那鬼开马的这个
0: 那鬼地的空的这个
1: 那鬼路给啥

0: तो झपटा मुझको ही खा जाने को।
1: हम आएंगे तुमको वहाँ बचाने को।
2: हम आएंगे,
3: हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे।
0: लेकिन सब में था होशियार एक बूढ़ा सा सियार, बोला अपनी दुम फटकार।

लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज और ये फिल्म है मधुमति। शब्दकार शैलेंद्र और संगीतकार सलिल चौधरी।

मधुमती फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में सुना। आइए अब सुनते हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज का गीत, आवाज आशा भोसले की, शब्द हसरत जयपुरी के हैं और धुन ओपी नैयर की है।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की रचना सुनिए। गायिकाएं हैं आशा भोसले और गीता दत्त, और ये फिल्म है अदालत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। हेमंत कुमार का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर हैं। फिल्म का नाम है चंपा कली।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मनचाहे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी तो शुरू करते हैं आज का ये सफर आपके मनपसंद गीतों का। तो पहला गीत सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं।

कहाँ से लिखा है आपने? आपने लिखा है गांव जाखोद राजस्थान से पूजा खटक बिमला देवी शंभुदयाल खटक ने, और इसी ये खत हमें मिला है कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती रेखा गुजराती, और ये खत हमें मिला है बीकानेर से और राजस्थान से। अच्छा, आप राजस्थान के थे श्रोता जिनका नाम हमने पढ़ दिया है। आप है चेतक सर्कल उदयपुर से मुकेश जीनगर रेणु जीनगर अजय प्रिंस और कुलदीप। आप सभी सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम है जीने की राह।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनामिका से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। इस गीत को सुनने की आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। आप हैं कोल्हापुर से सतीश वाघमारे, आतिश वाघमारे, स्वाति, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे, श्रमीण वाघमारे। अच्छा, आपने चंदन नगर सातारा से ये खत लिखा है। और उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर, चेतन शामतकर ने खत लिखा है हमें। आप हैं पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और अलीना मंसूरी। नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद। और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पमार, डेनी पमार और मास्टर मनीष। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनामिका में।

0: विष्णुगुला गोपाल महेश्वरी, प्रावलिका विष्णुवर्धन और विघ्नेश का हम आप सभी से ये अनुरोध भी करते हैं कि कृपया अपने नाम थोड़ा सा साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और हम आपके नामों का उच्चारण सही ढंग से कर पाएं। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म लैला मजनू का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी है और संगीतकार मदन मोहन है।
1: तेरे दर पे आया हूँ

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, अनजान के बोल, लता मंगेशकर की आवाज है और फिल्म का नाम है अपने रंग हजार। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्ग से, आप हैं छत्तीसगढ़ से अनंत जैन, हंसित जैन, प्रीति जैन, और छत्तीसगढ़ से ही हैं देवरी भटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम। लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं लिखने वाले गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती जोधले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है छत्तीसगढ़ से, जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू। यानी ये खत है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। हमें उम्मीद है आपने अपना नाम सुन लिया होगा। और ये खत मिला है गाजियाबाद से, नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद का। और वनोजा टांडा से सानिका राठौड़, एस आर टेलर, जय राठौड़, सुनील राठौड़, इंदुभाई राठौड़ और कुमार आशीष का। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोंसले को फिल्म परवाना में। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और संगीत मदन मोहन का है।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर प्रेम का गीत, आवाज किशोर कुमार की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखे। आप हैं बोडूसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु बबली, प्रियांशु साहू। और ये खत आया है खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रदीप कुमार का। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: किशोर कुमार की गाय फिल्म अमर प्रेम के इस गीत के साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

रवि शर्मा लिखित नाटक सुनिए विजय माला।

0: शांति की जय।
1: आप सब यथास्थान विराजें, कार्यवाही आरंभ की जाए।
2: जो आज्ञा महाराज। महाराणा की जय। राणा हाड़ा जी का विशेष दूत एक संदेश लेकर आया है और दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है।
1: आने दिया जाए।
3: महाराणा की जय।
4: राणा हाड़ा जी ने ये पत्र आपकी सेवा में प्रेषित किया है।
1: मंत्री जी।
2: अन्नदाता,
1: पत्र का भावार्थ व्यक्त कीजिए।
2: अन्नदाता, राणा हाड़ा जी अपनी अतीत सुंदरी कन्या का विवाह हमारे वीर सामंत चूड़ावत से करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए आपकी अनुमति मांगी है।
1: यदि चूड़ावत जी को यह प्रस्ताव स्वीकार है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है?
2: महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विषय में कुछ निवेदन करूं।
1: आज्ञा है मंत्री जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
2: महाराज, सरदार चूड़ावत हमारे वीर सेनापति हैं। राणा हाड़ा ने उन्हें अपनी सुंदरी कन्या के लिए मांगकर बुद्धिमता का परिचय दिया है। पर मेरी सम्मति में तो वीर चूड़ावत की जीवन संगनी कोई वीर कन्या ही हो सकती है, हाड़ी कुमारी नहीं।
1: महामंत्री जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हाड़ी कुमारी छत्राणी नहीं है? क्या उसकी रगों में पूर्वजों का रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा?
2: महाराज,
1: हम आपकी शंका का कारण समझने में असमर्थ हैं।
2: महाराज, जहां तक मुझे ज्ञात है, हाड़ी कुमारी में वीरोचित गुणों का अभाव है। सामंत चूड़ावत का बचपन तो तलवारों की खनखनाहट में पला है और यौवन युद्ध क्षेत्र में पल्लवित हुआ है। कहीं ऐसा न हो कि हमारे सूखते हुए सूर्य को ग्रहण लग जाए। विद्वानों ने कहा भी है, भार्या रूपवती शत्रु, यूं ही नारी का रूप और यौवन पुरुष की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जानबूझकर इस दुर्बलता को गले की माला बनाने की सलाह मैं नहीं दे सकता।
1: चूड़ावत जी।
5: महाराणा,
1: आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? क्योंकि वीर राजपूत केवल अपने ही विचारों और अपने ही भुजबल के विश्वास पर आगे बढ़ता है, इसलिए निसंकोच आप अपने विचार व्यक्त कीजिए।
5: महाराणा, हाड़ी कुमारी के अद्भुत रूप और लावण्य की चर्चा सुनकर भी मैंने कभी भावुकता का आश्रय नहीं लिया, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि रूपवती भार्या को चाहे शत्रु कहा जाए अथवा उसे पुरुष की दुर्बलता की संज्ञा दी जाए, पर इन सब के साथ साथ वो पुरुष के जीवन की एक महान प्रेरणादायक शक्ति भी है। वह शक्ति जिसके अभाव में शिव भी शव के समान हो जाता है। आज एक नारी के सौंदर्य ने मेरी वीरता और पुरुषत्व को चुनौती दी है। यदि महाराणा की आज्ञा हो तो स्वीकार कर लो इस चुनौती को।
1: हम आपको ये चुनौती स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। मलखान सिंह
6: जी। महाराज,
1: राणा हाड़ा को ये शुभ संदेश दे दो कि हमें ये संबंध स्वीकार है। महामंत्री जी।
2: जी महाराणा।
1: सामन चूड़ावत के विवाह का आयोजन राजकीय सम्मान से अतिशीघ्र किया जाए।
2: जो आज्ञा महाराज।

0: भैया भाभी बहुत ही सुंदर हैं।
1: सच
0: सच भैया, देखोगे तो पागल हो जाओगी।
1: तनिक अपनी भाभी को हमें भी तो दिखा दो।
0: इतने उतावले क्यों हो रहे हो, थोड़ी देर और ठहर जाओ ना। और हाँ, मेरे मुंह दिखला मी।
1: ये लो।
0: कितनी अच्छी है ये माला।
1: अब बोल, कहाँ है तेरी भाभी?
2: अरे तारा, कहाँ चली गई?
0: सब भाभी को ही घेर कर बैठी हैं।
1: अच्छा,
0: कोई सुनता ही नहीं। तारा तारा
2: आई।
0: देख तारा, जरा भैया को ऊपर वाले कमरे का रास्ता दिखा देना, बेचारे थक गए हैं।
2: आइए सामन, ऊपर जाकर विश्राम कीजिए और प्रतीक्षा भी।
1: प्रतीक्षा? प्रतीक्षा किसकी?
2: चंद्रोदय की। आज आपके शयन कक्ष में पूर्ण चंद्र का आगमन जो होने वाला है।
1: ओ, अब समझा, तुम बहुत नटखट हो।
0: आओ भाभी, इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ, ऐसे यहाँ। यहाँ क्या करना होगा मुझे? ये हमारी कुल देवी हैं, सौभाग्य और यश की देवी।
2: अच्छा,
0: नववधू इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही पति के दर्शन कर सकती है। आज के दिन वधू जो कुछ इनसे मांगती है वो उसे अवश्य मिलता है।
2: अच्छा
0: भाभी, मांगो जो भी इच्छा हो।
2: मैं केवल यही मांगती हूँ कि मेरे पति पर कभी भी किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, यश और सौभाग्य की वर्षा होती रहे उन पर।
0: धन्य हो भाभी, तुमने वही मांगा जो मांगना चाहिए था।
2: इसके सिवा और मैं मांगी क्या सकती थी?
0: भाभी, तुम्हारे ये विचार तुम्हारी सुंदरता में

0: पर जान लगा देती हैं। और हाँ भाभी, अब रात अधिक हो रही है, हम सब तो आज रत जगा करेंगी। तुम ऊपर जाओ, आज तुम्हारी मधु यामिनी है ना?
1: ना ना, मैं भी तुम लोगों के साथ रत जगा करूंगी।
0: रत जगा तो करोगी, पर ऊपर, यहाँ नहीं। भाभी शर्माओ नहीं, ऊपर जाओ। नहीं जाती? अच्छा ठहरू, मैं भैया को बुलाती हूँ, तुम्हें गोद में उठा कर ले जाएंगे। हाँ,
1: अरे अरे,
0: बुलाओ भैया।
1: मैं जाती हूँ।
0: तारा सुन जी, भैया ऊपर के कमरे में ही है ना?
2: जी हाँ, सामंत तो वहाँ पहले से ही हाड़ी रानी की प्रतीक्षा में बैठे हैं।
0: बस अब खूब मजा आएगा।
2: कितना सुंदर कक्ष है ये, पलंग, गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूलों के पर्दे और ये तलवार अवश्य मेरे स्वामी की है, और वो चित्र किसका है? ओह स्वामी, प्रियतम, कितना तेजस्वी मुख है, आज मेरी चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हुई, मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। जब तुम सामने आओगे तब तो शायद लज्जा के मारे में कुछ बोल भी नहीं। कौन?
3: स्वागत है।
2: ओह, आप यहाँ?
3: हाँ प्रिय, मैं यहाँ कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, पर ये घूंघट किस लिए? मैंने तो तुम्हारे रूप की झलक भर देखी है, हृदय नहीं भरा। अच्छा, तो मैं ही इस चंद्रमुख पर से इन घूंघट रूपी बादलों को हटाए देता हूँ। ऐसे
2: ना,
3: हाँ, अब ठीक है। हाँ, देख रहा हूँ रूप का सागर, विधाता के हाथों खड़ी हुई सौंदर्य की प्रतिमा, पवित्रता और कोमलता की प्रत्यक्ष देवी मीनाक्षी, सुहाग बिंदिया और शशि मुख पर ये मोती की नथ, मानो साक्षात भगवती का ही पदार्पण हुआ है मेरे घर में। मेरा अपनापन, मेरा व्यक्तित्व जैसे तुम में विलीन होता जा रहा है। मैं नहीं हूं, मैं और तुम।
2: स्वामी, मेरे देवता,
3: सच
2: मैं तुम्हारी पुजारी।
4: सभी प्रजाजनों को सूचित किया जाता है,
3: तुम सच मुगल बादशाह सुंदर हो,
4: नगर की राजकुमारी बल पूर्वक विवाह करने के लिए अपनी विशाल सेना
3: जी चाहता है कि एक तक तुम्हें देखता ही रहूं।
4: नगर के राजा ने
2: स्वामी
4: हमारे महाराणा से
2: पागलपन
4: सहायता की प्रार्थना की है। महाराणा के
3: तुम कुछ कहती जाओ और मैं सुनता रहूं। मेरी रानी, मैं तुम्हारे सौंदर्य सागर के यौवन रूपी भंवर में फंस गया।
2: स्वामी,
3: कमल के कोमल संपुट में बंद भंवर की तरह हैरान हूँ, मुक्त हूँ।
2: सुना आपने? स्वामी,
3: प्रिय,
2: छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ।
3: प्रिय, मुझसे क्या अपराध हो गया जो तुम इतनी प्रसन्न हो और अचानक दूर खड़ी हो गई?
2: सुनिए नगाड़े की ध्वनि, राजपूत तो इसका मतलब अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए मैं पीछे हट गई।
3: ओह मेरी हाड़ी रानी, मेवाड़ भूमि वीरों से शून्य नहीं है, और फिर मेरे लिए तो राणा जी का विशेष दूत आएगा।
2: जानती हूँ, पर देश की आन पर मर मिटने वाले किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करते।
3: प्रियतम, मैं
2: प्रियतम,
3: मैं
2: मेरी प्रार्थना है कि आप किसी की प्रतीक्षा न करें और तुरंत अपने कर्तव्य का पालन करें।
3: प्रिय, जीवन में प्रेम का महत्व किसी भी वस्तु से कम नहीं, कम से कम इस मधु यामिनी को तो बीत जाने दो, विधाता भी कैसा क्रूर है।

0: जीवन के इस मधुर हास्य में कठोरता का अट्ठास और संगीत की मधुर लहरी में ये भयानक चीत्कार जैसा क्षण मेरे ही भाग्य में था। तुम्हें जी भर कर निहार भी न सका, एक बार हृदय से लगा भी न सका। सेज पर सजी हुई गुलाब की पंखड़ियां भी तुम्हारी प्रतीक्षा में मुरझा जाएंगी।
1: स्वामी, ये केवल आपका मोह और वासना है।
0: रानी,
1: प्रेम प्रेरणा देता है, मोह विचलित करता है।
0: रानी,
1: स्वामी विचलित हो रहे हैं क्योंकि मोह ने प्रेम को बंदी बना रखा है।
0: हाँ रानी, मैं विचलित हो रहा हूँ। मैंने अब तक यौवन के उद्दाम वेग को केवल तलवार की धार पर ही रोक रखा था, पर तुम्हारे रूप और यौवन ने उस वेग को इतना तीव्र कर दिया है कि उसे रोकना असंभव सा हो रहा है। अपने प्राणों को अब तक मैं बर्छों और भालों की नोक पर ही उछालता फिरता था, पर आज जैसी घुटन और उलझन कभी न हुई थी। क्या करूं?
1: तो ठीक है स्वामी, आप चूड़ियां पहनकर यहां बैठिए और मैं सैनिक वेश में युद्ध भूमि में जाती हूँ।
0: रानी ठहरो,
1: आप इस पुष्पशैया पर बैठकर अपनी घुटन का उपचार करिए, मैं आपकी इस कायरता के पाप का प्रायश्चित करने जाती
0: हूँ। ठहरो रानी,
1: ये हरावंश की तलवार है जिसने हर संकट में हमारी रक्षा की है। मैं जाती हूँ।
0: रानी ठहरो। रानी सुनो तो।
1: नहीं सामन, नहीं, मैं जीते जी अपने आप पर ये कलंक नहीं आने दूंगी कि जब सहस्त्रों युवक एक अबला की सतीत्व रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे, उस समय सामंत रंग महल में रंगरेलियां मना रहा था। रूप और यौवन की आंधी में सामंत की वीरता एक तिनके की भांति उड़ गई। अपनी प्रियतमा के केश पुष्पों की सुगंध में मधो सामंत तलवारों की खनखनाहट से भयभीत हो गया। नहीं नहीं सामंत, नहीं, मैं आप पर एक कलंक का टीका नहीं सह।
0: रानी शांत हो और जरा यहाँ बैठो।
1: छोड़िए मुझे, मैं ये तलवार लेकर आलमगीर की सेना पर टूट पड़ूंगी। एक राजपूत बाला के लिए मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी। कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि सामंत की वीरता कायरता के बंदी खाने में बड़ी तड़प रही है।
0: नहीं नहीं नहीं, ठहरो रानी, तुम चली जाओगी तो मुझे विदा कौन करेगा?
1: तो फिर शीघ्रता कीजिए स्वामी, आइए मैं आपके भाल पर रक्त तिलक कर दूं। स्वामी विजयी हो और शीघ्र लौटे, यही मेरी शुभकामना है।
0: रण क्षेत्र में भी मैं तुम्हारी मनोहर छवि न भूल सकूंगा। तुम मेरी रग रग में समा गई हो, मैं तुम्हारे इस निर्दोष अछूते और अतृप्त यौवन को देख रहा हूँ। सोचता हूँ यदि मैं जीवित न लौटा
1: ना,
0: तो तुम्हारा ये रूप यौवन।
1: ऐसा न कहिए प्रियतम, यदि कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो ये दासी स्वर्ग में आपके स्वागत के लिए पहले ही उपस्थित हो जाएगी। आप ऐसे विचार हृदय से निकाल दीजिए और निश्चिंत होकर रणभूमि में जाइए।
0: अच्छा प्रिय, विदा। जय भवानी।
1: जय भवानी। विजय प्राप्त कर शीघ्र आइए, मैं विजय मान लिए आपकी प्रतीक्षा करूंगी। भवानी आपको यह शौर्य दूंगी।

0: कितनी सुंदर है हाड़ी रानी, कितनी मस्ती और अल्हड़पन है उसके अंग संचालन में। पात्र में भरी हुई मदिरा के समान इठलाता हुआ उसका यौवन, जैसे मदिरा की मादकता को भी चुनौती दे रहा हो। एक बार गले से भी न लगा सका, क्या करती होगी इस समय? कदाचित गुलाब की पंखड़ियों से सजी सेज पर बड़ी तड़प रही होगी। अगर मैं जीवित न लौटा तो उसका ही यौवन रूप, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भेजना ठीक होगा, कुछ निशानी भी मांग लाएगा। रण सिंह उपयुक्त है इस कार्य के लिए, उसी को भेजता हूं।
1: रण सिंह का प्रणाम स्वीकार हो रानी जी।
2: कहिए रण सिंह जी, क्या समाचार लाए हैं?
1: महारानी, सामंत बड़े विफल हैं। उन्होंने मुझे आपके पास कुछ सेनानी लाने भेजा है, साथ ही ये संदेश भी दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर जौहर व्रत करने से आप ना हिचके।
2: ओ, अभी तक प्रियतम का मोह नहीं टूटा। एक क्षत्रानी अपनी मान मर्यादा की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लीजिए, ये मेरे पितृकुल की तलवार है। निशानी के रूप में उन्हें ये तलवार देकर कहिएगा कि दोनों वंशों की लाज अब उनके हाथ है।
1: जो आज्ञा।
2: तारा, आज 3 दिन हुए, युद्धस्थल का कोई समाचार नहीं मिला।
3: वाह रानी जी, जब रणसिंह आते हैं तब आप क्रोधित हो उठती हैं, और जब युद्ध का कोई समाचार नहीं मिलता तब व्याकुल होकर रोने लगती हैं।
2: तारा, तारा देख तो कोई आ रहा है।
3: रणसिंह जी आए हैं।
1: रानी जी, रणसिंह का प्रणाम स्वीकार हो।
2: रणसिंह, युद्ध भूमि का क्या समाचार है?
1: महारानी जी, युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। सामंत ने मुझे अंतिम बार आपसे कुछ सेनानी मांग लाने को कहा है। उनका शरीर रणभूमि में है पर मन आपके ही पास मंडरा रहा है।
2: रणसिंह, एक अबला के सतीत्व को संकट में देखकर भी सामंत मेरे ही बारे में सोच रहे हैं। इस हार्ड जाम की पुतली के मोह में उनकी सारी एकाग्रता नष्ट हो रही है। उनकी इस मानसिक कायरता का कारण मैं हूं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा तो फिर यही ठीक है। रण सिंह, प्रतीक्षा करो, मैं आज तुम्हें अंतिम निशानी दूंगी। ऐसी निशानी जो कभी भी किसी भी पत्नी ने अपने पति को न दी होगी। विजय मार। तारा, तारा
3: आई। आई रानी जी, आपने मुझे बुलाया।
2: हाँ तारा, मेरी प्यारी सखी, तूने मेरी बहुत सेवा की है ना, आज अंतिम बार मैं तेरी सहायता चाहती हूँ।
3: ये क्या कर रही है?
2: तारा, इधर आ, मेरी मांग में सिंदूर भर दे। मेरे केशों को सुगंधित पुष्पों से सजा दे, पैरों में बिछिया पहना और मावर लगा। जल्दी कर तारा।
3: रानी जी मुझे छोड़कर मत जाओ।
2: पगली, रोती है, क्षत्रानी होकर रोती है। शिखा ताकत, रण सिंह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ला ला सिंदूर ला। अरे, तेरे हाथ कांप रहे हैं, जरा ठीक से मांग तो भर दे। ऐसे दर्पण ला, दर्पण इधर ला। अरे अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। जब मेरा विवाह हुआ था तब सब कहते थे कि बहुत सुंदर लग रही हूँ, पर आज मैं कैसी लग रही हूँ ये तो तू ही बता सकती है। बता बता ना। अरे रुती है, ला ला तारा मेरे विवाह का जोड़ा और मुझे पहना दे। सुन तारा, एक बार तूने ही कहा था ना कि रावण की विजय मान कर सबसे सुंदर पुष्प मैं हूँ। हाँ, आज वही पुष्प बनने में जा रही हूँ। स्वामी के जोड़े करवोलत वक्ष पर ये मेरा शेष रूपी पुष्प खूब खिलेगा, खूब खिलेगा। बस बस अब बहुत विलंब हो रहा है, मुझे आपके चरण स्पर्श तो कर लेने दीजिए। बस अब समय नहीं है तारा, अब समय नहीं है, मेरा भग्न शेष रण सिंह को दे देना।

0: तुम रो क्यों रही हो?
1: रण सिंह जी, लीजिए, हाड़ी रानी ने सामंत के लिए ये विजय माल भेजी है।
0: ये कैसी विजय माल है जो इस तरह थाली में ढांक कर लाई हो?
1: आप स्वयं देख ले और सामंत तक शीघ्र पहुंचा दे।
0: ये क्या, ये रानी के शीश की विजय माल? धन्य हाड़ी रानी, तुम्हारा ये बलिदान युग युग तक भारत के नरनारियों को प्रेरणा देता रहेगा। जाता हूं तारा।
2: अभी तक रण सिंह नहीं आया और इधर आलमगीर अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा रहा है। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं सूझता। हाड़ी रानी नस नस में बस गई है, क्या करूं?
0: सामंत, क्या मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं?
2: आओ आओ रण सिंह, मैं बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहो, हाड़ी रानी कुशल से तो है? मेरे लिए कुछ सेनानी दी उन्होंने?
0: हाँ सामंत, रानी जी ने आपके लिए ये विजय माल भेजी है।
2: अच्छा,
0: इसे गले में पहनकर आप झूम पड़ेंगे।
2: सच?
0: और जो भी इस अनोखी विजय माल को देखेगा वो अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। इस विजय माल के साथ ही हाड़ी रानी ने एक निवेदन भी किया है।
2: वो क्या?
0: कि इस युद्ध में हम सब का एक ही नारा हो और एक ही लक्ष्य हो, विजय या मृत्यु।
2: हमें सब स्वीकार है, पर सेनानी तो दिखाओ।
0: आगे बढ़िए सामंत, और इस ढके हुए थाल को स्वयं खोलकर रानी की दी हुई इस निशानी से अपने वक्ष स्थल को सुशोभित कीजिए।
2: रणसिंह, ये क्या लाए हो?
3: हमारी रानी का भग्न शीश, ये क्या किया तुमने रणसिंह?
0: मैंने नहीं, आपने ही ये किया। रानी के मोह में अंधे होकर आपने मुझे बार बार सेनानी लाने को भेजा। रानी आपकी दुविधा को पहचान गई और आप पर कोई कलंक न लगे।
3: मैं समझ गया, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं ही दोषी हूं। सचमुच मेरा पतन हो गया था, रानी ने मुझे बचा लिया।
2: हाड़ी रानी, तुम साक्षात भवानी थी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। इन लहराते हुए सुंदर केशों की माला बनाकर मेरे गले में पहना दो रण से, मेरी प्रियतमा का शीश मेरी छाती पर लटकने दो, मेरे मृत शरीर को रानी के साथ एक ही चिता पर रखकर भस्म कर देना। अब मेरी आंखों पर से मोह का आवरण हट गया है, भूखे सिंह की तरह हम अपने शत्रुओं पर टूट पड़ेंगे। साथियों, आगे बढ़ो, विजय हमारी है।
0: बादशाह की सेना उल्टे पैर फाड़ गई।
2: सच रण सिंह, हम विजयी हुए?
0: हाँ सामंत, सच। मुगल बादशाह भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, शायद वो भी रणभूमि छोड़कर भाग निकला। सामंत,
2: शत्रु भाग गया। जय भवानी, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए। मैं चाहता हूँ मेरी प्रियतमा मेरी प्रतीक्षा में होगी। मैं

विजय माल। अभी आपने रवि शर्मा लिखित ये नाटक सुना। प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक युवा अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि युवा अभिनेता, लेखक, गायक और संगीतकार देवेंद्र अहिरवार। बहुत स्वागत देवेंद्र।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
2: देवेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहचान बनी है वो 120 बहादुर से बनी है।
3: जी जी।
2: ये फिल्म आपको कैसे मिली थी?
3: ये फिल्म के पहले एक बहुत लंबी कहानी है। इस पहचान तो ऐसे नहीं है कि इस फिल्म से बनी है, क्योंकि मैं लगातार थिएटर कर रहा था। लगभग 15-20 सालों से मैंने काम किया है। मैं काफी छोटा तब से काम कर रहा हूँ और एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुत एक बड़ी ऑडियंस को जानने का मौका मिला कि इस नाम का कोई बंदा है कुछ काम करता है। तो ये फिल्म मुझे जैसे सबको मिलती है, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं तो ऑडिशन से ही मिलती है। सो मैं ऐसे म्यूजिक में हूँ, मेरा गाने गाने का काम है, या मैं एक्टिंग करता हूँ या नाटक बनाता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो अनमोल आहूजा है, उनको मालूम था कि मैं गाना गाता हूँ। तो एक कैरेक्टर था 120 बहादुर के लिए, ऑडिशन हुआ कि एक गाना गाने वाला लड़का चाहिए। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन लिया, पर उस कैरेक्टर के लिए मैं बाद में फिट नहीं बैठा, मेरा लुक नहीं जा रहा था और मेरा काम, मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ था। तो उनको लगा कि इसको हम फिल्म में इस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं रख सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया जिसका नाम था बैंगन। तो उस बैंगन कैरेक्टर के लिए फिर मैं फाइनल हुआ। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासकर बुंदेलखंड के पूरे एरिया ने, मध्य प्रदेश के पूरे एरिया ने और पूरे देश के लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।
2: बिल्कुल, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि सीधे चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कैसा था और अपने माता पिता के बारे में बताइए।
3: जी जी। सो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम है पहरा।
2: क्या बात।
3: सो मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक रेडियो पर गाना सुना था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है इश्क और भी गहरा हुआ है। तो मैं काफी छोटा था और मैं सोचता था मेरे गांव का नाम फिल्मों में आता है। मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं फिल्मों में जाऊंगा।
2: अरे
3: और मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, सच में ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है और मैं रेडियो लगातार सुनता था, विविध भारती लगातार सुनता था, छतरपुर आकाशवाणी मैं बहुत सुनता था, हेलो फरमाइश में सुनता था, रेडियो मेरे साथ ही रहता था, मेरा दोस्त हुआ करता था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पापा भी गाना गाते थे तो उनको भी शौक था। देशर पटरिया के गाना, उर्मिला पांडे जी के गाने और भी बहुत से लोगों के गाने मैं सुनता था। तो ऐसा एक जीवन बीता और मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था। चबूतरे पे शाम को लोग अपने खेतों पे खाना खाने के पहले, डिनर करने के पहले वहां पे बैठते थे और फिर वो वहाँ पे कुछ गाने गाते थे 1-2 घंटे और फिर अपने खेतों पे जाते थे सोने के लिए कि जानवर उनके खेतों में ना घुसवाए। सो पूरा किसान परिवार, एक छोटी सी बस्ती मैं आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो उन लोगों में मैं और मेरा भाई लखन भी, दो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो बैठते थे और कई दफ़ा लोग हमसे इरिटेट भी होते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ कि मंडली ने सोचा कि इस मंडली को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो उस समय ऐसा होता था कि कोई गलत करता था तो उससे वो लगाते थे, जुर्माना लगाते थे।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ऐसा करके होता, तो किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उन्होंने कुछ पैसा दिया, 8-10 हज़ार रुपए उधर से आए। तो उन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करें। हाँ। उन्होंने सोचा अब हारमोनियम ले लेते हैं।
2: अरे वाह।
3: तो उन्होंने हारमोनियम ले लिया, पर हारमोनियम बजाना तो किसी को नहीं आता था। तो अब बड़ा असमंजस हो गया। तो रात को बैठते थे पर हारमोनियम रहता था, बजाते कोई नहीं था। तो फिर वो हमारा घर जैसे बगल में था तो हमारे घर में रखते थे वो हारमोनियम। तो मैं और मेरा भाई स्कूल से आके हम 2-3 घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते सडनली थोड़ा थोड़ा गाने के आसपास में दिखने लग गया लोगों को कि गाने के आसपास से, गाने के आसपास है, कोई भी गाना गाता है तो उसके आसपास ही बजा लेता है। तो ऐसे करके मैं उस पहला जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वो गांव के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो मंडली है, जिनमें मेरे पिताजी
2: चबूतरे में हुआ,
3: चबूतरे पे ही मैंने उसको एकदम से ऐसे शुरू किया और फिर स्कूल में गाने गाने शुरू किए। सो मैं ये बोलूंगा कि मेरे पिताजी भी किसान हैं, मेरी माँ भी किसान है और मैं बहुत ही प्राउडली ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से हम प्राउडली बोल पाते हैं ना कि हम फौजी खानदान से हैं, ऐसे जय जवान जय किसान वाले जो पूरी बात है, अगर हम उन साथ में बोले तो हम बहुत सारे लोगों को एक क्राइसिस रहता है कि बोलने में कि हम किसान परिवार से, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार का एक लड़का हूँ।
2: कितने दूर है छतरपुर से ये गाँव?
3: छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर है ये, बसारी पन्ना रोड पे पड़ता है, बसारी के आगे है पहरा।
2: ओके।
3: बहुत ही छोटा सा गाँव है सर।
2: कितनी क्लास तक वहाँ पढ़े आप?
3: मैं वहाँ पे पढ़ा आठवीं क्लास तक, उसके बाद मैं बारहवीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय जिसका नाम था जीजाओरे, बुंदेली फिल्म थी। उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव जो उसी गांव के थे, तो वो लाइक वो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से। उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर में सीडी हुआ करती थी उस समय तक, जीजाओरे की सीडी, झूमो नाचो गाओ रे, खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आओ रे भैया जी जाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका, टाइटल सॉन्ग था उसका।
2: अच्छा, जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है?
3: उसपे ऐसे कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे, लाइक फागे होती थी।
2: हाँ।
3: तो उसी तरह से कि कहा ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहा ले आए ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, उपटा लगत उंगरिया मेरे कहा ले आए,
2: उपटा लगत उंगरिया, क्या बात है,
3: कहा ले आए राजा कुमारिया में,
2: मतलब बुंदेल
3: लाइक कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले
2: जाए,
3: ये गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है।
2: ये
3: पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, लंपा लगत चुनरिया मेरे कहा ले आए राजा पहाड़िया मेरे कहा ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूं कि मैं तो बंबई रहता हूं और फिर मैं वहां छोटे से कमरे में रख दूं, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं,
2: तो मजा आ गया मुझे,
3: बहुत ही मजा, मतलब बहुत मजा। तो यही था फिर बुंदेली, फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव।
2: हाँ।
3: तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, फरवरी में लगभग एक महीना 21 दिन चलता था वो।
2: अच्छा।
3: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे MP के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो वो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय भैया के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद।
2: अरे
3: मैं 9th क्लास में पढ़ता था उस समय।
2: ठीक है।
3: उस नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हमारे छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे हमारे, छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे, लाइक
2: तो बुंदेली में था ये।
3: हाँ, बुंदेली में नाटक था। अब मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है क्योंकि मैं एक तो पहला नाटक था मेरा, तो उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया। और मैंने अभी आपसे बात भी किया, इस तरह का जो जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूँ। तो फिर ऐसे शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ कि खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई। खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूरी है। तो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाट विद्यालय NSG की वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान,
2: जो
3: कि काफी बड़े एक्टर
2: हैं, पन्ना के ही
3: हैं।
2: हाँ।
3: तो वो NSG से पास आउट होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे, हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है। तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो अंग्रेज आते हैं, गोरे, 5-star होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उन्होंने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो हमने बोला कि उन्होंने बोला 2-2 किलो चावल लेके चलना है, 1 किलो दाल लेके चल रही है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चलनी है, क्योंकि वहाँ पे एक महीने रहना है। तो शिल्प ग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया इश्तियाक जी ने, इन्हें कहीं देखा है।
2: अरे
3: इन्हें कहीं देखा है, तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हमने कहीं ना कहीं देखा है उसका नाटक उन्होंने बनाया था, और वो नाटक बहुत अच्छा बना और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि इतने छोटे से हैं, वो क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया और इतना अच्छा काम निकल के आया।
2: इश्तियाक भाई की एक खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
3: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने मुझे ये करना है या मैं कहाँ सीखूं, तो उन्होंने बोला था कि मैं NSD से पढ़ा हुआ हूँ, तुम भी NSD जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके NSD पहुंचना है,
2: तो डायरी में लिख गया।
3: हाँ, तो मैं लिख गया अभी है मुझे पहुंचना है NSD। तो फिर वहाँ
2: आगे की कहानी थोड़ा आगे सुनाएंगे।
3: जी जी,
2: यहाँ एक फिल्मी गाने की जगह बनाते हैं।
3: हाँ जी जी,
2: तो जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में आप ये सब कर रहे थे कि आप वो बड़े गाँव में गए और उसके बाद खजुराहो हो गए, उस दौर का कोई गाना याद आता हो तो वो गाना यहाँ बजाया जाए।
3: एक फिल्म थी वो शोला और शबनम, गाना सुनता तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। फिर म्यूजिक आता जो आप कह रहे थे ना, ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए,
2: क्या बात है।
3: तो ये कुछ गाने जो ऐसे उस समय के याद है मुझे।
2: बिल्कुल, वो एक जहन में बसे होते हैं और ये उस दौर की याद लेके आते हैं।
3: जी जी जी, हमने बहुत देखा है फिल्म को।
2: वाह,
3: बहुत देखा है फिल्म को हम। मैं तो करण अर्जुन बहुत देखी, ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी।
2: क्या
3: भी सीडी पे जो भी मिलता था देखते थे, जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
2: वाह, ये गाना सुनते हैं।

0: देवेंद्र आपसे बातें हो रही हैं और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं और ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका परिचय होता है जो तब तक NSD में हैं और तब तक बंबई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए और वो एक शिविर लगाते हैं और वहां से आपको एक राह दिखती है
1: जी, जी।
0: एक लड़का जो पहरा गांव का है और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा जिसका परिचय नहीं है उसका परिचय इन सब चीजों से होता है और वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहाँ पहुंचना है।
0: उसके आगे क्या होता है?
1: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुंचता हूँ तो अब मुझे तो कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा है ना, तब जाके मैं वहां पे जाऊंगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद मैं दिल्ली आया घूमने के लिए कि मुझे पहले वो जगह देखनी है जहाँ मुझे पढ़ना है।
0: तो मंडी हाउस चले गए?
1: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था, मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिता जी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया और दिल्ली में ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूँ अभी, मैं 9th-10th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं NSD की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहां पहुंचा। उसमें मेट्रो बन रही थी और मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी है जिसपे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुंचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था। मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे कि आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे। और मैं ऐसे हो गया। फिर मैं NSD के गेट पे पहुंचा और मैं NSD मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नाट विद्यालय, मतलब ये वो जगह है। और मैंने वहां से निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखा और वो बहुत ही फ्रेंडली है, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई डायलॉग पहन रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है। और मैं देखा कि भाई ये तो अलग दुनिया है, ये तो कमाल की दुनिया। तो मैं गेट में घुसने को हुआ तो एक उस समय एक गार्ड हुआ करते थे, उनका नाम था धुरंधर जी, रिटायर्ड फौजी थे वो
0: जी।
1: तो मैं घुसने लगा, उन्होंने बोला क्या हुआ? मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पढ़ना है। बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो कह रहे यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। तो उन्होंने बोला कह रहे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी 10th क्लास में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं आऊंगा। मैंने बोला कि मैं आऊंगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 2626 फोन हुआ करता था।
0: हाँ, वो छोटा वाला
1: फोन। तो उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी।
0: हाँ।
1: तो मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है,
0: रिकॉर्ड
1: कर दो। 1 मिनट ही मेरे पास में, इससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास में।
0: हाँ।
1: तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए जिसमें तूने एक्टिंग की हो, एक्सेस किया हो, 3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया होना चाहिए जिनके लेटर लिखाओगे, जिनमें लिखा होगा कि वो तुमको जानते हैं, तुमने उनके साथ काम किया है और वो तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं।
0: अरे गजब।
1: तुम अनुशासित हो।
0: 1 मिनट में
1: सब बता दिया, ये करके आना पड़ेगा तब तुम फॉर्म डाल सकते हो, तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग लेके मैं रोज सुनता था मुझे ये करना है। मैं वापस आया, मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज गया। फिर मैं सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा।
0: तो मैंने कॉलेज में, इस शहर में था
1: ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कॉलेज, तो वहां पे मैंने एक ग्रुप बना दिया और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा। और पता चला कि छतरपुर में कोई इफ्टा नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको। तो उनसे जुड़ गया, फिर उनने जो भी नाटक कराया उनमें नाटक करने लग गए, बकरी नाटक किया, सर्वेश्वर सत्यनाग नाटक किया, और भी नाटक जो भी वो कराते थे उससे जुड़ गए। और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही भाई, अभी एक नाटक हुआ वो नाटक हुआ। फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, हम तो कुछ भी कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा।
0: अच्छा,
1: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा। अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो? आपको कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर आया आर्ट विल से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो। तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर नाम के एक बंदे हेमंत भाई,
0: बिल्कुल
1: आप जानते होंगे, बहुत जरिए कभी
0: बिल्कुल बिल्कुल विहान ग्रुप,
1: हाँ विहान ग्रुप अभी वो चलाते हैं कि एक मेंबर है वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको फोन करता था, वो मैं पागल कर देता भैया मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर है अलखनंदन सिन्हा जी, मैं अलग दादा से उनसे मिलवा दूंगा, पर वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैं MA के लिए मैंने अप्लाई किया था और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को। शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से, और मैं बस में बैठा हूँ और मेरे घुटने कांप रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बंदे का नंबर जान है सिर्फ मेरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूँ और मैं वैसे ही जा रहा हूँ, मेरे घुटने कांप रहे हैं और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है। मैं सोच रहा हूँ कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको फोन कर रहा हूँ। अभी 5 बजे कोई कोई फोन उठाएगा?
0: बिल्कुल,
1: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूंगा, मैं जाके कहीं, मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वास्ता किया, और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए। मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फोन बंद हो जाए या आपका फोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा, और फिर एक बंदा
0: रोशनपुरा चौराहे,
1: हाँ, एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा मेरे पास आए, और मैं वो उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए, ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे, ये एक पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा, वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा, मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने बोले कि पैर वैर नहीं छूते। मैंने बोले हमारे यहाँ तो पैर बड़ों के पैर छूते हैं। उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते, क्योंकि लोग अजीब के होते हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया, और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग दरा के घर में, और हम बैठे हुए हैं, और 1 घंटा हो गया।
0: पहले हेमंत आया,
1: हेमंत दादा आए पहले, और अच्छा। उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा, और क्योंकि वो उनका ग्रुप का नाम नटबुंदिल है, और तुम बुंदेलखंड से हो तो हो सकता है तुम्हें रख ले, और तुमने बोला तुम गाने आना गाते हो तो हो सकता है तुम्हें म्यूजिक बंदों को रख ले। और मैं अतरंगी था सर, वेल बॉटम पैंट पहना हुआ है, लाल पीली कलर की शर्ट पहने हुए, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं, बड़े बड़े मैंने बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा, लगता कि उधर ही रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया बैठे बैठे, पानी आया चाय आई, हम पी के बैठे हुए हैं, और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं। और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं, बंदा पढ़ ही रहा है, आ ही नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे वो, उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया, और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये, उन्होंने बोला किसको लेके आ गए, कौन है, मेरी शक्ल देख के। अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं, आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर। मैं बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे को, ये मुझे ताकत लगा रहा था, क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था। उन्होंने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखे इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं आना है और मैं उसके लिए आया हूँ, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं। तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं है, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मैं सर कुछ भी करूंगा, मैं आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रिहर्सल से साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीजें आप खुद से देखनी पड़ेंगी। तो जिस रिपेटरी कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी शामला हिल्स पे, उसमें मैं हेमंत देवलेकर भैया और एक और जीतेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे, वो रहते थे। तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार, और ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहां पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना, और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा, तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे, और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तब मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई, उस महफिल में सुनाई पहली बार। मैं इधर सुना दूं आपको?
0: जरूर।
1: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिचरी खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, वो पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है, कईया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारों लिबवाने, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारों लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
0: क्या बात है।
1: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, ये उसके दोस्त हैं।
0: बिल्कुल।
1: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेला ना जा पाहो उनखा आके तिनगाने,
0: वाह वाह,
1: आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
0: वाह वाह।
1: आखिरी बंद है की दद्दा धीरे से मुस्काए ढीले दोई बेला, और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला, फिर मेला में फिर दद्दा ने गड़गड़िया लेवाई, और कंधे पे बैठा के पूरा मेला दो घुमाई, कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने, और आज ने 5 रुपया दे गड़गड़िया हिलाने मौका मिला जाए।
0: कहते हैं देवेंद्र
1: उस समय ये बुंदेलखंड की कभी गानों में कभी जो राइटर होता था उसका नाम छाप बोलते थे उसे, छाप है, तो छाप लगा के ही मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरी बुंदेली कविता थी, और वहां से ही मेरा साहित्य के बारे में शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया, ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया, चेखव पढ़ना शुरू किया, मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया, गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया, विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया, बादल सरकार पढ़ना, तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ।
0: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
1: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था, और 10 रुपए का 5 रुपए का नमकीन का एक पैकेट आता है, भुजिया बोले ली और रोटी बना के, और रोटी में घी लगा के, घी और ये दोनों चीजें घर से ले गया था, और रोल बना के उसमें नमकीन डालता था और उसको ऐसे खाता था, खर्च कुछ था ही नहीं,
0: बस वहाँ खाना हो गया,
1: खाना हो गया, और वहां से रिहर्सल के लिए वॉक करता था, तो वॉक करके वहां पे जाता था, रिहर्सल करता था, टाइम से पहले पहुंचता था, तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था, ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल स्पेस साफ करना है, चटाइयां बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है, तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में, और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना, और हम 3 लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में, और मैं देखता था भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मेरी भाषा का बहुत खराब था, एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े, और दादा मुझे और मेरी भाषा बहुत खराब थी, तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे, वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक मुझे वो करने को मिला, मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया, तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हो गया, तो उसमें एक डायलॉग था ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच, तो बोलते ले लो नहीं, मुझे सिखाते थे ले लो नहीं ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ, और मुझे इस बात पे गाली मिलती थी, और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो, यार मैं समझ नहीं आता मैं वही तो बोलता हूँ, फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे को भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा। सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे मैं कमा नहीं सकता, ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, वो खुला ही था, तो मैंने फिर एमपी स्कूल ड्रामा के लिए एग्जाम दिया, पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में मैं गया, फिर वर्कशॉप में चल का एक माहौल, सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे कि मैं कैसे मैंने म्यूजिक बनाना समझा, मैंने सीखा तो किसी नहीं है, मैंने हारमोनियम सीख लिया था, पर म्यूजिक बनाना मैंने कैसे समझा, कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ, त्रिपुराई शर्मा मैम जो कि हम उनको डायरेक्ट करने आई थी जो कि हमारे बीच में नहीं है, पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को सब चीज़ों के लिए, काफ़ी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है, तो मैम का नाटक था और हम उसको कर रहे थे, और संजय उपाध्याय सर जो कि बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री में और थिएटर की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, SNA अवार्डी हैं वो, और मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे सीखा है मैंने, तो एक नाटक कर रहे थे, तो उस नाटक में हम उज्जैन में हमारी वर्कशॉप लगी हुई थी और उज्जैन में हम 1 महीने के लिए वहाँ पे थे, तो सर ऐसे मेरे सामने ही गाने बना रहे थे, हारमोनियम बजाना मुझे आता था पर मैंने गाने नहीं बनाए थे, तो उन्होंने गाना बनाया मेरे सामने ही, और वो गाना मुझे ही गाना था तो मेरे सामने बना रहे थे, क्योंकि मैम पूछती थी कि संजय क्या हुआ, तो बताते थे मैम हम कर रहे हैं, तो एक गाना उन्होंने बनाया, एक कविता थी, दिखती है आस क्यों पाक पसारे सही में है मन क्यों क्यों रूठे किनारे, तो उन्होंने इस गाने को कंपोज किया सर, देखिए छोटी सी बात है पर उन्होंने मेरे सामने कंपोज किया और मैं ऐसे इंस्पायर हूँ, इनलाइट हो गया, मुझे लगा कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, तो गाना ऐसा कुछ था।

0: तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की और लिखने की शुरू किए, क्योंकि मैं पढ़ता था भावे लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने कुछ गाने लिखने शुरू किए,
1: कंपोज करना शुरू किया या
0: लिखने भी लिखना लिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का 7-8 मिनट का 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ। अगले
2: को यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है, एक गाना सुनते हैं उसके बाद ये दास्तान सुनेंगे। तो बताओ यहाँ कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
2: क्या बात है,
0: ओमकारा का गाना है,
2: बहुत
0: ही सुंदर गाना है, बहुत सुंदर गाना है।

0: ये गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र, आप बता रहे थे कि हर शनिवार को ये परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा,
1: हाँ,
0: तो इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया, तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेली गाने थे, कुछ ऐसे कुछ गाने थे, और वहाँ पे अगले नाटक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा। तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे। तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग। हाँ, अपना अपना भाग का मैंने पहला गाना है, वो ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके। सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, मेहनत करके भाग्य जुगा ले, तुझको किसने रोका है, सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है। तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है, और फिर
0: म्यूजिक का सिलसिला चल
1: चालू हो गया। फिर उसके बाद मैं पास आउट हुआ, और फिर वीके सर ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होके दिल्ली आ जाना, मेरे ग्रुप में काम करना।
0: अच्छा,
1: तो एक ब्रिज में लिया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है,
0: वो
1: तो छूटे नहीं है, वो रिकॉर्डिंग तो छूटे नहीं है, वो तो मैं मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है। जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था, उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था, पर एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया, और देने गया इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो, तो भोपाल में आपने नहीं दिया? मैंने बोला मैंने दिया था। तो उन्होंने क्या हुआ? मैंने कि हो गया। तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ।
0: अरे
1: मैंने कहा यार, तो फिर मुझे पढ़ने को वहां पे मौका मिला, और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था, 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए, और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ।
0: ओके,
1: और तो उसके बाद मैं दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम किया,
0: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन
1: हो गया,
0: और वहीं वो
1: और वो धुरंधर जी से मिलना हुआ मेरा।
0: मिले धुरंधर जी?
1: धुरंधर जी उस समय तक थे, धुरंधर जी पर वो मुझे भूल चुके थे तब तक।
0: हाँ।
1: मैंने बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा, ऐसे वो मनगढ़ंत कहानी सुना रहे वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग कैसे होते हैं, तो ऐसे थे वो, क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहाँ पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे दुनिया में होता है
0: जी।
1: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब
0: प्यार
1: में परिवार के सदस्य हो, सीनियर सदस्य हो आप, तो उस तरह से। तो धुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा, और फिर वो रिटायर्ड हो गए, तो अब मिलना कम होता है, पर मैं दुआ करता हूँ जहाँ भी हो, बहुत ही अच्छे थे वो।
0: एनएसडी ने आपकी दुनिया को कितना बदला?
1: सो एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था, मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे, और मुझे शौक था एक्टिंग करने का, और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया, उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था, और मेरे डायलॉग किसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे, बंदूक किसके पास है, मैं बोलता राजगुरु के पास, मेरा डायलॉग खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरी भाषा इतनी खराब थी।
0: अच्छा,
1: क्योंकि
0: लेकिन ये फिर भाषा पर काम कैसे किया? ये हाँ, बहुत
1: मैं बता रहा हूँ कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था, शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था,
0: हाँ।
1: तो लोग हंसते थे,
0: हाँ।
1: तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मैं बहुत बड़ा मसला है, तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की, मुझे लगातार टोका, मुझे समझाया, और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके, मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा अच्छा मैं गलत बोलता था,
0: शक को साफ बोल रहे हो,
1: हमेशा ही बोलता था। तो पहली बार मैंने ये कविता जो राजीव जोशी की बहुत पॉपुलर कविता है, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया, जो हमारे बैंड का मंडिया हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड है उसमें गाना है ना, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, तो शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था, जिसमें मैंने सा को सही बोला था, शामिल बोला था, मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोलना था, इतने दिन से तुमसे यही तो बोलवाना चाह रहे थे हम।
0: ओके,
1: तो ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया, और जब मैं पहली बार इसमें एनएसजी आया और मैंने बहुत बड़ा रोल किया लोअर डेप नाटक में, दोबारा हुआ एनएसजी में, और उसमें मैंने साचिन का रोल किया, और डायरेक्ट कर रहे थे अनुज खुटवर सर, और मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया और 2.5 घंटे के नाटक में 1.5-2 घंटे कम से कम स्टेज पे और लगातार बोलना है, और कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी चीज जो मैं नहीं करता था सब उसको करना है, मैनेजम पकड़ने की कोशिश की, और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ। पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया, और उस समय मुझे समझ में आया कि यार मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियां कौन कहेगा, तो फिर मैंने वहां से अपना रुझान बदला, और मैंने डिजाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया सेकेंड ईयर से, आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो वो लिया और फिर मैं उस तरफ आ गया। और फिर मैंने अपनी कहानियां लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की, जहां से मैं बिलोंग करता हूं उस जमीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूँ, मेरे को लोग प्यार करते हैं और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूँ। लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ भी कर देते इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
0: बिल्कुल
1: तुम्हारी एफर्टलेस में दिखती है। तो ऐसे करके शुरू हुआ पूरा पूरा।
0: तो फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर की बात की है?
1: अभी दिल्ली पहुंचा उस दौर के बड़े नाटक हुए थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था जिसका बहुत नाम हुआ। उस समय बंसी दादा भी नाटक करते थे,
0: बंसी कॉल
1: जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया।
0: मुखौटा,
1: हाँ, तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लाजन लाइव थिएटर करते थे और वो फार्स कॉमेडी करते थे, वो कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने वाटर स्टेशन जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
0: बिल्कुल
1: देखे हमने। अभिलाष पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने, और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ, और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज्यादा हम बैचमेट्स से सीखते हैं।
0: तो वहां से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
1: मैं पास आउट हुआ 17 में और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था डिरेल, मैंने किया था वो नाटक, उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया और वो थिएटर ओलंपिक हुआ उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था उसके 1000 लोग देखते थे और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिजाइन किया था, और एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक कि वहां से एक रेल की पटरी निकलती है और वहां पे एक गार्ड रहता है और वहां पे फाटक है और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा, ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था, तो वो गाना और उसके काफी गाने ऐसे पॉपुलर हुए और वो मैंने रिकॉर्ड किया, तो दोस्तों ने मुझसे मांगे तो मैंने दे दिया किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया, उन्होंने गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, काफी बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बम्बई आ जा और मैं हम काम करेंगे। वो बहुत बड़ा नाम था डायरेक्टर का और मैं ऐसे चमक गया। रात का टाइम था 12 बजे के आसपास, एनएसडी से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड पे मैं चल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में, और एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूँ, उन्होंने बोला फलाना बोल रहा हूँ, सर वे कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज़ म्यूट हो गई है, मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं और मैं वहीं खड़ा हुआ, कुत्ते मेरे आसपास पहुंच रहे हैं, सुनाई देना बंद हो गया मुझे। मैंने कहा अरे हाँ सर, अरे सर मैं तो मर जाऊंगा सर, क्या हो गया सर, मैं आप बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ पर वो काम नहीं बन पाया, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया, पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे। पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया
0: और यहाँ से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
1: हाँ मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे शुरू होता है कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा, क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है, पर ये पता था कि वहाँ हर हाल में पहुंचना है जहाँ जाने का ख्वाब देखा है, तो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे, फिर मैंने एक नाटक बना लिया कांजी हाउस जो मैंने ही लिखा था, और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे, वो शुरू ऐसे होता है एक आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।
0: अच्छा
1: वो क्योंकि रेडियो को बंदा था तो रेडियो पे कोई न्यूज चल रही है और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस पृष्ठभूमि पे है, ऐसे करके उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये उसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूजिक है। तो कांजी हाउस उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए और वो फिर कोविड लग गया, हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़ी बात के साथ बनाने की कोशिश की है, जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है।
0: और उसका एक गाना सुनाओ यार,
1: उसका टाइटल सॉन्ग सुना दूंगा मैं आपको,
0: बिल्कुल
1: सुनाता हूं मैं आपको। उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है, मैं एक इसकी छोटी सी बात बता देता हूँ कि एक छोटा सा सेंटेंस जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का असर कितना समय रहता है और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है ये एक तरीके से। अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल के
0: बदल दी।
1: उस पर एक कहानी है। हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है। एक संवाद कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है, और अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है, संवाद है, तो वो क्या बदल सकता है, वो तबाही ला सकता है। तो वो कहानी है। अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि वो फोक से शुरू होके ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गांव से निकल के कहां कहां पहुंचता है, उसी कहानी है। सो गाना है, अब कंट्रोल नहीं होता, अब बर्दाश्त के बाहर है, इसको कोई रोक सके, किसमें इतना पावर है, सीने के इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है,
0: क्या बात है, पै पै
1: पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, पै पै पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, सीधे लड़के के हाथों में इनलीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है,
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: जहन की हर एक चोट थी गायब, उन होठों में होठ थे गायब, हाथ थे गायब, बात थी गायब, दुनिया की औकात थी गायब, गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी।
0: वाह।
1: सुबह उठा तो कान के नीचे, सुबह उठा तो कान के नीचे, गर्दन पर स्कार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है, पा पा पा पा पा, बहुत जोर से प्यार लगा है।
0: क्या बात है, बढ़िया गाना। जी जी जी। कैसा रिस्पॉन्स है इस नाटक का?
1: सर जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं, और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए हैं, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें भी बहुत शो करने हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमना है। तो जो भी श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं, और दो परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं, एक तो हमारे मंडी हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में भी नहीं सुने होंगे, और रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने नहीं बोला हुआ है। तो बहुत अच्छे गाने हैं और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे हमारे शो है, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, एनएमसीसी में भी कर रहे हैं, तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले और एक थोड़ा एग्जाम्पल बने कि हाँ कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
0: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
1: जी जी,
0: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब सीरीज,
1: जी जी, स्वानंद दादा है, और अंकुर तिवारी जी ने को डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर है वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया। उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिगी। जिगी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मेरी लड़की को के पीछे पड़ा हुआ है ये, तो उस लड़के को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन, और उससे राखी बनवा दी। तो वो जिगी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा। अब वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो, अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी थार से उसके पीछे घूमता है बहुत, मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने उसमें बिल्कुल एक्टिंग नहीं की। क्यों? क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा। मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोविंद सर उसमें काम कर रहे थे, हमारे गुरु जी रोविंद सर काम, आशीष विद्यार्थी जी उसमें काम कर रहे हैं, तो काफी लोग उसमें थे, तो उसमें बहुत ही अच्छा था। उसमें मेरा गाना भी था, मैंने गाने बनाने के लिए पहले उससे जुड़ा था, गाना उसमें सम्मोह माया नाम का एक गाना मैंने बनाया था। अच्छा, वो गाना कुछ ऐसा था, वो देखो सब लूप में फंस गए, सभी लिटिल विट चूक में फंस गए, रोटी से परहेज किया है, पिज्जा बर्गर सूप में फंस गए, वो देखो सब लूप में फंस गए, पे पे पे पे पे पे पे पे पे, बुजुर्गों ने फरमाया है प्यारे सब मोह माया है अरे टैटू भी गुदवाया है डूड सब मोह माया है काफी ऐसे फन सॉन्ग है आम आदमी का गाना है कि बेचारा क्या चाय चढ़ा के दूध में फंस गए
0: वाह वाह
1: पी के कहीं तो फूंक में फंस गए
0: वाह
1: पिचकारी से खेल रहे थे नजरों की बंदूक में फंस गए
0: क्या सुन उसके
1: लिरिक्स ऐसे हैं मतलब
0: वाह वाह वाह देवेंद्र बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके तो और सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए हमेशा गुंजाइश छोड़ दी जाए
1: जी जी जी
0: तो फिर कभी मिलेंगे और आगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती
1: बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो का मेरी जिंदगी में बहुत ही योगदान रहा है और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने बहुत सुना है विविध भारती मैंने सुनता था आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं कर दिया जा रहा है आपको फिर वहां से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार
0: बिल्कुल
1: और बहुत ही एक सादगी है एक सरलता है एक मोहब्बत इतना नहीं एक रेडियो में
0: बिल्कुल
1: और मैं बड़ा मिस करता हूँ इसको और मैंने तो सुना ही मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने मेरे जहन में चलते रहते थे बैरन होगी जिंदगी मैं कैसे कहूँ जैसे गाने मैंने सुन के बड़ा हुआ हूँ मैं तो मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ कि मैंने थोड़ा म्यूजिक और जो लोक है जो फोक है वो काफी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है और दूसरा मैं शहर भी रहा हूँ तो मैंने हर तरह की शहर से होके पानी पी के आया हूँ तो मेरे लिए ये काम कर जाता है और रेडियो का मेरे लिए बड़ा योगदान है कि वो गाना नहीं सुनता जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में और मैं आपके साथ बैठा हुआ था हाँ बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर और मुझे स्वानंदन दी थी वो पढ़ने के लिए तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूंगा आपसे बात करता रहूंगा विविध भारती से जुड़ा रहूंगा
0: शुक्रिया
1: बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच।

आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। साय के 5 बजे हैं। आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

शाम 6:20 पर आप सुनेंगे गीता संदेश, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे अध्याय 3 के श्लोक 38 से 40 की व्याख्या। व्याख्याकार होंगे डॉक्टर विदुषा।

रात्रि 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा। निर्देशन होगा विनेश्री का, तकनीकी सहयोग राजेंद्र कुमार, स्वर अनुराधा, प्रस्तुति

महेंद्र मोहन शर्मा। युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का आनंद लीजिएगा शाम 5:30 पर। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा आलस्य का करें त्याग युवा वर्ग।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने नए पुराने। शाम 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम गाने नए पुराने। शाम 7:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम जय जवान का। कार्यक्रम गुलदस्ता का आनंद लीजिएगा शाम 7:45 पर। रात 8 बजे हम लाएंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

ये थी हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM बैंड 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गाने नए पुराने। कार्यक्रम गाने नए पुराने में आप सभी श्रोताओं साथ सभी श्रोता साथियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं आइए कार्यक्रम गाने नए पुराने की शुरुआत हम करते हैं इस गीत के साथ जो कि हमने लिया है फिल्म कर्ज से, और इस गीत के गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी।

श्रोताओं, अभी आपने सुना गीत फिल्म प्यासा से, और ये गीत था गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और ये गीत लिखा था साहिर ने। और आइए कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म थ्री इडियट्स से।

दोस्तों अभी आपने सुना गीत फिल्म हम किसी से कम नहीं से, और ये गीत था सुषमा श्रेष्ठ और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और इस गीत को लिखा था मजरूह ने। और कार्यक्रम गाने नए पुराने में हम अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म चलते चलते से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए पुराने FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम युववाणी में आप सभी युवा साथियों को मैं का प्यार भरा नमस्कार। और आइए दोस्तों, हम कार्यक्रम युववाणी में आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारे मनोरंजन भरे गीत, और आपको जानकारी भी देंगे, आपसे चर्चा भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले इस प्यारे से गीत के साथ।

दोस्तों, अक्सर कभी हम कुछ काम करने लगते हैं तो कभी ऐसा होता है कि हमें आलस आ जाता है किसी काम को करने में, है ना। लेकिन हमें अलसाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई आलस जो है वो मनुष्य का एक ऐसा शत्रु है जो बिना किसी शोर के उसकी प्रतिभा, उसके समय और उसके अवसरों को नष्ट कर देता है। आलस व्यक्ति को उसके कर्तव्यों से दूर ले जाता है, उसकी सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है, और विशेष रूप से युवा वर्ग के लिए आलस जो है वो बहुत खतरनाक है भाई। क्योंकि युवावस्था जीवन का वह काल है जिसमें व्यक्ति अपने भविष्य की नींव रखता है, और कहा भी गया है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और ये पंक्ति हमें बताती है कि हमें कार्यों को टालना नहीं चाहिए। लेकिन आलस के कारण हम अक्सर ऐसा कर देते हैं कि अपने जो ज़रूरी काम है उन्हें टाल देते हैं, और जिससे हमारा समय तो खराब होता ही है, साथ ही हमारे जो लक्ष्य हैं वो भी दूर होते चले जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: लत तो लगेगी ही क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है।
4: ऐसा देश है मेरा, हाँ, ऐसा देश है मेरा।
3: ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 MHz अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र तो सुनना न भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार को।
4: ऐसा

दोस्तों, आज के डिजिटल युग में मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और मनोरंजन के बहुत सारे साधन जो है युवा वर्ग के जो मतलब हमारे युवा साथी हैं उनका ध्यान भटकाते हैं। यदि मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और ये जो मनोरंजन के इतने साधन हैं इनका अगर हम उपयोग अच्छे तरीके से, संतुलित तरीके से ना करें तो ये हमारे आलस को जो है वो बढ़ावा देते हैं और इसी की वजह से हमारी पढ़ाई, हमारा स्वास्थ्य और हमारा व्यक्तित्व जो है वो बहुत प्रभावित होता है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जो युवा अनुशासन में रहते हैं, परिश्रम करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, वो जीवन में नई ऊंचाइयों को पाते हैं। इसीलिए हम कोशिश करें कि हम हमेशा अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके चलें, समय का सदुपयोग करें और नियमित व्यायाम करें। और इसी के साथ साथ सकारात्मक सोच रखना बहुत ज़रूरी है, जो जिससे कि हम निरंतर कर्म करते रह सकते हैं। जब युवा वर्ग आलस का त्याग करके परिश्रम को अपनाएगा तभी तो उसका उज्जवल भविष्य और राष्ट्र का समृद्ध विकास सुनिश्चित होगा। दोस्तों, आलस से त्यागो, कर्म अपनाओ, अपने सपनों को सच बनाओ। और किस तरह से आप आलस त्याग सकते हैं, किस तरह से हम आलस को दूर भगा सकते हैं, इस बारे में भी हम आपको कार्यक्रम में देंगे जानकारी।

0: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
1: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
0: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
1: हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
0: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
1: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें,
0: आकाशवाणी
1: विश्वास की आवाज।
2: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
4: दोस्तों, आइए अब आपको देते हैं जानकारी कि जब किसी भी काम को करने में हमारे अंदर आलस्य आने लगे तो किस तरह से हम जल्दी से उसे दूर भगा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी काम को जब हम करने लगते हैं और अगर वो काम बड़ा है तो उसे देखकर जो है वो हमारा मन घबराने लगता है, तो ऐसे में उसे छोटे छोटे चरणों में बांटकर हम शुरुआत कर सकते हैं। उस काम को करने के लिए हम एक समयबद्ध योजना बना सकते हैं। इससे जो है वो हमारा समय का सदुपयोग भी होगा और हम टाल मटोल भी नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ साथ जरूरी है कि हम दिन भर में नींद गुणवत्तापूर्ण नींद लें, कम से कम 6 से 8 घंटे की, क्योंकि अनियमित नींद या कम नींद जो है वो हमारे आलस्य को बढ़ाती है। और हम कोशिश कर सकते हैं कि हम मोबाइल और सोशल मीडिया का जो है वो सीमित उपयोग करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम मोबाइल और सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा हमारा स्क्रीन टाइम होता है, उतना ही ज़्यादा हमारा ध्यान भटकता है और इससे जो है वो हमारी काम टालने की आदत बढ़ सकती है। और अपने जीवन में अगर हमें आलस्य को दूर भगाना है तो अपने जीवन में हमें एक नियम बनाना चाहिए अभी से शुरू करने का। किसी भी काम को अगर हमें करना है तो हम उसे यह ना सोच के कि हम 5 मिनट बाद करेंगे, हम कोशिश करें कि हम उसे अभी से शुरू कर दें। ऐसा करने से हमारी जो टाल मटोल की आदत है वो खत्म हो जाएगी और हमारा काम जो है वो शुरू हो जाएगा। और कहा जाता है ना कि एक बार हमने काम को शुरू कर दिया तो भाई फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे धीरे धीरे करके निपटा दें। और ये थी कुछ बातें कि किस तरह से हम जो है आलस को दूर भगा सकते हैं। और इसमें एक टिप और भी है कि जब हम किसी भी कार्य को पूरा कर दें तो ऐसे में हम ऐसा कर सकते हैं कि अब खुद को एक पुरस्कार दें, एक रिवार्ड दें, कोई भी छोटी सी खुशी या छोटी सी इनाम दें। ऐसे में क्या होगा कि जब हम अगले किसी काम को करना शुरू करेंगे तो हमें पुराना जो पुरस्कार है वो याद रहेगा और अगले काम को करने की जो हमारी क्षमता है वो बढ़ जाएगी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सायं के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार। 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार। 6:10 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। कृपया रेले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना

0: के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नौकरी पाने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राष्ट्रीय रोजगार मेले के दौरान अंबाला में 120 युवाओं और पलवल में 93 विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कई देशों के मुकाबले भारत में तेल की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई। और हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने आज रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 950 विद्यार्थियों को डिग्री और 68 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नौकरी पाने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। श्री मोदी ने नौकरी पाने वाले युवाओं को बधाई दी और कहा कि सभी युवा कठिन परिश्रम के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
1: आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन,

0: प्रौद्योगिकी तरक्की को लेकर बहुत उत्साहित है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ भागीदारी कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले और उनका सामर्थ्य बढ़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नव नियुक्त कर्मचारियों को आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: हरियाणा में अंबाला, पलवल सहित विभिन्न जिलों से भी आज राष्ट्रीय रोजगार मेले के आयोजन के समाचार मिले हैं। अंबाला रेल मंडल द्वारा आयोजित मेले में 120 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। अंबाला रेल मंडल प्रबंधक विनोद भाटिया ने बताया,
2: इस बार ये जो रोजगार मेला था मेनली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को एज ए ऑर्गेनाइजिंग मिनिस्ट्री रिस्पांसिबिलिटी दी गई थी और आज हमने अंबाला में अराउंड 120 कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र दिए हैं और इसमें जो अराउंड 60 कैंडिडेट्स इंडियन रेलवेज थे और बाकी 60 कैंडिडेट्स अलग अलग मिनिस्ट्रीज थे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पोस्टल, देन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, MHA एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो कैंडिडेट्स थे उनके लिए एक तरह से मोटिवेशन का ये बहुत बड़ा अवसर था।
0: एक बैंक में नियुक्ति पाने वाली मीनू ने आकाशवाणी संवाददाता को बताया,
3: मेरा नाम मीनू है और मैं रोहतक से आई हूँ। मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में सिलेक्शन हुआ है कस्टमर सर्विस एसोसिएट की पोस्ट पर। मैं मेरे परिवार में सबसे पहली हूँ जिसको सरकारी नौकरी मिली है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार भी बहुत खुश है। सभी बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, आपको भी आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा।
0: श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार ने आज 94 विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कौशल विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कई अच्छी और नामचीन कंपनी विश्वविद्यालय में रोजगार देने के लिए आ रही हैं। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। मंत्रालय के अनुसार अधिनियम की धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के अनुसार मसौदा नियम तैयार किए गए हैं। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 को 11 मई को अधिसूचित किया गया था। ये इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपने 2 दिवसीय करनाल दौरे के दौरान आज नीलोखेड़ी हल्के के करीब 10 गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में श्री मनोहर लाल ने कहा कि ग्रामीणों ने रेलवे से जुड़ी समस्याएं भी उनके सामने रखी हैं, जिन पर रेलवे अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस विषय पर न्यायालय की टिप्पणी आई है, लेकिन

0: फैसला विधायिका और राज्य सरकारों को करना है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। आईएएस अधिकारियों के बच्चों को आरक्षण देने का विषय उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे अधिकारी पहले से ही सक्षम और उच्च स्तर पर होते हैं। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पर मनोहर लाल ने कहा कि यह केवल भारत का विषय नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का असर है। उन्होंने कहा कि कई देशों में तेल की कीमतों में 60-100% तक वृद्धि हुई है, जबकि भारत में बढ़ोतरी बेहद मामूली है। हरियाणा में लाभार्थियों को आवास योजना की राशि जारी होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपना हिस्सा प्रदेश को जारी कर चुकी है, राज्य सरकार का हिस्सा मिलते ही लाभार्थियों को राशि जारी कर दी जाएगी। हरियाणा के राज्यपाल एवं कुलाधिपति प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने दीक्षांत समारोह के दौरान 950 विद्यार्थियों को MBBS, BDS, MGMS, MDS, नर्सिंग, फार्मेसी और पैरा मेडिकल की उपाधि और 68 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। समारोह में राज्यपाल की धर्मपत्नी मित्रा घोष भी मौजूद रहीं। राज्यपाल व कुलाधिपति प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने उपाधि व स्वर्ण पदक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के शिक्षा व शोध के क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान है। उन्होंने विश्वविद्यालय की ओर से चलाई जा रही अंगदान मुहिम की सराहना की। राज्यपाल ने उपाधि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को मानवता की सेवा के लिए प्रेरित किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। अब कल 24 मई तक स्कैन कॉपी प्राप्त की जा सकेगी। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नौकरी पाने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
1: FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनिए गीता संदेश, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे अध्याय 3 के श्लोक 38 से 40 की व्याख्या। व्याख्याकार हैं डॉक्टर विदुषा।
2: गीता संदेश कार्यक्रम के समस्त श्रोताओं को सादर नमस्कार। कल आपने श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 34 से 37 श्लोकों की व्याख्या सुनी। 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि काम और क्रोध ही वे शत्रु हैं, जो कि मनुष्य से न चाहते हुए भी पाप कर्म करवाते हैं। अब इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए 38वें श्लोक की ओर चलेंगे। 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का कथन है, धूमेन आव्रियते वन्यर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेन आवृतो गर्भो तथा तेनेदम आवृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार जेर अथवा झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। काम ही मल, विक्षेप अथवा आवरण, इन तीन रूपों में ज्ञान को ढक लेता है। दर्पण का मैल पापों से अंतःकरण की मलिनता का प्रतीक है। कामना से विवेक ढका रहता है और धुआं विक्षेप के समान चंचल है, जो कि अंतःकरण की एकाग्रता को नष्ट करता है और जिससे विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। कामना की प्रबलता से कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नष्ट हो जाता है। जेर का संबंध आवरण से है। अज्ञान से मोहित अंतःकरण कामना की चरम अवस्था में पूर्णतया विवेक रहित हो जाता है। काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से बुद्धिनाश, ये तीन अवस्थाएं, ये स्थितियां जो श्री कृष्ण ने यहाँ स्पष्ट की तीन उदाहरणों के माध्यम से, ये कामना की प्रबलता की तीन अवस्थाओं को बताना चाहते हैं। धुएं से आवृत होने पर भी अग्नि का ज्ञान होता है, मैल से आवृत होने पर भी दर्पण का ज्ञान होता है, अर्थात काम की प्रथम अवस्था में कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध होता है, काम की द्वितीय अवस्था में भी बोध की स्थिति पहली अवस्था की तुलना में कुछ कम होती है, किंतु झिल्ली से आवृत गर्भ जो है उसके भीतर बालक अथवा बालिका के होने का बोध नहीं होता। इससे अभिप्राय यह है कि कामना जब अपनी चरम अवस्था पर इतनी प्रबल स्थिति में आ जाती है तो व्यक्ति कर्तव्य और अकर्तव्य के विवेक से शून्य हो जाता है, और कर्तव्य और अकर्तव्य के विवेक से शून्यता ही मनुष्य को पापकर्म में प्रवृत्त करती है। इसके बाद 39वें श्लोक में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण का कथन है, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी काम द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। यहाँ ज्ञानी से भी प्राय विवेकशील साधक से है। सामान्य प्राणी के लिए तो काम सुख रूप होता है, इसकी यथार्थता अर्थात इसकी दुख रूपता को विवेकशील साधक ही पहचानता है। काम ज्ञानी के लिए वैरी ही है, जबकि विषय आसक्त व्यक्ति के लिए इसके विपरीत सुख है। अनल के समान दुष्पूर होने का अभिप्राय है कि इसकी पूर्ति कभी नहीं होती। जैसे अग्नि जो है उसको दाहक सामग्री मिलती जाए और वो जलती जाती है, ऐसे ही एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे भोग पदार्थ की कामना बढ़ती ही जाती है। सामान्यतः उचित एवं अनुचित, कर्तव्य एवं अकर्तव्य का बोध प्रत्येक प्राणी में होता ही है, परंतु कामना से विवेक के ढक जाने पर अकर्तव्य में व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है। जागृत में भोग प्रवृत्ति होती है और उस भोगों को भोगने के बाद थकान होती है, किंतु सुषुप्ति अवस्था में मनुष्य हर प्रकार के भोगों से दूर होता है और जागने पर विश्रांति का अनुभव करता है। अर्थात भोगों में सुख नहीं है, भोग से वियोग की जो अवस्था है वही सुखरूप है। इसके आगे श्री कृष्ण 40वें श्लोक में इसी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानम उच्यते एतैर विमोह यत्तेष ज्ञानम आवृत्त देहिनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसका आश्रय कहे जाते हैं, इस काम के निवास स्थान है। यह काम इंद्रिय मन और बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। शरीर की समस्त क्रियाएं इंद्रिय मन और बुद्धि से होती हैं, और इनमें यदि राग और द्वेष, जैसा कि पूर्व में कहा गया था, राग और द्वेष से युक्त स्वभाव काम प्रेरक है तो पारमार्थिक वृत्ति को होने नहीं देता। कामना ही जीव को बांधती है और कामना से मुक्ति ही जीवन मुक्ति का मार्ग है, यही यहाँ श्री कृष्ण का आशय है। जैसे बादल सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है अथवा आवृत कर लेता है, ऐसे ही प्रतिदिन नई नई कामनाओं की पूर्ति के पीछे भागता हुआ मनुष्य अपनी प्राथमिकता जो कि आत्मिक उद्धार है उसे भूल जाता है। भोजन स्वादिष्ट है तो आवश्यकता से अधिक खा लेना मोहित अंतःकरण से ही होता है। नियंत्रित मनोवृत्ति स्वाद से मोहित नहीं होती। मन ही समस्त इंद्रियों का प्रवर्तक है। बुद्धि का नियंत्रण यदि मन पर नहीं है और मन इंद्रियों को उनके विषयों में जाने के लिए छूट दे रहा है तो यह कल्याण मार्ग की निश्चित बाधा है। तो इसलिए यहाँ श्री कृष्ण का कथन है कि आशा यह है कि इंद्रिय मन और बुद्धि और इंद्रियां राग और द्वेष के प्रभाव से जब मुक्त होंगी तो ये कामना के पीछे भागना भी छोड़ेंगी। आज आपने श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय के 38 से 40 तक श्लोक की व्याख्या सुनी। इसके बाद आगे के श्लोक की ओर हम कल चलेंगे। नमस्कार।
3: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन। श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
4: लत तो लगेगी ही क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है।
5: ऐसा देश है मेरा, हाँ, ऐसा देश है मेरा।
4: ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 MHz अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार को।
5: ऐसा देश है मेरा, हाँ, ऐसा देश है मेरा।
1: अभी आपने सुने संदेश। संदेश से पहले आप सुन रहे थे गीता संदेश, जिसके अंतर्गत आपने सुना अध्याय 3 के श्लोक 38 से 40 की व्याख्या। व्याख्याकार थी डॉक्टर विदुषा। FM बैंड 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुननी है सारे बाण भैया ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे नींबू वर्गीय बागों की देखभाल पर, और साथ ही भाइयों चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत हरे चारे के लिए गवार की बिजाई पर, और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में, कृषि में प्राकृतिक खेती के लाभ पर, और इसके अलावा करवाऊंगे भैया का मनोरंजन, और जो दूसरे समसामयिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। और शुरुआत करें भाइयों एक चर्चा थे नींबू वर्गीय बागों की देखभाल पर। किसान भाइयों, खेती बाड़ी में बागवानी का खास महत्व है, और अपने हरियाणा में तो भाइयों नींबू वर्गीय जो फल है उसका तो और भी खास महत्व है। और नींबू वर्गीय फलों में खासतौर पर मौसमी, संतरा, नींबू, मिठा नींबू, माल्टा और ग्रेपफ्रूट जो है मुख्य रूप से शामिल है, और इन फलों में भाइयों विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाओ है, जो स्कर्वी जो बीमारी है उसकी निदान में, उसे ठीक करण में मदद करे। साथ ही भाइयों इसमें विटामिन ए, बी और खनिज तत्व भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाओ है। और अपने हरियाणा प्रदेश में तो भाइयों नींबू वर्गीय जो फल है उसका क्षेत्रफल लगभग 17,000 हेक्टेयर है, और अपने हरियाणा प्रदेश में नींबू वर्गीय जो फल है उसमें संतरे की किस्म किन्नू उसका जो है खास तौर पर जो है व्यावसायिक तौर पर इसकी हम खेती करें, जिसका क्षेत्रफल नींबू वर्गीय जो फल है उनका 70% भाग कवर करे है, और सिरसा, फतेहाबाद और हिसार जिलों में जो है मुख्य रूप से इसकी काश्त करी जावे है। और इन सभी फलों पर जो है अनेक तरह के कीट भी आक्रमण कर रहे हैं, अगर किसान भाई थोड़ा सा भी लापरवाह हो जाए या ज्ञान का भाव हो जाए तो किसान भाई जो है काफ़ी अपनी जो फसल का नुकसान कर बैठे हैं। तो इस तरह के जो कीट के आक्रमण हैं उनका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है ताकि उत्पादन और गुणवत्ता बनी रहे, और इन फलों में जो लगने वाले मुख्य कीट हैं उनकी पहचान करना और उन्हें नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो मुख्य कीट है भाइयों वो है एक तो नींबू का सिल्ला, और नींबू के सिल्ले की पहचान की बात करें तो भाइयों नींबू का जो सिल्ला है यह जाति सभी पौधों का एक मुख्य कीट है, और इस कीट के गोल, चपटे और नारंगी पीले रंग के जो शिशु हैं और भूरे रंग के जो प्रोड हैं वो कपोलों ने टहणियों पर और पत्तों पर बैठ कर उसका रस चूसते हैं, और इनके रस चूसण से भाइयों पत्ते और टहणियों की जो है पीले पत्ते पड़ जाए हैं और साथ में जो है सूख जाए हैं, जिससे पैदावार और फलों में जो गुण है उस पर बुरा असर पड़े है। और ये जो कीट है लगभग सारा साल जो है सक्रिय रहे है, खास तौर पर मार्च, अप्रैल और जुलाई तो सितंबर के महीने में ये ज़्यादा नुकसान पहुँचावे है, और साल भर इसकी 8 से 10 पीढ़ी जो है एक साल में निकल जाए है। और माल्टा और मिठे नींबू पर इसका प्रकोप ज़्यादा देखा जावे है, इसके शिशु भाइयों 10 से 35 दिन में विकसित होकर प्रौढ़ बन जाए हैं, और प्रौढ़ की अपेक्षा ये ज़्यादा नुकसान भी पहुँचावे है। और इसी तरह भाइयों जो नींबू वर्गीय फसल है उसमें नींबू का पत्ती सुरंग कीट ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और पत्ती सुरंग कीट नींबू वर्गीय फलों के पत्तों ने नुकसान पहुँचाने वाला एक प्रमुख कीट है। हल्के पीले रंग की जो बारीक सुंडी है पत्तों पर दोनों तरफ टेढ़ी मेढ़ी और चमकीली सुरंग बनाना शुरू करते हैं, और जो प्रभावित पत्ती हैं और टहनी है वो सूख जाए, साथ ही साथ भाइयों पौधे की बढ़वार भी रुक जाए, और जो प्रकोपित पत्ती हैं उन पर फफूंदी और कोड़ जैसी बीमारी लगनी शुरू हो जाए, और इसका प्रकोप फरवरी, मार्च और मई तक अक्टूबर तक ज़्यादा देखा जाए है। और इस कीट की सुंडी भाइयों 5 से 30 दिन तक सुरंगों में रहकर पत्ते न खावे हैं, और इसका प्रकोप भाइयों मुलायम और जो रसदार पत्ते हैं उन पर ज़्यादा देखा जावे है और नर्सरी में छोटे पौधे इसके प्रकोप से नष्ट हो जाए। तो जो नींबू का सिल्ला और जो पत्ती सुरंग कीट है उसके नियंत्रण खातर भाइयों 750 मिलीलीटर ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल 25 इसी ताकत की दवाई जिसने मेटासिस्टॉक्स के नाम से भी जाना जावे है या फिर भाइयों 625 मिलीलीटर डाइमेथोएट 30 इसी ताकत की दवाई जिसने रोगोर के नाम से भी जाना है 500 लीटर पानी में मिलाकर एक एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और कुछ बात तक हमने ध्यान भी रखना है कि जो परागण और को बाधित करने वाले या रोकने के लिए या फिर जो मधुमक्खी है उनके बचाव खातर भाइयों फूल वाले जो समय है उसमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव ना करें, क्योंकि ऐसा करने से एक तो जो मधुमक्खी वंश है वो भी खत्म हो जाएगा, साथ ही जो परागण की जो प्रक्रिया है वह भी बाधित हो जाएगी। साथ ही ध्यान रखें कि जो छिड़काव है वो नींबू जाति के सभी पौधों पर करें, चाहे वो बागमला के रूप में लगा रखे हमने या फिर वो बाड़ के तौर पर लगा रखे हैं, तो सब पर जो है छिड़काव होना जरूरी है। इसके अलावा भाइयों एक और जो समस्या देखी जावे वो है नींबू की सफेद मक्खी या काली मक्खी। इस कीट के भाइयों शिशु चपटे हड़के पीले रंग के और इनके शरीर पर भाइयों बाल देखने मिले हैं और प्रौढ़ के शरीर पर भाइयों पंखों पर सफेद रंग का पाउडर इसमें दिखाई देगा। साथ ही जो काली मक्खी है उसके शिशु चपटे अंडाकार और कांटेदार और गहरे भूरे रंग के या काले रंग के हमने दिखाई देंगे, जबकि जो प्रौढ़ है वो हल्के नीले रंग के दिखेंगे। और शिशु और प्रौढ़ दोनों ही मुलायम पत्तों को जो है उनका रस चूसते हैं जिसके कारण पत्ते पीले पड़कर मुड़ जाए और सूख कर गिर जाए। साथ ही जो शिशु है वो 25 से 70 दिनों तक पत्तियों की निचली जो सतह है उससे चिपके रहे हैं और आराम आराम तब प्रौढ़ में बदलना शुरू हो जाए। लेकिन भाइयों प्रौढ़ ज्यादा दिन जीवित नहीं रहते, वैसे तो ये कीट मार्च से सितंबर तक ज्यादा नुकसान पहुंचावे हैं, परंतु मार्च अप्रैल और अगस्त सितंबर के महीने में इसका प्रकोप सबसे ज्यादा देखा जावे है और साल में भाइयों इसकी दो पीढ़ी निकल जाए। और नींबू की सफेद मक्खी और काली मक्खी के नियंत्रण खातर भाइयों एक तो बाग में सिफारिश से ज्यादा पौधे ना लगावें और पानी की निकासी पर खास ध्यान रखें। इसके अलावा भाइयों कीट के नियंत्रण खातर 500 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास 36SL जिसने हम मोनोसिल या नुवाक्रोन के नाम से भी जाना है 500 लीटर पानी में घोलकर एक एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें तो नींबू की जो सफेद मक्खी है और जो काली मक्खी है उस पर हम नियंत्रण पा सकेंगे। इसके अलावा भाइयों नींबू की तितली और नींबू की जाति के जितने भी पौधे हैं उन सब का मुख्य कीट है, जिसकी छोटी सुंडी भूरे काले रंग की हों हैं जिन पर सफेद धब्बे दिखाई देवे हैं और ये विकसित होने पर भाइयों हरे रंग की हो जाए और आसानी तक दिखाई भी नहीं देंदी। और ये सुंडियां भाइयों मुलायम पत्तियों के किनारे तक लेकर जो बीज का हिस्सा है वहां तक की सारी शिराने खा जाए हैं और नर्सरी में साथ ही जो छोटे पौधे और मुलायम पत्ती हैं उन पर भी ज्यादा नुकसान पहुंचावे हैं। 14 से 30 दिन में ये सुंडी पूरी तरह से विकसित हो जाए हैं और माल्टा पर इसका प्रकोप सबसे ज्यादा देखा जावे है। और इन कीटों की केवल सुंडी ही नहीं भाइयों नुकसान पहुंचांदी, बल्कि जो इनके वयस्क है वो भी फसल पर ज्यादा नुकसान पहुंचावे हैं और सितंबर अक्टूबर में इसका प्रकोप सबसे ज्यादा देखा जावे है। अप्रैल से नवंबर तक इसकी 4 से 5 पीढ़ी हुए हैं और ये प्यूपा की अवस्था में भाइयों शीत निष्क्रिय हो जाए। नियंत्रण की बात करें तो जो नींबू की तितली है भाइयों जहां तक संभव हो सुंडियां और जो प्यूपा है उन्हें हाथ पकड़ पकड़ कर नष्ट करें और इसके नियंत्रण खातर भाइयों वही कीटनाशक प्रयोग में लेकर आवे जिसके हमने जिक्र किया था सफेद और काली मक्खी के नियंत्रण खातर भाइयों। इसके अलावा भाइयों छाल खाने वाली सुंडी ये भी जो है हमारी नींबू वर्गीय जो फसल है उसकी एक मुख्य सुंडी है और ज्यादातर दिखाई नहीं देती, लेकिन टहनियों पर अलग अलग जगह रहकर उसमें मल और लकड़ी का जो बुरादा है वो जाले के रूप में दिखाई देगी। और इस कीट की केवल सुंडी ही नुकसान पहुंचावे है और दिन के समय भाइयों ये तने के अंदर सुरंग बनाकर वह है और रात को भाइयों छेद से जो है बाहर निकल कर ये जाले के नीचे रहकर छाल न खाना शुरू करते हैं। और इनकी जो खुराक है जो खुराक नली है वो खुराक नली न खाकर नष्ट करें जिससे पौधे के दूसरे भाग जो है उन तक पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते और पौधा जो है आराम आराम तो सूख कर नष्ट हो जाए। और जिन बागों की देखभाल नहीं होती और उनके जो पुराने वृक्ष है उस पर इसका आक्रमण ज्यादा देखा जावे है। और साल भर में भाइयों इसकी एक ही पीढ़ी हो है जो जून और जुलाई के महीने में शुरू हो जाए। छाल खाने वाली जो सुंडी है उसके नियंत्रण की बात करें तो भाइयों बाग ने तो साफ सुथरा रखा है और निर्धारित संख्या से ज्यादा पेड़ ना लगावे। साथ ही भाइयों जाड़े हटाने की जो कीटनाशक है उसका प्रयोग जरूर करें और कीटनाशक का प्रयोग आसपास के जो सभी पेड़ हैं उन पर भी जरूर करें ताकि जो इसका प्रकोप है या जो इसके जीव हैं वो दूसरे पौधे पर ना रह पाए। इसके अलावा भाइयों सितंबर अक्टूबर में 10 मिलीलीटर मिथाइल पैराथियान जिसने मेटासिड के नाम से भी जाना है 50 इसी ताकत की दवाई ने 10 लीटर पानी में मिलाकर एक घोल तैयार करके उसने सुराखों में और चारों ओर जो है छाल के ऊपर जरूर लगावे। साथ ही भाइयों फरवरी मार्च के महीने में 40 ग्राम कारबिल 50 घुलनशील पाउडर ने 10 लीटर पानी में मिलावे और रुई के जो फोए हैं उसमें दवाई डबो कर अच्छी तरह से दवाई में डबो कर फोया ने और इन किसी बारीक लंबे पतले तार पर इसने बांध लें और बांध के जो छेद है उसके अंदर डालकर उस राखों को गिल्ली मिट्टी तक बंद कर दें। 10% मिट्टी के तेल में 1% साबुन या सर्फ मिलाकर 1 लीटर हमने लेना मिट्टी का तेल उसमें 100 ग्राम साबुन और 9 लीटर पानी मिलाकर भी हम इस तरह काम ले सके हैं। बात करें भाइयों दीमक की तो ये एक सामाजिक कीट है जिसका प्रकोप नर्सरी और जो शुष्क रेतीली जमीन है उसमें लगाए गए पेड़ पौधे पर ज्यादा देखा जावे है। और दीमक भाइयों जमीन में रहकर पेड़ों की जो जड़ है उसने खावे है और तने ने खोखला करके ऊपर की ओर बढ़े हैं। साथ ही जो पेड़ की बाहरी सतह है उस पर मिट्टी की सुरंग बनाकर छाल ने खाना शुरू करता है और जीवित पौधों के साथ साथ या सूखी लकड़ियों को भी नुकसान पहुंचावे है। यो कीट भाइयों पूरे साल सक्रिय रहे है किंतु गर्म और शुष्क मौसम में तो इसका प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाए है और दीमक खास तौर पर जो फलदार वृक्ष है उनने ज्यादा नुकसान पहुंचावे है। तो दीमक के नियंत्रण खातर भाइयों तो खेत न साफ सुथरा रखे, कोई भी चीज जिस तरह ठूट है गली सड़ी या जो सूखी लकड़ी है उसने खेत में ना रहने देवे जो दीमक के प्रकोप ने बढ़ावा है। साथ ही जो वृक्ष हैं उनके आसपास गहरी जुताई करके पानी देवे जिस तरह दीमक का प्रकोप कम हो जाए। और गोबर की भाइयों हरी और कच्ची खाद का प्रयोग कदे ना करें क्योंकि यह खाद जो है दीमक को बढ़ावा देवे है, तो जो गली सड़ी गोबर की खाद है वह हमने इस्तेमाल करनी है। जहां तक हो सके रानी दीमक ने नष्ट कर दें, परंतु रानी दीमक को नष्ट करना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि यह बॉम्बे के अंदर कई मीटर नीचे तक जमीन में रव है। लेकिन अगर हमने इसे नष्ट कर दें तो इनकी अंग संख्या बढ़नी बंद हो जाएगी और हम इस पर नियंत्रण कर पाएंगे। तो भाइयों ये तो ली जानकारी नींबू वर्गीय बागों की देखभाल में। और इब ले भाइयों जानकारी मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 28 डिग्री सेल्सियस। और साथ ही बात करें भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल है दिन रविवार और दिन रविवार नाम लेकर कार्यक्रम थारे संदेश मारे गीत। और इब करवाओ भैया का मनोरंजन सुने एक रागणी।
7: Yeah!

ਹੱਥ ਤੂੰ ਕੇ ਸੰਭਲ ਮੈਂ ਸੰਭਲਿਆ ਰੇ ਫਰਦਾ ਪਾਸ ਧੱਕੇ ਮੰਜਰਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਧੱਕੇ

0: ये तो सुनी भाया ना रागणी और गायक कलाकार थे विक्रम फोगाट। और इब करा भयो चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत हरे चारे के लिए गवार की बिजाई पे। किसान भाइयों, भारत में जो है विश्व के कुल गवार उत्पादन का लगभग 80% गवार पैदा किया जावा है और यह जो है लगभग 65 देशों से भी ज्यादा देशों में इसकी उत्पाद को हम निर्यात भी कर रहे हैं, यानी कि हम सब तो बड़े निर्यातक भी हैं इसके और साल दर साल जो है इसका निर्यात बढ़न भी लाग रहा है। और अपने हरियाणा प्रदेश में तो भाइयों गवार की खेती ज्यादातर दाने खातर ही करी जावे है और गवार का सबसे महत्वपूर्ण जो औद्योगिक उत्पाद है वो इसका गोंद। और उत्पन्न की गई जो कुल गवार है उसका लगभग 90% भाग तो गोंद उत्पादन खातर ही इस्तेमाल करा जावे है और शेष का उपयोग हम कर रहे हैं खाद्य खाने के उद्देश्य से और साथ में जो अपने पशु आहार है उसके रूप में इस्तेमाल करना है। और गवार जो प्रसंस्करण है उसका उत्पादन जो है गवार की चूरी जिसे छिलका या जो उसका अंकुरण का मिश्रण है जो कि प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है वो हमारे मवेशी हैं या जो कुकुट है उनके आहार के रूप में भी इस्तेमाल करा जावे है। बात करें भाइयों उन्नत किस्म की तो गवार की जो उन्नत किस्म है वो है HFG 156 या चारे खातर सब तो बढ़िया किस्म मानी जावे है और बोने के बाद चारे के लिए भाइयों केवल 70 दिन में या तैयार हो जाए। और यह भाइयों बैक्टीरियल ब्लाइट बीमारी की प्रतिरोधी है। इसकी हरे चारे की पैदावार 130 से 140 क्विंटल एक एकड़ के हिसाब से किसान भाई ले सके हैं। इसके अलावा भाइयों और उन्नत किस्म है HS 277। यह किस्म 1974 में विकसित हुई थी और यह बिना शाखाओं वाली सीधी और लंबी बढ़न वाली और देर तक पकन वाली एक किस्म है। यह मिश्रित खेती के लिए भी बहुत बढ़िया मानी जावे है और इसकी जो बीज की पैदावार है वो किसान भाई लगभग 5.5 से 6 क्विंटल एक एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। HG 75 यह जो किस्म है इसमें शाखाओं वाली किस्म है, रोग के प्रति सहनशील है और देर तय पकन वाली किस्म है और इसके बीज का रंग भाइयों क्रीम और आकर्षक हो है। इसके दाने की पैदावार किसान भाई 7-8 क्विंटल एक एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। इसके अलावा HG 365 यह किस्म 1988 में विकसित हुई और यह भाइयों कम शाखाओं वाली और जल्द पकने वाली किस्म है। साथ ही यह 85 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाए। इसका दाना छोटा और सिलेटी रंग का है और इसकी औसत पैदावार किसान भाई 6.5 से 7.5 क्विंटल एक एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। और इस किस्म के बोने के बाद आगामी जो रबी की फसल है वह आसानी से किसान भाई ले पाओगे और अगर राया फसल लेनी है तो इसकी बिजाई भाइयों जून के दूसरे पखवाड़े में कर दें। साथ ही भाइयों एक और उन्नत किस्म है वह है HG 563। ग्वार की इस किस्म ने हरियाणा में काश खातर भाइयों 2004 में इसकी अनुशंसा करी गई थी और यह एक शीघ्र पकड़ आड़ी किस्म है और जमीन के अनुसार यह पकड़ में भाइयों 85 से 100 दिन का समय ले है और इसके पौधे पर फलियां पहली गांठ और दूसरी गांठ तक शुरू हो जाए। इसका दाना चमकदार और HG 365 के मुकाबले मोटा हुआ है और इस किस्म की औसत पैदावार किसान भाई जो है 7-8 क्विंटल एक एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। साथ ही एक और अच्छी किस्म है वो है HG 220। गवार की यह किस्म भाइयों पूरे भारत में काश्त खातर 2010 में अनुमोदित करी गई और इस किस्म की शीघ्र पकड़ वाली यानी कि 90 से लगभग 100 दिन में पकड़ने वाली यह किस्म है और इसके पौधे पर फलियां दूसरी गांठ के रूप में शुरू हो जाए और इसकी फली में दाणों की संख्या आमतौर पर जो है अन्य किस्मों से ज्यादा और दाना भी मोटा हुआ है और इस किस्म की औसत पैदावार किसान भाई 8 से 9 क्विंटल एक एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। HG 870 गवार की इस किस्म ने हरियाणा में जो है 2010 में यह अनुमोदित करी गई और कई सारी शाखाएं कम समय में पकड़ना, दाने की पैदावार 7.5 से 8 क्विंटल एक एकड़ के हिसाब से है। और HG 884 या जो किस्म है भाइयों या गवार की किस्म पूरे भारतवर्ष में काश्त करी जावे है और अनेक शाखाओं वाली यह किस्म है, कम समय में पके है, 90 से लगभग 100 दिन का यह समय ले है और इसके दाने भाइयों मोटे और पैदावार किसान भाई ले सके लगभग 8 क्विंटल एक एकड़ के हिसाब से। इसकी फली में दाना की संख्या जो है सामान्य जो दूसरी किस्म है उससे ज्यादा है और दाना भी जो है इसमें मोटा देखने मिला है। बात करें भाइयों जमीन की तो गवार खातर अच्छे जल निकास वाली रेतीली जो मिट्टी है वो ज्यादा बढ़िया मानी जावे है। इस तरह हल्की मिट्टी में भी इसको उगाया जा सके है, लेकिन कलर से जो सेम वाली जो मिट्टी है उस खातर या किस्म या जो गवार की जो उपज है वो बढ़िया नहीं मानी जाती। साथ ही भाइयों बात करें कटाई की, तो लोबिया तो दो कटाई इसमें ली जा सके हैं, और पहली कटाई भाई बिजाई के 55 दिन के बाद और दूसरी कटाई जो है फसल में फूल आने पर किसान भाई ले सके हैं। और जमीन की तैयारी की बात करें तो भाइयों गवार की जो अच्छी पैदावार लेने खातर जमीन अच्छी तरह से तैयार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए 2-3 जुताई पर्याप्त रहेंगी और बिजाई के समय भाइयों जमीन समतल और नमी जो है उसमें नमी जो है वो पर्याप्त मात्रा में रहनी चाहिए और जो मिट्टी है जो जमीन है वो खरपतवार मुक्त हो। साथ ही बिजाई के समय की बात करें तो भाइयों देर तक पकड़ने वाले जो किस्म है HG75 और FS277 ये हम जुलाई के मध्य में जो है इसकी बुआई कर सके हैं। और इसके अलावा भाइयों जो HG365 HG563 HG220 और HG870 साथ ही HG884 इसकी बिजाई खातर भाइयों जून का जो दूसरा पखवाड़ा है वो समय सबसे बढ़िया रहेगा। अगेती पकड़ने वाली जो किस्म है उसमें HG365 HG563 HG220 और HG870 और HG884 खातर 1 एकड़ में 5-6 किलो बीज की मात्रा, और मध्यम अवधि वाली जो किस्म है उसमें HG75 और FS277 7-8 किलोग्राम जो बीज है वो पर्याप्त मात्रा में रहूंगा। इस बात करें भाइयों प्राकृतिक खेती में कृषि में प्राकृतिक खेती के लाभ की, किसान भाइयों हम सब जाना है कि हमने जो रासायनिक खाद का जो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खेत में, तो जो रासायनिक खादें हैं उन रासायनिक खादों के उपयोग से तो किसान भाइयों का कर्जा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, और साथ ही साथ जो किसान भाई की जो आमदनी है वो भी कम होने जाने लग रही है। साथ ही जो हम रासायनिक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं और इतने महंगे बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे किसान भाई ने कोई बचत नहीं हो पाती। साथ ही जो हमारी मिट्टी है उसकी भौतिक दशा है, उसकी रासायनिक दशा है, वो भी परिवर्तित होने लग रही है। मिट्टी के अंदर जो पानी का स्तर है वो भी गिरने लग रहा है, और साथ ही साथ जो जमीन के नीचे का पानी है वो भी दूषित होने लग रहा है। हमारी मिट्टी भी दूषित होने लग रही है, हमारी हवा पर्यावरण सब प्रदूषित होने लग रहे हैं। तो इन रासायनिक खादों कीटनाशकों की बजाय अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें और प्राकृतिक रूप से हम खेती करेंगे तो उससे हमारी जो मिट्टी की दशा है, उसके भौतिक गुण है, उसमें जो कार्बन की मात्रा है वो भी बढ़ेगी, साथ ही साथ जो हमारी भूमिगत जो पानी है उसका भी जो उसमें प्रदूषित होने लग रहा है वो भी नहीं होगा, और साथ ही जो हर घर तक जो खाने की थाली पहुंच रही है वो थाली भी जो है वो जहर मुक्त होगी। इसलिए हमने जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना होगा और बिना जहर की और बिना कर्ज की हमने खेती करनी होगी। ये तो भाइयों बात करी कृषि में प्राकृतिक खेती के लाभ की। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहा है?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: और भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक, इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब होगा भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम

कार्यक्रम ग्राम संसार सुनिए सारे बाण भाइयों ने एक बार फिर विनोद भाई की मीठी मीठी राम राम। भाइयों आज ग्राम संसार कार्यक्रम में चर्चा करेंगे स्वच्छता स्वास्थ्य और आदर्श समाज पे, और साथ ही भाइयों जानकारी लेंगे बढ़ती उम्र में खान पान और स्वास्थ्य का रखें ध्यान पे। और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे भाइयों एक

0: ये तो सुनी भैया ने रागणी और गायक कलाकार थे सुनील दुजानिया।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और गरीबी, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन सबको प्रभावित करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब लोगों को होता है। गरीबी की वजह से लोग जलवायु के असर से बचने या उभरने में कम सक्षम होते हैं। खासकर महिलाएं और बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। गरीब समुदाय अक्सर कच्चे घरों में रहते हैं, जिनके पास पैसे कम होते हैं और जो भीड़भाड़ वाले इलाकों में बसते हैं, उनके लिए खतरा और भी ज्यादा होता है। वह जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार तो नहीं होते, फिर भी उसका सबसे बड़ा असर उन्हीं पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन भूख और गरीबी मिटाने की कोशिशों को भी धीमी कर देता है। क्या आप जानते हैं 2020 में 9.5% आबादी अत्यधिक गरीबी में जी रही थी। पिछले 20 सालों में पहली बार गरीबी बढ़ी है।
0: और भाइयों, इब करा चर्चा स्वच्छता, स्वास्थ्य और आदर्श समाज पे। भाइयों, स्वच्छता व्यक्तिगत भी हो सका है, पर्यावरण की स्वच्छता भी हो सका है, और साथ ही साथ भाइयों खाद्य स्वच्छता भी जो है हमारे स्वास्थ्य ने प्रभावित करे है। बात करें व्यक्तिगत स्वच्छता की, तो व्यक्तिगत स्वच्छता स्वास्थ्य स्वच्छता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसमें वो सारी प्रथाएं आ जाए जिसमें व्यक्ति अपनी स्वच्छता और साफ सफाई बनाए रखने खातर अपनावे है, जिसमें खासतौर पर नियमित रूप से नहाना है, नियमित रूप से अपने हाथ धोना है, दिन में 2 बार अपने दांतों की सफाई करना है, और साफ जो धुले कपड़े हैं वो पहनना है, और साथ ही अपने नाखूनों को छोटा करके रखना है ताकि उसमें साफ सफाई बनी रहे। संक्रामक रोग के प्रसार न रोकने खातर अच्छी जो व्यक्तिगत स्वच्छता है, साफ सफाई है, वो बहुत जरूरी है। और साबुन और पानी से हाथ धोना, जो कि हमारे हाथों पर कीटाणु हैं उन्हें साफ करने का सबसे प्रभावी तरीका भी है। और जब भी हम भोजन करें तो उससे पहले और भोजन करने के बाद, या शौचालय का प्रयोग करने के बाद, छींकने के बाद, खांसने के बाद, या हम अपने किसी पालतू जानवर या किसी आवारा जानवर ने छूने लग रहे हैं तो उसके बाद भी अपने हाथ जरूर धोएं। अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने खातर भाइयों, या जो अच्छी व्यक्तिगत अगर हम स्वच्छता बनाए रखेंगे तो उससे जो दाद खाज खुजली या जो त्वचा के जो संक्रामक रोग हैं उनको भी रोका जा सके। इसी तरह भाइयों, पर्यावरण स्वच्छता से हमारा अभिप्राय है

0: सकता है।
1: और साथ में हमने ध्यान रखना है कि जो संक्रामक रोग है उनके प्रसार को बढ़ाने वाले जो कारक हैं उन तक हमने बचना है, और वो तभी उसका जो हम अपने आसपास के जो वातावरण अपना पर्यावरण है उसने हम साफ सुथरा रखें, क्योंकि गंदे वातावरण में भाइयों रोगाणु पनप सके हैं और इनके संपर्क माने तो जो है व्यक्ति आसानी से बीमार भी पड़ सके हैं। और सतह को जो है नियमित रूप से कीटाणुनाशक से साफ करें, यानी कि जिस तरह हम जो आसपास की जो सतह जैसे मेज है, कुर्सी है या फिर जो स्लेब है, उन नजी नजी जगह हम ज़्यादा छुए हैं, उन छूने वाली जगह को अच्छी तरह से हमेशा कीटाणुनाशक से साफ करें। भीड़ भाड़ वाली जितनी भी जगह है उन जगह पर जाओ तो मास्क या रुमाल का इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि है ना जो हमने धूम्रपान है उससे बिल्कुल बचना है, और जहां धुआं ज्यादा हो उस जगह पे भी नहीं रुकना है, क्योंकि इससे भी जो है हमारे अंदर जो है फेफड़ों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उससे बढ़ेगी और हमारा जो है स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो ये सभी जो है पर्यावरण स्वच्छता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा भाइयों खाद्य स्वच्छता वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जो खाद्य जनित बीमारी है उससे भी बचाव खातर हमने भोजन को जो है संभालना है, तैयार करना है, उसका भंडारण करना सब इसमें शामिल है। और खाद्य स्वच्छता की जो प्रथा है उसमें भोजन को छूने से पहला और बाद में हाथ को धोना, भोजन को सही तापमान पर रखना, भोजन को सही तापमान पर पकाना, और साथ ही साथ जो परजीवी संक्रमण है उससे भी बचा कर रखना है। और परजीवी संक्रमण तभी ज़्यादा हुआ है जब एक खाद्य पदार्थ के कीटाणु जो है दूसरे खाद्य पदार्थ में चले जाओ हैं, जिससे खाद्य विषाक्तता भी बढ़े है और परजीवी संक्रमण के कारण भाइयों भोजन जो है वो जहरीला हो जाए। और स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने खातर व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण की स्वच्छता और खाद्य स्वच्छता ये सब हमने बरकरार रखनी होगी, तभी हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। अगर हम स्वस्थ होंगे तो हमारा समाज जो होगा वो भी मजबूत बनेगा, और जो हम दिन भर काम कर रहे हैं उससे जो है हमारी काम की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। और ये साफ सफाई हम तभी रख सकें जब हम नियमित रूप से साबुन से हाथ धोएंगे, जब भी खाना खाएं खाना खाने से पहले बाद में या फिर जब हम छींकते हैं तो उस समय जो है हमने हाथ जरूर धोने चाहिए। साथ ही जो अपने आसपास का जो हमने जगह है, कई बार देखा है कि हम अपने घर ने तो साफ सुथरा रखे हैं लेकिन अपने घर का कूड़ा कचरा हम गली में फेंकते हैं या फिर कोई खाली जगह पड़ी है वहाँ इकट्ठा करते हैं, तो उससे हमने अपना घर तो साफ कर लिया लेकिन अपना आस पड़ोस तो हमने गंदा कर दिया। तो इसलिए भाइयों कोशिश करें कि जो सूखा कचरा है वो अलग रखें, गीला कचरे ना हम अलग रखें, और कचरे का जो सही निपटारण भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे भी लगाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, जिस तरह आजकल हम देख भी रहे हैं कि गर्मी का इतना प्रकोप है, तापमान 45 डिग्री के आसपास जा रहा है, तो अगर जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाओगे तो पर्यावरण में ठंडक बनी रहेगी, साथ ही जो बारिश है उसकी संभावना बढ़ेगी, और जो पेड़ पौधे हैं वो पर्यावरण में से जो हवा है वातावरण में तो कार्बन डाइऑक्साइड ना अवशोषित करके हवा में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ावे हैं। तो इस तरह अगर हम पेड़ लगाओगे, पौधे लगाओगे तो उससे भी हम अपने पर्यावरण में स्वच्छ रख पाओगे। साथ ही कोशिश करें कि जो हमारे आसपास का जो खाना है, जो खुली जगह खाना है, कि कई बार देखा रेडियो पर लोग खाए हैं तो उसमें जो है मक्खी बिन बना रही है या फिर वो खुला रखा है उसमें धूल मिट्टी जान लग रही है, तो इस तरह के खुले खाने से भी हमने बचना है। और जो पौष्टिक भोजन है वही हमने अपने आहार में शामिल करना है, जिससे हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी। और जो माइक्रोनाइज फूड है, यानी कि ऐसा खाना जिसमें कोई पोषक तत्व तो है ही नहीं, उस तरह के खाने से हमने बचना है। तो ये तो भाइयों करी चर्चा स्वच्छता, स्वास्थ्य और आदर्श समाज के बारे में।
2: दादी की कहानियां, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
3: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: और भाइयों इवलेवल जानकारी, बढ़ती उम्र में रखे खान पान और स्वास्थ्य का ध्यान, क्योंकि भाइयों जो बढ़ती उम्र है उसमें स्वस्थ रहने के लिए हमने अपने आहार में फाइबर, प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना जरूरी है। साथ ही जो प्रसंस्कृत खान पान है, यानी कि हम प्रोसेस्ड फूड भी कहते हैं, वो खाद्य पदार्थ जैसे चीनी है, नमक है या जो मैदे वाली चीज है, उन नाम अपने खाने से हमें हटाना पड़ेगा। क्योंकि एक तो बढ़ती उम्र है, तो इस बढ़ती उम्र में चीनी या नमक का जो ज़्यादा प्रयोग है वो जहर के समान है। तो ऐसे में हमने एक तो हल्का खाना खाना है, साथ ही हल्का सा व्यायाम भी हमने जरूर करना है, और पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में हमने पीना है। क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ जो है शरीर की जरूरतें भी बदले हैं। जब उम्र 45-50 से ऊपर होनी शुरू हो जाए तो शरीर की जो जरूरत है वो बदलनी शुरू हो जाए। ऐसे में एक तो हमने जो खान पान में हमने काफ़ी बदलाव करने पड़े हैं, और वो बदलाव किस तरह के हैं, जिस तरह तो रंगीन फल और सब्जियां अपने आहार में हम जो गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जी हैं, जामुन है, संतरा है, गाजर है, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा शामिल करें। साथ ही साथ जो साबुत अनाज है वो हमारी पाचन शक्ति ना मजबूत करे हैं, जिसमें दलिया हो गया, बाजरा हो गया, रागी होगी, कुटकी होगी, तो इस तरह के जो मोटे अनाज हैं वो हम अपने खाने में शामिल करें, तो उससे जो है हमारा जो पाचन शक्ति है वो मजबूत रहेगी और शरीर में ऊर्जा भी मिलेगी। साथ ही प्रोटीन जो है बढ़ती उम्र में मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और प्रोटीन हमने मिला है दाल या जो बीज है या बादाम है, इस तरह की चीज़ जो अगर हम खाओगे तो उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहेगी। और साथ ही साथ जब उम्र बढ़े तो उसमें एक और समस्या देखी जाओ है कि घुटनों में कटकट की आवाज़ आनी शुरू हो गई, कमर दर्द शुरू हो गया और कंधे में भी कटकट की आवाज़ आने लगी, यानी कि हड्डी कमज़ोर होने लगी। तो ऐसे में भाइयों हमने कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा भी अपने खाने में बढ़ानी पड़े है, ताकि जो है हमारी हड्डियाँ मजबूत रहें। और साथ ही जो कैल्शियम का जो सही स्रोत है वो है दूध, दही और पनीर का जो हम सेवन ज़्यादा करें। इसके अलावा भाइयों अतिरिक्त जो चीनी नमक है, जिस तरह मिठाई होगी, कोल्ड ड्रिंक होगी या जो नमक वाली चिप्स है, चीज़ है जैसे चिप्स होगी, पापड़ है, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ है, इन तय हमने बचना है। क्योंकि इनका अगर हम प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो ब्लड प्रेशर और शुगर जो है वो नियंत्रित नहीं रह पाओगा और बुढ़ापे में ये चीज़ ज़्यादा तंग करें। साथ ही जो अस्वस्थ वसा है, जिसमें हम सैचुरेटेड फैट को हैं तो और जो ट्रांस फैट को हैं, ऐसे जो खाद्य पदार्थ हैं उन तक हमें बचना है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में हमने पानी का जो है सेवन करना है, और जो इस तरह इस समय जो गर्मी का मौसम चल रहा है तो इस गर्मी के मौसम में तो भाइयों कोशिश करें कि नारियल पानी है, छाछ है या फिर जो है पानी के अंदर खांड मिलाकर हम पीवे तो उसमें जो है शरीर में ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। साथ ही साथ हर रोज जो है 10 मिनट जरूर सैर करें, हल्का सा योग प्राणायाम जरूर करें और उसमें अपनी दिनचर्या का हिस्सा भी बनावें, और समय समय पर जो है अपने स्वास्थ्य की जांच भी जरूर करवाएं, और इससे हमें पता लगता रहेगा कि हमारे शरीर में किसी तरह कोई कमी तो नहीं आ गई है, और उस कमी का हमने निवारण करना है डॉक्टर से सलाह लेकर। तो ये तो करी भाइयों चर्चा बढ़ती उम्र में रखे अपने खान पान और अपने स्वास्थ्य का ध्यान पे, और एक करवाऊं भाइयों का मनोरंजन, सुना एक फिल्मी लोकगीत।

विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह

और ये तो सुना भाइयों ने, फिल्मी लोकगीत और फिल्म थी चंद्रावर। और इसी लोकगीत के साथ भाइयों आज के ग्राम संसार कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों,

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार FM बैंड 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जय जवान।

श्रोताओं, कार्यक्रम जय जवान में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। और कार्यक्रम जय जवान में हम आपके मनोरंजन के लिए लेकर आए हैं प्यारे प्यारे गीत। तो आइए शुरुआत करते हैं इस गीत से।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय जवान आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आइए कार्यक्रम जय जवान में हम आपको सुनाते हैं ये अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय जवान FM बैंड 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। दोस्तों, कार्यक्रम गुलदस्ता में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। और आइए कार्यक्रम गुलदस्ता की करते हैं शुरुआत राहत फतेह अली खां के गाए इस गीत के साथ।

0: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
3: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता FM बैंड 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आप सभी श्रोताओं को महक का प्यार भरा नमस्कार।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
2: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्रों से FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। और दोस्तों, कार्यक्रम में गीत तो अभी आपने संदेशों से पहले सुना, और आइए क्यों ना कुछ बात कर ली जाए। तो दोस्तों, देखा जाए तो आजकल के समय में जो गर्मी है वो बहुत बढ़ गई है ना। और गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप, लू और बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ लेकर आता है। और भाई, ऐसे में हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है ताकि हम स्वस्थ रह सके, सुरक्षित रह सके, हमारा परिवार सुरक्षित रह सके, और जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी सही स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। तो दोस्तों, ऐसे में जब भी आप किसी काम के लिए घर से निकलते हैं तो ऐसे में हमें पानी की बोतल साथ ज़रूर रखनी चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, और थोड़ी थोड़ी देर में पानी भी पीते रहना चाहिए। और गर्मी के मौसम में हमें बासी या खुले में रखा कोई भी खाना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में भोजन जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसी के साथ साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कहीं जा रहे हैं तो अगर हम उस वाहन को, अगर चार पहिया वाहन है और उसे हम धूप में खड़ा कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों को, बुज़ुर्गों को या पालतू जानवर को वाहन में अकेला ना छोड़ें। हमारे आसपास जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे कि कोई मजदूर हैं, डिलीवरी कर्मी हैं या राहगीर हैं, अगर हम उन्हें पानी उपलब्ध करवा पाएँ तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें पानी उपलब्ध करवाएं, और हमारे घर के आसपास की स्वच्छता को बनाए रखें, पानी जमा ना होने दें ताकि वहां मच्छरों का प्रकोप ना बढ़े, और अपने आसपास के पेड़ पौधों का भी ध्यान रखें। अधिक से अधिक पेड़ हम लगा सकते हैं, क्योंकि पेड़ जो है वो हमारे आसपास, मतलब हमारे जो तापमान है उसे कम करने में मदद करते हैं, और जो हमारे आसपास पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनके लिए हम थोड़ी थोड़ी दाना पानी की व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। तो हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के खुद का, अपने परिवार का, अपने आसपास के वातावरण का, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रख सकते हैं।

अभी आपने सुना कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा। कार्यक्रम निर्देशन विनेश्री का, तकनीकी सहयोग राजेंद्र कुमार, स्वर है अनुराधा का और प्रस्तुति महेंद्र मोहन शर्मा की।

0: आकाशवाणी कुरुक्षेत्र आपको भारत की एक दिलचस्प यात्रा पर लेके जा रहा है। हमारा भारत एक ऐसी धरती है जहाँ कई भाषाएं, धर्म, रीति रिवाज और परंपराएं एक स्वर में मौजूद हैं। भारत एक देश ही नहीं बल्कि सभ्यताओं की एक जीवंत तस्वीर है और भारत की विभिन्नता में एकता इस तस्वीर में अपने शानदार रंग भरती है। भारत का हर कोना एक अलग कहानी बताता है, फिर भी सारी कहानियाँ अनेकता में एकता के सांझे धागे में पिरोई हैं। आओ विलक्षणता की इस सांझी विरासत में गोता लगाएं और आनंद मनाएं जो हमें भारतीय होने की पहचान दिलाता है। हमारे इस विशेष कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा के तहत
1: तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल।

भारत के पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है। यह बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा हुआ है। यह राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के बंगाल क्षेत्र का भाग है और इसके पूर्वी सीमा बांग्लादेश से लगती है, जबकि उत्तर में यह नेपाल और भूटान से सीमाबद्ध है। राज्य की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के भूगोल की बात करें तो यह राज्य भारत के पूर्वी भाग में 88,853 वर्ग किलोमीटर के भूखंड पर फैला हुआ है। इसके उत्तर में सिक्किम, उत्तर पूर्व में असम, इसके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तथा उड़ीसा, पश्चिम में बिहार तथा झारखंड है। गंगा की मुख्य धारा यहाँ कई शाखाओं में बढ़ जाती है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर भागीरथी तथा हुगली नामों से बहती है। उत्तरी पर्वतीय भाग में तीस्ता, महानंदा, तोरसा जैसी नदियाँ बहती हैं। पश्चिमी पठारी भाग में दामोदर, अजय, कंसाबाती प्रमुख

इतिहास की बात करें तो बंगाल प्राचीन काल में बंगाल शैव शाक और बौद्ध संप्रदाय का गढ़ रहा। यहाँ पर रामायण और महाभारत काल के राजाओं का राज रहा। इसके बहुत समय बाद यहाँ पर पाल और सेन राजाओं के राज्य के बाद मुस्लिम शासकों ने शासन किया। फिर बंगाल में नवाबों का शासन चला, जिसमें अंतिम शासक सिराजुद्दौला था, जिसने अंग्रेजों को भारत में आने दिया। 1757 में पलासी के युद्ध के बाद बंगाल में अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल की संस्कृति की बात करें तो पश्चिम बंगाल ने सदा ही साहित्य, कला, संगीत और

रंगमंच को संरक्षण दिया है। हिंदू धर्म के एक संघन भावनात्मक स्वरूप चैतन्य आंदोलन को मध्यकालीन संत चैतन्य ने प्रेरित किया, जिसने 19वीं सदी के आरंभ तक बांग्ला कविता के परवर्ती विकास को आकार दिया। इसके बाद आधुनिक युग में अन्य साहित्यकारों के साथ नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविंद्रनाथ ठाकुर हुए। संतों की बात करें तो जिनमें चैतन्य महाप्रभु, स्वामी प्रणवानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, कृतिवास, बाउल संत, प्रभु जगत बंधु का नाम प्रमुखता से लिया जाता है।

पश्चिम बंगाल के लोक संगीत की बात करें, यह बहुत समृद्ध और विविध है। राज्य के प्रमुख लोक संगीत में बाउल संगीत की बात करें, तो ये बंगाल का सबसे प्रसिद्ध और आध्यात्मिक लोक संगीत है। भटियाली, यह बंगाल के मल्लाहों और नाविकों द्वारा नदियों में नाव चलाते समय गाए जाने वाला अत्यंत मधुर लोक संगीत है। भवैया, यह उत्तरी बंगाल के कूच बिहार और जलपाईगुड़ी क्षेत्रों के राजवंशी समुदायों का एक प्रसिद्ध लोक संगीत है। गंभीरा, यह मुख्य रूप से मालदा जिले में चैत्र संक्रांति के दौरान गाया जाने वाला एक पारंपरिक संगीत है। कीर्तन, कीर्तन पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख लोक संगीत और नृत्य रूप है।

पश्चिम बंगाल के लोक नृत्यों की बात करें तो रायवेशी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। काठी नृत्य में कलाकार ऊपर की ओर करके दोनों हाथों में एक छोटी सी डंडी लेकर एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी पर ताल के साथ मारते हुए घूम घूम कर नृत्य करते हैं। ढाल नृत्य, यह वीरता को प्रदर्शित करने वाला लोक नृत्य है। बाउल नृत्य, बाउल नृत्य में गीतों के साथ एक तारा बजाकर नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। कीर्तन नृत्य, बंगाल में ये सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। कीर्तन में लीलाओं का वर्णन होता

पश्चिम बंगाल अपनी समृद्ध संस्कृति, कला और मेलों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जैसे दुर्गा पूजा, पोइला बोशा, काली पूजा और दिवाली, डोल पूर्णिमा, रथ यात्रा, सरस्वती पूजा, क्रिसमस आदि। प्रसिद्ध मेलों की बात करें तो गंगा सागर मेला, अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला और पौष मेला। गंगा सागर मेला मकर संक्रांति पर सागर द्वीप में गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर लाखों श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। कुंभ मेले के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, यह हर साल जनवरी में आयोजित होने वाला, दर्शकों की संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है। पौष मेले की बात करें तो शांति निकेतन में दिसंबर के महीने में आयोजित होता है, जहां बाउल संगीत, हस्तशिल्प और बंगाली संस्कृति की झलक मिलती है। पोइला बोशाख, यह बंगाली कैलेंडर का पहला दिन यानी बंगाली नव वर्ष है। काली पूजा और दिवाली, दुर्गा पूजा के तुरंत बाद दिवाली के दिन काली पूजा बड़े स्तर पर मनाई जाती है। डोल पूर्णिमा, यह बंगाल का रंगोत्सव है। बंगाल के महेश हुगली में होने वाली रथ यात्रा सबसे पुरानी और प्रसिद्ध है। दुर्गा पूजा, यह पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा और भव्य त्योहार है। इसे यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा भी प्राप्त है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में बुराई के प्रतीक महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का जश्न मनाया जाता है। दुर्गा पूजा की शुरुआत अश्विन महीने की अमावस्या यानी महालया से होती है। मुख्य उत्सव महाषष्ठी से शुरू होकर विजयदशमी तक चलता है। दुर्गा पूजा के अवसर पर हजारों की संख्या में खूबसूरत और अलग अलग विषयों पर आधारित पंडाल बनाए जाते हैं। दशमी के दिन सिंदूर खेला विवाहित महिलाओं द्वारा सिंदूर की होली के बाद देवी की मूर्तियों को गंगा या जल स्रोतों में विसर्जित कर दिया जाता है।

खेती की बात करें तो पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है और यहाँ की मुख्य खाद्य फसल चावल है। इसके अलावा जूट उत्पादन में यह राज्य देश में अग्रणी है। मुख्य फसलों की बात करें तो राज्य के अधिकांश हिस्से में धान की खेती होती है। जूट यहाँ की सबसे प्रमुख नकदी फसल है। इसके अलावा गेहूं और आलू की खेती प्रमुखता से की जाती है। मक्का, दालें और तिलहन की बात करें तो सरसों और तिल भी उगाए जाते हैं। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी क्षेत्र अपनी उच्च गुणवत्ता वाली चाय के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में संतरा, अनानास, इलायची और अदरक भी पैदा

सिनेमा जगत में बंगाल के योगदान की बात करें तो सत्यजीत राय, एसडी बर्मन, आरडी बर्मन, मिथुन चक्रवर्ती, प्रसन्नजीत चटर्जी, शर्मिला टैगोर, काजोल, रानी मुखर्जी। और अगर गायक कलाकारों की बात करें तो मन्ना डे, गीता दत्त, हेमंत कुमार, बप्पी

पश्चिम बंगाल का खान पान अपने अद्वितीय स्वाद, मसालों और शाकाहारी व मांसाहारी व्यंजनों के समृद्ध मिश्रण के लिए जाना जाता है। यहाँ के प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध व्यंजनों में माछेर झोल, कोशा मांगशो, शुक्तो, पोश्तो प्रसिद्ध हैं। मिठाइयों की बात करें तो संदेश, रसगुल्ला, मिष्टी दोई प्रसिद्ध हैं। संदेश ताजे पनीर यानी छेना और चीनी से बनी बंगाल की सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक और हल्की मिठाई है। रसगुल्ला स्पंजी छेने की गोलियों को चाशनी में डुबोकर बनाए जाने वाली विश्व प्रसिद्ध मिठाई है। मिष्टी दोई यह मीठी दही है। स्ट्रीट फूड की बात करें तो काठी रोल, मुगलई पराठा और झाल मुड़ी प्रसिद्ध हैं। झाल मुड़ी मुरमुरे, सरसों के तेल, कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और मसालों से बनाए जाने वाला चटपटा स्नैक।

पश्चिम बंगाल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक स्मारकों और विविध परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। मुख्य पर्यटन स्थलों में कोलकाता यानी सिटी ऑफ जॉय प्रसिद्ध है। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज, दक्षिणेश्वर काली मंदिर घूमने की बहुत अच्छी जगह है। दार्जिलिंग यानी पहाड़ों की रानी, हिमालय की गोद में बसा दार्जिलिंग अपने चाय के बागानों और ठंडे मौसम के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर और खारे पानी के मगरमच्छ और विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध यह स्थान शांति और कला का प्रतीक है।

0: वृंदावन की हरी वादियाँ और हुगली की बहती धार, दुर्गा पूजा की उमंग, रसगुल्ला और मिष्टी दोई का है अनोखा स्वाद अपार। पश्चिम बंगाल है साहित्य और संस्कृति का अनुपम और अद्भुत संसार।
1: ए बंगलार नीरे।
0: प्रस्तुति विनेश्री, तकनीकी सहयोग राजेंद्र कुमार, स्वर अनुराधा, प्रस्तुतकर्ता महेंद्र मोहन शर्मा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा, निर्देशन विनेश्री, तकनीकी सहयोग राजेंद्र कुमार, स्वर था अनुराधा का और प्रस्तुति थी महेंद्र मोहन शर्मा की। FM बैंड 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, 9 बजे सुनिएगा अंग्रेजी समाचार जिनका प्रसारण आकाशवाणी

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूँ मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
2: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: विकसित भारत जीराम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानाऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. US Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States approach towards Indo-Pacific region. Defence Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defence manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Centre asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defence infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China. And Indian grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh clinch silver medals at Asian Under 23 Wrestling Championships in Vietnam. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Mr. Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Rubio shared the US perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. He requested Secretary Rubio to convey his warm greetings to US President Donald Trump and said he looked forward to their continued exchanges. Secretary Rubio is on a four-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. U.S. Secretary of State Marco Rubio today said that India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific. Inaugurating the U.S. Embassy Support Annex building in New Delhi, Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for Pax Silica.
3: Expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly and a secure consular system is vital to solidifying this important relationship.
2: Secretary Rubio called Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump as two very serious leaders who are focused on the long term.
3: Anchoring that is the relationship between the President and the Prime Minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the President had a chance to visit here, and it has carried over into this second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term, but on the long term, and so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen this partnership deepen.
2: Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. The Prime Minister highlighted the world is eager to be a part of India's growth journey. He said the country is also partnering with the various countries of the world aimed at providing opportunities, employment and global exposure to the youth of the nation.
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है।

श्रोता गीत आपने सुना फिल्म गुड न्यूज से, आवाजें बादशाह हैडी संधू, लिसा मिश्रा और असीस कौर की थी। गीत के बोल तनिष्क बागची के और संगीत भी इनका ही था।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गावा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। एक अभिनेत्री जो अपने अभिनय की शुरुआत स्कूल और कॉलेज के थिएटर से करती है, धीरे धीरे टीवी सीरियल की ओर बढ़ती है, बॉलीवुड में आकर अपनी एक्टिंग के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाती है और आज OTT की क्वीन कहलाती है, वो है शेफाली।

बॉलीवुड की ये खूबसूरत अदाकारा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 22 मई 1973 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी शेफाली बचपन से ही अभिनय करना चाहती थी। वे एक मॉडल, अभिनेत्री और चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। उनके पिता का नाम सुधाकर शेट्टी और माता का नाम शोभा शेट्टी है। वे अपने माता पिता की इकलौती लाडली संतान हैं और उनका पालन पोषण एक गैर फिल्मी पृष्ठभूमि में हुआ। साल 2000 में उन्होंने निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह से शादी की, जिनके साथ उनके दो बेटे आर्यमन और मौर्य हैं।

0: दीवाना हो।
1: शेफाली शाह का अभिनय करियर गुजराती मंच से शुरू हुआ। बचपन से ही उन्हें कला की ओर बहुत झुकाव था, जिसमें गायन और नृत्य शामिल थे। उन्होंने भरतनाट्यम में प्रशिक्षण लिया। उनकी अभिनय यात्रा 10 वर्ष की आयु में गुजराती मंच पर किए नाटक द ओमेन से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने डेमियन थॉर्न पर आधारित चरित्र को बखूबी निभाया। इंटर कॉलेजिएट नाटकों में काम करने

शेफाली शाह ने थिएटर करने के बाद साल 1993 में टीवी की दुनिया में कदम रखा। बनेगी अपनी बात सीरियल से छोटे पर्दे पर उन्होंने डेब्यू किया, फिर आरोहण, हसरतें, पतझड़, कभी कभी, सी हॉक्स, राहें और रामायण जैसे सीरियलों में अभिनय कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शेफाली शाह कमाल की एक्ट्रेस, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज उनके नाम 25 से ज्यादा फिल्में हैं और इन सभी फिल्मों में उनका काम बोलता है। उनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत पर बात की जाए तो 1995 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से उन्होंने डेब्यू किया। इस फिल्म में उनकी भूमिका बहुत छोटी थी।

1998 में रामगोपाल वर्मा की ही एक फिल्म सत्या में शेफाली ने भीकू महात्रे की पत्नी प्यारी महात्रे की भूमिका निभाई, जो मनोज बाजपेयी द्वारा निभाई गई एक माफिया सरगना की पत्नी थी। इस फिल्म में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का स्क्रीन अवार्ड जीता। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला।

सत्या में अपने शानदार काम के बावजूद शेफाली शाह को उतनी फिल्मों के प्रस्ताव नहीं मिले जितनी उन्हें उम्मीद थी। विपुल शाह द्वारा बनाई गई गुजराती फिल्म दरिया छोरू में कास्ट किया गया। विपुल शाह की इस फिल्म के लिए शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 2000 में निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा की फिल्म आई मोहब्बतें। इस रोमांटिक फिल्म में शेफाली को एक

इसके ठीक एक साल बाद यानी 2001 में उन्हें मीरा नायर की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मानसून वेडिंग में लिया गया। इस फिल्म में शेफाली ने रिया वर्मा की भूमिका निभाई। ये फिल्म अपने समय से आगे की फिल्म मानी गई। रिया वर्मा की भूमिका में शेफाली वास्तविक पात्रों में से एक थी। उन्होंने बचपन में बहुत दर्द का अनुभव किया था, जिसके कारण रिया वर्मा रिश्ता नहीं बना सकी और अविवाहित रहने का फैसला करती हैं। एक ऐसा किरदार शेफाली का था जो सबसे जटिल था। इसे शेफाली ने बखूबी निभाया। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली और कई

2005 में विपुल शाह के निर्देशन में शेफाली ने पारिवारिक मेलोड्रामा वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में काम किया। इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन की पत्नी और अक्षय कुमार की माँ के रोल में नजर आती हैं। सुमित्रा ठाकुर के रूप में उनकी भूमिका एक सख्त माँ की थी, जो अपने पति को अपने गैर जिम्मेदार बेटे को अनुशासित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए दूसरी बार फिल्म फेयर का नामांकन मिला। अभिनय के वक्त वो अमिताभ बच्चन से आधी उम्र की और अक्षय कुमार से लगभग 4 साल छोटी थी, लेकिन अपने अभिनय के दमखम से उन्होंने भूमिका में जान डाल दी।

निर्देशक फिरोज अब्बास खान की फिल्म गांधी माय फादर का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। 2007 में आई इस फिल्म में दर्शन जरीवाला और अक्षय खन्ना के साथ कस्तूरबा की भूमिका में शेफाली शाह नजर आती हैं। ये फिल्म महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की जीवनी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली ने कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई, जो अपने पति महात्मा गांधी और बेटे हरिलाल के बीच आजीवन संघर्ष से त्रस्त हैं। इस फिल्म में उनकी भूमिका ज्यादा आंतरिक है, क्योंकि वो चुपचाप सब कुछ देखती हैं कि हरिलाल क्या कर रहा है। उन्होंने अपने दो अहम दृश्यों में बेहतरीन काम किया, जिसमें वे गांधी पर हरिलाल को छात्रवृत्ति न देने के लिए भड़कती हैं, और जहां वे धर्म परिवर्तन के बाद हरिलाल से भिड़ जाती हैं। कस्तूरबा के रूप में उनका अभिनय शानदार नजर आता है। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और 2008 में जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।

2007 में ही फिल्म द लास्ट लियर में शेफाली ने अमिताभ बच्चन के साथ परेशान और चिड़चिड़ी स्वभाव वाली और लिव इन पार्टनर की भूमिका निभाई है। ये एक ऐसी भूमिका थी जिसे वे अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिका मानती हैं। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। फिल्म को सराहना के साथ ही 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नाम दिया गया और शेफाली शाह ने सहायक अभिनेत्री का खिताब भी जीता। इस फिल्म के निर्देशक थे ऋतुपर्णो घोष।

सुभाष घई की क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शेफाली ने रीमा माथुर की भूमिका निभाई। 2008 में आई इस फिल्म में शेफाली एक बंगाली कार्यकर्ता और एक उर्दू प्रोफेसर अनिल कपूर की पत्नी के अहम रोल में नजर आती।

2011 में उन्होंने विपुल शाह के प्रोडक्शन में कुछ लव जैसा फिल्म में एक युवा गृहिणी की भूमिका निभाई जो जेल से भाग रहे एक अपराधी राहुल बोस के साथ एक रोमांटिक दिन बिताती है। कहते हैं अपने इस रोल को समझने के लिए शेफाली ने ठाणे जेल का दौरा भी किया और अपने चरित्र को समझने के लिए कैदियों से बात भी की।

साल की अनुपस्थिति के बाद शेफाली शाह ने मोनाली ठाकुर के साथ नागेश कुकनूर की सामाजिक समस्या पर बनी फिल्म लक्ष्मी में काम किया। इस फिल्म में शेफाली शाह ने एक वैश्यालय की मालकिन ज्योति की भूमिका अदा की है। 2014 में आई ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म थी। दिल धड़कने दो, जी हाँ, 2015 में निर्देशिका जोया अख्तर की ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई। इस फिल्म में शेफाली अनिल कपूर की पत्नी के रोल में नजर आई। फिल्म के अन्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह हैं। इस फिल्म में उनके प्रभावी अभिनय के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर नामांकन उन्हें मिला।

करण मल्होत्रा की अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा वॉरियर के रीमेक में उन्हें एक छोटी सी सहायक भूमिका मिली। इस फिल्म में उनके चरित्र मारिया फर्नांडिस को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने व्याभिचारी पति के विवाह के बाद हुए अवैध बच्चे को स्वीकार करती है। शेफाली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने किरदार में एक ऐसी सादगी लाती हैं जो मुख्य धारा के सिनेमा में शायद ही कभी देखी जाती है। फिल्म जूस नीरज घायवान द्वारा 2017 में आई एक ऐसी ही फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली की निगाहें शब्दों से कहीं अधिक बयां करती है और उनका अभिनय लाजवाब नजर आता है।

वंस अगेन रोमांटिक फिल्म का जिक्र भी यहाँ करना बहुत जरूरी है। 2018 में आई इस फिल्म को कमल सेठी ने लिखा और निर्देशित किया। शेफाली शाह और नीरज का भी अभिनीत ये फिल्म दो मध्यम वर्गीय आयु वर्ग के लोगों की कहानी है। इस फिल्म में काम करने के बाद शेफाली ने कहा कि वो लंबे समय से इस तरह की फिल्म का इंतजार कर रही थी। शेफाली इन सभी फिल्मों के अलावा ब्रदर्स, द जंगल बुक, कमांडो 2 और डॉक्टर जी जैसी फिल्मों के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं।

सैफ अली शाह ने इन सभी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया हो, लेकिन ये स्टारडम तब और बढ़ा जब उन्होंने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा। जी हाँ, सैफ अली शाह ने साल 2019 में आई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम से अपनी प्रतिभा की एक अलग ही मिसाल पेश की। 2023 में उन्हें दिल्ली क्राइम में उनके अभिनय के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस सीरीज में उनकी प्रतिभा जो दर्शकों के सामने आई उसे देखकर हर कोई अवाक रह गया। इस वेब शो में सैफ अली ने डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी का किरदार निभाया, जिन्हें दिल्ली में एक क्रूर सामूहिक बलात्कार की जाँच करने का काम सौंपा जाता है।

ब्लैक कॉमेडी डार्लिंग्स में शेफाली और आलिया भट्ट माँ और बेटी के रूप में अभिनय करती हैं। इस फिल्म को जसमीत के रीन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है। ये उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है जिसकी पटकथा परवेज शेख ने लिखी। फिल्म में विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। इस फिल्म को कई अवार्ड्स मिले। शेफाली ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब जीता।

2022 में आई ह्यूमन में शेफाली ने डॉक्टर गौरीनाथ की भूमिका निभाई। विपुल शाह द्वारा निर्देशित ये शो दवा कंपनियों और बड़े निजी अस्पतालों के बीच साठगांठ की पड़ताल करता है। वहीं सोशल थ्रिलर फिल्म जलसा में उन्होंने विद्या बालन के साथ अभिनय किया। वे इसमें रुखसाना नाम की महिला का किरदार निभाती नजर आती हैं, जिसकी बेटी एक हिट एंड रन दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इस फिल्म के लिए उन्हें मेलबर्न के वार्षिक भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला।

अविनाश अरुण द्वारा सहलिखित और निर्देशित थ्री ऑफ अस 2023 की फिल्म है। इसमें शेफाली ने शैलजा देसाई की भूमिका निभाई है, जिसे डिमेंशिया है और वो अपने बचपन को याद करने के लिए यात्रा पर निकलती हैं और अपने दर्दनाक अतीत का सामना करती हैं। स्वानंद किरकिरे इस फिल्म में उनके पति और जयदीप अहलावत बचपन के दोस्त की भूमिका में हैं। इससे पहले 2020 में शेफाली शाह ने दो स्व अभिनीत कोविड-19 आधारित लघु फिल्मों समडे और हैप्पी बर्थडे मम्मी जी में लेखन और निर्देशन भी किया। 2025 में निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म हिसाब, इस फिल्म में शेफाली शाह, जयदीप अहलावत और अभिषेक सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

0: शेफाली शाह को अपने बेजोड़ अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार शामिल हैं। सेट पर सबसे ज्यादा खुश रहने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री शेफाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जो भूमिकाएं निभाती है वे उस फिल्म का मुख्य किरदार होती हैं और वो अपनी भूमिकाओं में खामोशी को ढूंढती हैं। शेफाली अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वास्तव में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगी और फिल्मों में यूं काम करूंगी। लंबे वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं पूरी तरह से अभिनय करूंगी, ये बस होता गया और जो भी किरदार मैंने निभाए वो बहुत मजबूत किरदार बनकर उभरे हैं। तो ये था अभिनेत्री शेफाली शाह पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। आलेख, शोध और स्वर मंदाकिनी जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चांदनी रातें।

कार्यक्रम चांदनी रातें में आप सभी श्रोताओं को महका प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें में हम अपने श्रोताओं की को सुनवाते हैं उनके फरमाइशी गीत। तो आइए देखते हैं जो हमें फरमाइश मिली है वो किन श्रोता से मिली है। तो हमारे फरमाइश करता हैं, हमारे श्रोता हैं जलालाबाद शामली से, जलालाबाद शामली उत्तर प्रदेश से, रशीद मंसूरी, अयान मंसूरी, सयान मंसूरी। और हमारे अगले श्रोता हैं कार्यक्रम चांदनी रातें में बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दिशा कुश मुणत। हमें फरमाइश भेजी है, आप हैं सनावद से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना। हमारे अगले फरमाइश करता हैं, आप हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान। और अगली जो फरमाइश हमें मिली है, आप हैं गांव जगूड़ी जिला यमुनानगर से रणधीर भांगड़, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम, वीरेन। हमारे अगले फरमाइश करता हैं, आप हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासन हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। नागल से आप हैं इंदराज, हार्दिक, पार्थ, शकुंतला देवी। मुंगी पैठन महाराष्ट्र से आप हैं बाबा साहब कंगणकर, साखरबाई कंगणकर, परमेश्वर, रोहिणी, श्रावणी, ईश्वरी और कंगणकर परिवार। और अगली जो हमें फरमाइश भेजी है, हमारे फरमाइश करता हैं, आप हैं पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा। मधुबनी बिहार से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद सबीर परवाना, मोहम्मद साजिद अली, मोहम्मद जाहिद अली, मोहम्मद शाहिद अली। अगले फरमाइश करता हैं, आप हैं रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। सदर बाजार कुरावली से आप हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा। रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से आप हैं प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के। पटेल नगर मलोड से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया और गुड्डू। गांव खोखरा वाली से आप हैं विनोद बारसा, विशाल बारसा, विकास, रोशनी और शगुन। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। कुमार हीड़ा सहारनपुर से हमें फरमाइश मिली है, आप हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम, अदीब हसन। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से आप हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र श्री शाह। मलोट पंजाब से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरव और सायना और निवान। हमें अगली फरमाइश मिली है, आप हैं तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा आजमीन गुड़िया। क्वाथ बिहार नगर निगम वार्ड नंबर 28 नास मंजिल मैसोल सीतामढ़ी से आप हैं अक्रम हुसैन प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। क्वाथ बिहार से आप हैं शेख जफर हसन, नरगिस जफर।

और अगले फरमाइश करता है आप हैं खुशी रेडियो श्रोता संघ फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराज से नासिर शेख नाजिया नासिर साजिद शाहिद शेख गोविंदपुर अहमदनगर से आप हैं जुनेद मुजाफर मुजावर सबीहा मुजावर मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर अनारकली बाजार जगराओ से सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गाव्या मल्होत्रा भाई सुच्चा सिंह पाठक विनोद पुरी और जयपाल यादव और अगली जो फरमाइश हमें भेजी है आप हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा पारस मणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नौखेलाल वर्मा ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से आप हैं सिद्धार्थ गोंडाने अर्चना ताई गोंडाने हीरामन शेंडे प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जनकपुरी सहारनपुर से आप हैं जॉन डिकैस्ट्रो रोजी डिकैस्ट्रो पॉल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो नलेश्वर महाराष्ट्र क्षमा कीजिए नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से आप हैं पी एस नवहानकर निर्मला नवहानकर विशाल नवहानकर और मलकापुर से आप हैं नारायण इंगले सोपान ताइड़े और आशीष मुहेरकर टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर प्रमिला आसमा दीपक और अनुश्री श्याम कुंवर और आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है ये गीत और ये गीत है फिल्म जीने की राह से

दोस्तों, ये गीत आपने सुना फिल्म जीने की राह से। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और आइए देखते हैं कार्यक्रम में अगली जो फरमाइश आई है वो हमें कहाँ से मिली है। आप हैं मजनू का टीला से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से आप हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। हमारे अगले श्रोता हैं, आप हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। अगले फरमाइश करता हैं, आप हैं डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। अगले फरमाइश करता है, आप हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तनवी बोट और अंकित कांगड़ा। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। अगली फरमाइश हमें मिली है, आप हैं गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से आप हैं श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना देशमुख। कृष्णा पार्क दिल्ली से आप हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से आप हैं पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबरॉय। सहारनपुर से आप हैं आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग। और अगली जो हमें फरमाइश मिली है, आप हैं फरमाइश करता आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल। दमथा ग्राम सुखरी कला से आप हैं अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। हमारे अगले फरमाइश करता है, आप हैं दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी। गांव हीरा वाली फजिलका पंजाब से श्रोता है सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। अगली फरमाइश करता है, आप हैं सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। सूर्यनगर सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से हमारे श्रोता हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी। और अगली जो फरमाइश हमें मिली है, आप हैं ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा बेबी आराध्या साहू। धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। और अगली जो हमें फरमाइश मिली है, आप हैं शाहजी नगर दिगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से आप हैं विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमापुरी, पालीपुरी, सुनील पाठक, वीकेपुरी और विनोदपुरी। और अगले जो हमारे फरमाइश करता है, आप हैं गन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली, मुजफ्फर अली। और इसी के साथ अगली जो फरमाइश मिली है, आप हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना। और सुदामा नगर खंडवा से फरमाइश करता है लक्ष्मी नंदिनी रोहित रीत।

सो लिया। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से आप हैं, राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी, तानिया नारंग। वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। मलियान सरधना मेरठ से आप हैं, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जिव्यम जैन, दिग्दर्शन भाई। और अगली जो हमें फरमाइश मिली है, आप हैं गांव टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबिका वामिका और वाणी थांदी। मसैल वाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से हमें फरमाइश मिली है, आप हैं शत्रुघ्न थाड़े, वकील वाल्मीक धाड़े, नीनाजी धाड़े और स्वप्निल धाड़े। और हमारे अगले फरमाइश करते हैं, आप हैं कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। और हमें फरमाइश मिली, आप हैं जय जिनेन्द्र श्रोता संघ प्रभनी महाराज से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई और प्रतेश संघई। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बाता, नीलम बाता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका हार्दिक और वंश पाता। जलालाबाद वेस्ट से आप हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। और हमारे अगले फरमाइश करते हैं, आप हैं वाराणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान, इंदुरकर, तेजस्विनी चौहान, अंकित, अनिकेत चौहान। और आपने सुनना चाहा है मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से ये गीत, और ये गीत है लता मंगेशकर की आवाज़ में।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चांदनी रातें आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आइए कार्यक्रम में जो देखते हैं कि अगली फरमाइश हमें मिली है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। आप हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। और अगले हमारे फरमाइशकर्ता हैं आप हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। और अगले हमारे फरमाइशकर्ता हैं आप हैं जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोकचंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर राजार्यन, बेबी आरोही, यशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा। हमारे अगले फरमाइशकर्ता हैं आप हैं गंजू डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इब्राना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी, राधा नामदेव। दादरी गेट भिवानी से आप हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। और अगले हमारे फरमाइश करता हैं आप हैं पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गौहाणकर, राही, श्रीमती सरिता गौहाणकर, प्रणीता, सिद्धांत गौहाणकर, प्रिंस एकांश गौहाणकर और अर्जुन गौहाणकर, टुक टुक। हमारे अगले फरमाइश करते हैं आप हैं गांव मुरादगढ़ से रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश और भूमेश कुमार कंबोज। और अगली जो हमें फरमाइश मिली है आप हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। हमारे अगले फरमाइश करते हैं आप हैं छोटा बाजार थानेसर कुरुक्षेत्र से श्याम वर्मा, UHVVN, मिली शर्मा, चिराग शर्मा, राघव शर्मा, तनुज शर्मा, पलक शर्मा, मास्टर उद्देश्य। और हमारे अगले जो फरमाइश करते हैं आप हैं गोंदर करनाल से किरण पाल बुम्बक, तेजपाल, कृष्णपाल, पूनम, सोनिया, सरबजीत, राममूर्ति, रोशनी देवी, निशांत बुम्बक। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल। और आप अगले जो हमारे श्रोता हैं आप हैं एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। और चंडीगढ़ से हमारे श्रोता हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशुरीथान खुराना। बिहार कॉलोनी दिल्ली से आप हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। अच्छा जी, क्षमा कीजिए, आप से तो हमें फरमाइश मिल ही गई है। और हमारे अगले जो फरमाइश करता हैं आप हैं गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन। किशनगंज बिहार से आप हैं रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार और भानु प्रिया। और आपने और आपकी फरमाइश पर हम सुनवा रहे हैं आप सभी को ये गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगली जो हमें फरमाइश मिली है, आप हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्री, अंजलि करवा, बाबा साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टवूल और पी बी कुलथे। और हमारे अगले श्रोता हैं, आप हैं नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। जवाहर नगर दुर्ग से आप हैं आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े। फुलाई नगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा। हमारे अगले श्रोता हैं, आप हैं जिला झारखंड बड़ा बाम्बो से सुपाई साई गांव से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली और देबेन जी। सिली कला जिला यमुनानगर हरियाणा से आप हैं जय सिंह कंबोज, विजयंत सिंह कंबोज, रिदम निश्चय सिंह कंबोज, जयपाल धीमान और खुर्शीद चमरोड़ी। अगले जो हमारे फरमाइश करता हैं, आप हैं मुक्कम पोस्ट फूल चिंचोली तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, शर्मा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी। हमारे अगले फरमाइश करता हैं, आप हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, हरिपाल कौर, सोनिया कालका, बेपिशा शर्मा, किरण ठाकुर। अगली जो हमें फरमाइश मिली है, आप हैं राज पैलेस मोनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा से आप हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। फाजिलका पंजाब खेड़ा से आप हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालनी खेड़ा। कुलस्वामिनी रेडियो क्लब श्रीरामपुर भोकर महाराष्ट्र से श्रोता हैं हरिभाव बिड़वे, अनिकेत सोनवणे, शुभांगी श्रावण और अनिता बिड़वे। अगली फरमाइश हमें मिली है, आप हैं भावी नीमगांव महाराष्ट्र से श्री राम गोंधली, उषा गोंधली, वैष्णवी पूनम, युवराज गोंधली। और हमारे अगले फरमाइश करता है, आप हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसुतासु। हमारे अगले फरमाइश करता है, आप है जिला मुराद

बाद से अजीत कसाना, माया देवी रितिक, आदित्य कसाना और लदा। और अगले जो फरमाइश करते हैं आप, है मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराज से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर और प्रदीप यमेकर। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से आप हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। खुर्जा उत्तर प्रदेश से आप हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से राज लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना, हर्षित खुशी गोस्वामी। लोको कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, बरखा योगेंद्र कुमार चिंडालिया, नरेंद्र कुमार चिंडालिया। गांव हरुड़ीह चांडिल झारखंड से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा महतो, मनमोहिनी महतो, दीनबंधु महतो। हमारे अगले फरमाइश करते हैं आप, है सांगली जिले के जट शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे, रिहान शेख। और अगले जो हमारे फरमाइश करते हैं आप, हैं अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से आप हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। गांव चोहलादा बागपत से आप हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। इसी के साथ जो हमें अगले फरमाइश मिली है, आप हैं नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा। और अगली जो हमें फरमाइश मिली है आप हैं गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत खट्टक, सुंदर लाल खट्टक, योगेश कुमार खट्टक, दीपक कुमार खट्टक और कुमारी पूजा खट्टक। और अगली फरमाइश हमें मिली है आप हैं गाँव कल्याण मलका जिला बठिंडा से अमृतपाल सिंह रामगढ़िया, परमिंदर सचनूर और मनिंदर। हमारे अगले फरमाइश करता हैं आप हैं फुलोंग निज़ामाबाद तेलंगाना से वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी, मोहम्मद जुनेद, मोहम्मद जुबेर, मोहम्मद मुकरम, मोहम्मद नौमन, मोहम्मद फुरकन, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद फाजिल। अगले फरमाइश करते हैं आप हैं संघमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, निशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता जी। संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से आप हैं सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति गायकवाड़, आशा गायकवाड़, दीपांजलि गायकवाड़, दीक्षा बागमारी और शशांक। और अगली जो हमें फरमाइश मिली है हमारे श्रोता हैं आप हैं शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल और विशाल सपकाल। और अगली फरमाइश हमें मिली है आप हैं मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। और हमारे अगले फरमाइश करता हैं आप हैं बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से नैना सत्यनारायण, कपिल शोमा, फुंदीबाई बागरी। गांव और डाकघर दिमनाबाद जिला जींद हरियाणा से आप हैं जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। खुशी रेडियो श्रोता संघ फातेमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजियानासिर, साजिद, शाहिद शेख। गोविंदपुर अहमदनगर से आप हैं जुनेद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिघाइल मुजावर और जैनब मुजावर। भोपाल राजस्थान से आप हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। और आपने सुनना चाहा है जो गीत आपको हम सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर ब्रह्मचारी फिल्म से गीत, और ये गीत है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत है शंकर जयकिशन का।

कार्यक्रम चांदनी रातें में अगले फरमाइश करता है आप हैं शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। और अगले हमारे फरमाइश करता है आप हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता मारहरा

दरवाज़ा एटा से आप हैं नबी हसन अब्बासी, शहनवाज शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यब अब्बासी और यशफ अब्बासी। और हमारे अगले श्रोता हैं, आप हैं गंजो डुंडवारा से जी। हमारे अगले फरमाइश करता हैं, आप हैं नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से हमें अगले फरमाइश मिली है। आप हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। करणवीर हाउस भूचो कैंचिया भटिंडा पंजाब से आप हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सीमू एकम, दमन और अभिजोत। अगले फरमाइश करता हैं, आप हैं ऊपरकोट बुलंदशहर से अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार जी। हमारे अगले श्रोता हैं, आप हैं फुलोंग निज़ामाबाद तेलंगाना से वहीद रुमानी और सातुई। हमारे अगले फरमाइश करते हैं, आप हैं पांडर कवड़ा जिल्हा यवतमाल महाराष्ट्र से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे। बल्हार से श्रोता हैं सूरज लोंडे, प्राची लोंडे और एकलव्य लोंडे। नई बस्ती गंज डुंडवारा से आप हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। और अगले हमारे श्रोता हैं, आप हैं प्रेम सिंह जोड़ा भटिंडा पंजाब से। और आप सभी ने सुनना चाहा है सौदागर फिल्म से ये गीत। ये गीत है लता मंगेशकर की आवाज़ में और गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

कार्यक्रम में हमें अगली फरमाइश मिली है, आप हैं चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा, और अगले हमारे फरमाइश करता हैं आप हैं कस्बा गन्नौर उत्तर प्रदेश से सी फारूक अली खान, फैज़ी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा, और आपने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कारवां फिल्म से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार। 11:05 से आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांस्की प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। ये विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्तुकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।